मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 21वीं तिथि तदनुसार सोमवार दिनांक 11 मई 2026 इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतार कर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित

0: जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजरतेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोफ को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचार अभी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं ये मातृभूमि वंदना समूह स्वर में।

अभी आप समूह स्वर में ये मातृभूमि वंदना सुन रहे थे। कार्यक्रम आराधना में लीजिए आप सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में ये शिव भजन।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए हरिओम शरण की आवाज में ये भक्ति गीत।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आराधना में अब लीजिए सुनिए देवेंद्र सिंह की आवाज़ में ये शब्द।

अभी आप भाई देवेंद्र सिंह की आवाज में शब्द सुन रहे थे। कार्यक्रम आराधना के आखिर में लीजिए सुनिए ये नातिया कलाम, जिसे पढ़ रहे हैं गुलाम मोहम्मद।

0: गुलाम मोहम्मद के स्वर में अभी आप ये नातिया कलाम सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम आराधना अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। कार्यक्रम विचार बिंदु में आज शीर्षक है कर्म, आलेख संकलन और वाचन स्वर है राजीव दुबे का।
1: कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। हमारे जीवन का आधार कर्म है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, जैसा कर्म वैसा फल। कर्म मनुष्य की प्रगति और पतन दोनों का ही कारण बन सकता है। भारतीय संस्कृति और धर्म में कर्म का विशेष महत्व है। इसे जीवन का मुख्य सिद्धांत माना गया है। मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। अच्छा कर्म उसे सम्मान, सफलता और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे दुख और अपमान की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। जो कार्य समाज और मनुष्य के कल्याण के लिए किए जाते हैं, वे सत्कर्म कहलाते हैं। जैसे कि गरीबों की सहायता, शिक्षा का प्रसार और सत्य का पालन। जो कार्य दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, वे दुष्कर्म कहे जाते हैं। जैसे कि चोरी, हिंसा और अन्याय। जब व्यक्ति आलस्य या भय के कारण अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता, तो उसे अकर्म कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि भाग्य मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन वास्तव में भाग्य भी कर्मों का ही परिणाम है। कर्म के बिना भाग्य की कल्पना करना व्यर्थ है। मेहनत और परिश्रम से व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं निर्मित कर सकता है। कर्म जीवन का आधार है। मनुष्य को सदैव सत्कर्मों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। अच्छे कर्म न केवल वर्तमान जीवन को सुखमय बनाते हैं, बल्कि भविष्य में भी शुभ फल प्रदान करते हैं। अतः हमें सदैव कर्मशील और निष्ठावान रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म का महत्व और भी गहरा है। ये जीवन मरण के चक्र को प्रभावित करता है। धर्म और दर्शन ये सिखाते हैं कि अच्छे कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म बंधन और दुख का कारण बनते हैं। हमें अपने सभी कार्य समय पर और समर्पण के साथ करने चाहिए। कर्म का एक उद्देश्य मानवता की सेवा भी है। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कर्म सबसे बड़ा धर्म है। कर्म करते समय हमें संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो। अंततः कर्म वो बीज है जो हमारी मेहनत, निष्ठा और सकारात्मक दृष्टिकोण से फलता फूलता है। अगर हम अपने कर्मों को सच्चाई और नैतिकता के साथ करते हैं, तो हमारा जीवन और समाज दोनों खुशहाल हो सकते हैं। कर्म को समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भगवद गीता में कर्म का महत्व अत्यंत गहराई से बताया गया है। ये ग्रंथ न केवल आध्यात्मिकता बल्कि जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन भी करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए कर्म के महत्व, उसके प्रकार और उससे जुड़े फल के सिद्धांत समझाया। भगवद गीता के अनुसार कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करना।

0: कर्म को सच्चाई, निष्ठा और निष्काम भावना के साथ करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जो कर्म फल की इच्छा से किए जाते हैं वे सकाम कर्म कहे जाते हैं। ये स्वार्थपूर्ण और बंधनकारी हो सकते हैं। निष्काम कर्म वे कर्म कहे जाते हैं जो कर्म बिना किसी फल की अपेक्षा के किए जाते हैं। ये कर्म सच्चे और आत्मा को शुद्ध करने वाले होते हैं। जब व्यक्ति आलस्य, भय या मोह के कारण कर्म नहीं करता, उसे अकर्म कहा गया है, ये त्याज्य है। विकर्म वे कर्म हैं जो कार्य, धर्म, नीति और सत्य के विपरीत किए जाते हैं। ये विनाशकारी और दुखदायी होते हैं। कर्म योग कर्म का मार्ग, भक्ति योग भक्ति का मार्ग और ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग, तीनों एक ही लक्ष्य तक पहुँचाने वाले रास्ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जब कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है तो वह भक्ति का रूप ले लेता है और व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है। भगवद्गीता कर्म को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानती है। ये सिखाती है कि कर्म को त्यागना नहीं बल्कि उसे समर्पण, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। गीता का यह सिद्धांत हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वो अपने जीवन को कर्मशील बनाकर न केवल व्यक्तिगत विकास करे बल्कि समाज और मानवता के कल्याण में भी योगदान दे। सच्चा कर्म वही है जो आत्मा की शुद्धि, समाज की सेवा और ईश्वर की प्राप्ति में सहायक हो। जैसा कर्म वैसा फल की अवधारणा हमें ये समझाती है कि अच्छे कर्म न केवल व्यक्तिगत सुख बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान देते हैं, वहीं बुरे कर्म दुख और अशांति का कारण बनते हैं। अतः जीवन में सही सोच, सही दृष्टिकोण और नैतिकता के साथ कर्म करना ही मनुष्य को सच्ची शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अभी आप कर्म विषय पर विचार बिंदु कार्यक्रम में ये इस शीर्षक पर सुन रहे थे विचार। आलेख संकलन और वाचन स्वर राजीव दुबे का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर है ए हरिहरन और साथियों का। संगीत संयोजक है सतीश भाटिया। आज आप सुनेंगे भाग 60।

वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रीरामचरितमानस का गायन। आज आपने भाग 60वां सुना। मुख्य स्वर था ए हरिहरन और साथियों का। संगीत संयोजक थे सतेश भाटिया। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। कार्यक्रम खेती की बात में आज सामयिक सुझाव का विषय है फसलों के लिए पोषक तत्व।
1: फसलों की पैदावार के लिए कुछ प्रमुख पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उनके कार्य और उनके कमी के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। जैसे नत्रजन के कार्य और कमी के लक्षण हैं, यह पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में योग करता है, यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, धान्य फसलों के दानों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। नत्रजन की कमी से पौधों का रंग हल्का हरा, बढ़वार सामान्य से कम और कल्लों की संख्या में कमी हो जाती है। पौधों की पत्तियों का रंग पीला या हल्का हरा हो जाता है। दाने वाली फसलें जैसे मकई, धान आदि में सबसे पहले पौधों की निचली पत्तियां सूखना आरंभ कर देती हैं और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां भी सूख जाती हैं। पत्तियों का रंग सफ़ेद और पत्तियां कभी कभी जल जाती हैं। हरी पत्तियों के बीच बीच में सफ़ेद धब्बे भी पड़ जाते हैं, वृक्ष पर फल पकने से पहले गिर जाते हैं। नत्रजन के संबंध में उपचार इस प्रकार हैं। पहला छिड़काव द्वारा और दूसरा मृदा में डालकर नत्रजन की कमी का उपचार। खड़ी फसल के खेतों की निदाई गुड़ाई के बाद कतार में यूरिया के छिड़काव कर या यूरिया को 2-4% का घोल बनाकर फसल के पत्तों पर छिड़काव करने से लाभ होता है। स्फुर के कार्य और कमी के लक्षण और उपचार इस प्रकार हैं। जड़ प्रणाली का विकास स्फुर करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, फसलों को समय पर पकने में मदद करता है, धान्य फसलों में कल्लों की संख्या को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप बालियों और दानों की संख्या बढ़ती है, ऊर्जा रूपांतर, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाने में योग देता है, दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में स्थित

0: रिबोसोम बैक्टीरिया की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा बैंगनी हो जाता है और पत्तियों का अग्रभाग मर जाता है। पौधों का रंग प्राय गहरा ही रहता है, पर निचली पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं। खड़ी फसल पर स्फुर की कमी का उपचार संभव नहीं है, इसके लिए मिट्टी जांच कराने के बाद अनुशंसित स्फुर की मात्रा को बुआई से पहले कंपोस्ट के साथ मिलाकर डालने से पौधों के लिए स्फुर की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसी तरह से पोटाश के कार्य और कमी के लक्षण और उपचार इस प्रकार हैं। कार्बोहाइड्रेट उपापचय में पोटेशियम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आलू, चुकंदर, गन्ना जैसी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। धान्य फसलों, विशेषकर धान और गेहूं में ये मजबूत और कड़े तने तैयार करता है, जिसके कारण पौधे गिरते नहीं हैं। बीज और फल को चमकीला और मजबूत बनाता है, पौधों में रोग निरोधी शक्ति को बढ़ाता है। कोशिकाओं में स्थित जल की मात्रा को नियंत्रित करके पोटेशियम पाला और सूखे से होने वाली हानि को कम करता है और पौधों की रक्षा करता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में कार्बोहाइड्रेट की स्थानांतरण में मदद करता है। पोटाश की कमी से पत्तियों के किनारे कटे फटे और उनका अग्रभाग भूरा हो जाता है। पोटाश की कमी को बुआई से पहले मिट्टी की जांच से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पोटाश उर्वरक की अनुशंसा वाली मात्रा डालकर या खड़ी फसल में पोटेशियम सल्फेट का 2 से 4% घोल का छिड़काव कर उपचार किया जा सकता है। सल्फर यानी गंधक के कार्य और कमी के लक्षण, यह एमिनो एसिड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए ज़रूरी है, क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। सरसों परिवार और प्याज परिवार के पौधों में और तीसी, सोयाबीन और मूंगफली में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। गंधक दाल वाली फसलों में जड़ वृद्धि और बीज निर्माण और जड़ ग्रंथियों के विकास में योगदान देता है। दलहनी और तिलहनी फसलों वाली खेती की मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए SSP, फास्फो, जिप्सम और सल्फर मिश्रित उर्वरक का उपयोग लाभप्रद रहता है। इसी तरह बोरान कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में योगदान देता है। बुआई से पहले अच्छे ढंग से सड़ी कंपोस्ट खाद और 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरेक्स उर्वरक का उपयोग करना चाहिए।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे फसलों के लिए पोषक तत्व विषय पर जानकारी। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में। प्रभुनाथ वैष्णव और साथियों से छत्तीसगढ़ी लोकगीत, रामलल्लू पांडे और साथियों से भोजपुरी लोकगीत और अमृत पिंच और साथियों से सादरी लोकगीत। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। स्थानीय गतिविधियों के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। वाचन और प्रस्तुति सहयोग अंजनी कुमार पांडे का है और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रमेंद्र कुमार। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन पेश करेंगे सुबह 9:00।

फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। प्रस्तुति सहयोग विजय कुमार का है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रमेंद्र कुमार। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके पसंद लेकर आएंगे सुबह 11:05 पर। एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12 बजे। शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन आप सुनेंगे दिन में 12:30 पर। ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम घर गोसाई आप सुन सकेंगे दिन में 1:10 पर। इसमें आप सुनेंगे सामयिक चर्चा

लोकगीत और कार्यक्रम बहनीकर कहानी। ईमेल फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय है दिन में 1:40 पर और रात्रि 9:30 पर। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम गीत कंधा पेश करेंगे दिन में 2:30 पर।

0: हमारी शाम की सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे। इसमें आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी पेश करेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय है शाम 7:20 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। चित्रपट संगीत का प्रसारण समय है रात्रि 9:15 पर। और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। इसमें आप संतूर वादन सुनेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा से राग किरवानी में। तबले पर संगत करेंगे शफात अहमद खां। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है, संस्कृत समाचार दिल्ली से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केंद्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमंत्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनॉल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिंगस्य श्री सोमनाथ महादेव मंदिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्री मोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुंभाभिषेकं च विधास्यति, अनन्तरं जनसभां च संबोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्य सचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पंचमंत्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य संभावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र मुख्यमंत्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतन मंत्रिमंडले भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मान भारतम्

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम गुजे जंगल में लीजिए सुनिए भोजपुरी लोकगीत रामलल्लू पांडे और साथियों से। विष्णु भजन गा रहे हैं ये साथी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम गूंजे जंगल में लीजिए आप सुनिए सादरी लोकगीत अमृत मिंज और साथियों से।

अमृतमंच और साथियों के गायस सादरे लोकगीत के साथ कार्यक्रम गूंजे जंगल अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत।

कमाल करती है, कैसे कैसे दिल से सवाल करती है, एक पल भी तनहा नहीं होने देती, तेरी याद भी मेरा कितना ख्याल रखती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत में संदेश से पहले आपने जगजीत सिंह की आवाज में गजल सुना। कलाम हस्तीमल हस्ती का था और आइए अब सुनिए जमीर काजमी का कलाम चंदन दास की आवाज़ में।

0: अभी आप अभिजीत सावंत की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे। शब्द रचना समीर की थी और संगीत बिद्दू का था। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक के साथ मैं हूं रैना। सबसे पहले सूचना जंगली हाथियों के संदर्भ में। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट प्रतिदिन शाम 5 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर कोट। सुनते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर कोट, जहां हर सूचना आपकी सुरक्षा के लिए। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं फिल्म इंतकाम का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खर खर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब
1: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
2: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
0: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
1: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
3: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ
4: आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।
5: कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में अब सूचना। मनेंद्रगढ़, चिरमरी और भरतपुर जिले से छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पहल सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत विकासखंड खरगवा के मझौली में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा आम जन की समस्याएं सुनकर मौके पर समाधान किया गया और पात्र हित

हितग्राहियों को शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी मनिंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3B के अंतर्गत विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए संशोधित न्यूनतम वेतन दरों की अधिसूचना जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार ये नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेंगी। अधिसूचना में मासिक और दैनिक वेतन के साथ परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल किया गया है। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं फिल्म सूरज का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का है।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म सूरज का ये गीत सुना, और अब कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में सूचना अंबिकापुर से राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सरगुजा के मार्गदर्शन में 9 मई 2026 को प्रधान जिला और सत्र न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा, योग्य दांडिक प्रकरण, व्यवहार प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, पारिवारिक विवाद, दुर्घटना संबंधी दावा, मजदूरों से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत चोरी संबंधी प्रकरण जैसे प्री लिटिगेशन के प्रकरण का भी निराकरण आपसी सहमति के माध्यम से किया जा सकता है। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने बताया कि हाइब्रिड लोक अदालत के माध्यम से पुनः पक्षकार गण को ये अवसर प्रदान हो रहा है कि वे राजीनामा योग्य प्रकरणों में अपनी आपसी सहमति के आधार पर अपने मध्य के विवाद का अंत कर सकते हैं। पक्षकार मामले का निराकरण आपसी सहमति से करने हेतु संबंधित न्यायालय जहां उनका प्रकरण लंबित है के समक्ष व्यक्तिगत रूप से होने के अलावा वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उपस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार न्यायालय में आए बिना भी अपने मामले का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर करा सकते हैं। उन्होंने आम जनों से अपील किया है कि 9 मई 2026 को प्रधान जिला और सत्र न्यायालय सरगुजा के अंतर्गत सभी न्यायालयों के व्यवहार न्यायालय सीतापुर में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से अपने विवाद का निराकरण कराकर अपने मध्य मतभेदों को समाप्त करने के इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करें। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म प्रोफेसर का गीत। शब्द रचना शकील बदायूनी की है और संगीत शंकर जयकिशन का है।

कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक में एक बार फिर आपका स्वागत। और अब सूचना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आज जिले के लुंड्रा विकासखंड के लमगांव स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में 45 नवविवाहित जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ सात फेरे लेकर नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लुंड्रा विधायक उपस्थित रहे। विधायक ने सभी नव दंपतियों को शुभाशीष देते हुए उनके सुखमय और मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि बेटियां समाज की गरिमा हैं और शासन बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों का विवाह प्रमाण पत्र और उपहार सामग्री प्रदान की गई। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपये की सहायता राशि भी वितरित की गई। विवाह समारोह में ढोल नगाड़ों, लोकगीतों, फूलों की वर्षा के बीच उत्सवी माहौल बना रहा। वरवधु और उनके परिजनों में विशेष उत्साह देखने को मिला। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म प्रोफेसर का गीत, माफ कीजिएगा, महल का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

सुशासन त्यौहार 2026 के अंतर्गत 9 मई को जिले के ग्रामीण क्षेत्र में दो जन समस्या शिविर निवारण आयोजित किया जाएगा। विकासखंड पतौली में शिविर स्थल घोघरा और जिसमें 14 ग्राम पंचायत घोघरा, मानपुर, शिवपुर, टेड़गा, सैलड़ी, बांसाझाल, टीरंग, बोदा, बिलासपुर, घुटरापारा, तरागी, ललाती, पोपरेंगा, सेलमा के ग्रामीण अपनी मांगों और शिकायतों संबंधी आवेदन देंगे। शिविर प्रभारी अधिकारी, अनुभागीय अधिकारी, राजस्व, सीतापुर सहायक प्रभारी अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बतौली में यहां उपस्थित होंगे। बता दें कि शासन के निर्देशानुसार जन प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी यहां उपस्थित रहेंगे और जन शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने और आम जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित रूप से सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सुशासन त्यौहार 2026 के अंतर्गत 10 जून तक जिले में शिविर आयोजित होंगे। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं तलत महमूद की आवाज़ में फिल्म सुजाता का गीत। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत SD बर्मन का है।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आज का अंक अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी

0: भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
1: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का, विभागों का, अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला स्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
5: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
6: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात

0: राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 011-23-01-01-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, TVK प्रमुख विजय ने ली CM की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो।

0: दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: स्थानीय गतिविधियों की स्थल रिकॉर्डिंग और विविधा के विविध रंगों से सजी परिक्रमा की आज की कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी। आज के अंक में, संपन्न हुआ विश्व रेड क्रॉस दिवस, सरगुजा को मिला विशेष सम्मान। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों और कार्यशालाओं में बच्चे सीख रहे हैं नाट्य कला के गुर, इप्टा का है आयोजन। जयंती पर याद किए गए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। संपन्न हुआ मातृ दिवस, आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। श्रोताओं, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस संपन्न हुआ। रेड क्रॉस एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करना है। स्विस मानवतावादी सामाजिक कार्यकर्ता हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। युद्धकाल में घायल लोगों की मदद से लेकर आज के समय में जरूरतमंदों की सेवा करने तक बहुत ही गरिमापूर्ण और शानदार रहा है रेड क्रॉस का सफर। और अब आइए बात करते हैं रेड क्रॉस अंबिकापुर के संदर्भ में। रेड क्रॉस अंबिकापुर ने एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। लोगों में स्वास्थ्य चेतना, जागरूकता, रक्तदान और अंगदान के प्रति चेतना जगाने को लेकर पूरे प्रदेश भर में यहां के कार्यकर्ताओं की सराहना हो रही है। रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य श्री आर्यन सिन्हा और जागरूकता कार्यक्रम के क्षेत्र में विशेष सम्मान प्राप्त श्रीमती आकांक्षा सिन्हा से हमने बातचीत की। सबसे पहले श्रोताओं की ओर से आर्यन और आकांक्षा जी, आप दोनों का स्वागत है। मेरा पहला यही सवाल है कि जब हम रेड क्रॉस की बात करते हैं तो हमारे सामने एक लाल धन का निशान आता है जिसे अंग्रेजी में हम प्लस कहते हैं।
1: जी जी।
0: तो लाल योग का जो निशान है उसे देखते ही हम ये समझ लेते हैं कि कोई मेडिकल की कोई बात होगी, चिकित्सकीय क्षेत्र की कोई बातचीत होगी और ये जो संस्था है इसी क्षेत्र में कुछ काम करती होगी, ऐसी सामान्य तौर पर लोगों की एक समझ है। तो मैं आप दोनों से यही निवेदन करना चाहूँगा, खासतौर पे सबसे बातचीत की शुरुआत आर्यन आपसे करें, आप रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य हैं, तो जरा हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि रेड क्रॉस क्या है।

0: सर, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी एक अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए कार्यरत करती है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवता, सेवा, करुणा एवं सामाजिक सहयोग की भावनाओं को बढ़ावा देना है।
1: आर्यन, जैसा कि आपने बताया कि रेड क्रॉस जो है वो अंगदान के क्षेत्र में भी काम कर रही है,
0: जी
1: रक्तदान के क्षेत्र में भी काम कर रही है ना?
0: जी
1: कहीं अगर कोई प्राकृतिक आपदा आई तो वहाँ पे रेड क्रॉस के साथ ही पहले पहुँचते हैं।
0: जी
1: तो क्या सरगुजा में भी ये चीज़ें होती हैं?
0: निरंतर रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा सरगुजा
1: जी
0: एक मिशन के साथ चल रही है, जिसका मिशन का नाम है रक्तदान महादान अंग जान जीवन दान,
1: जी
0: जिसके माध्यम से हम पूरे सरगुजा ही नहीं, सरगुजा संभाग ही नहीं, पूरे प्रदेश और प्रदेश के बाहर में भी
1: जी
0: लोगों को रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान, देहदान हेतु जागरूक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इसके माध्यम से 11 अंगदान हो चुके हैं,
1: जी
0: जिसे
1: जी
0: कई लोगों को जीवन मिल चुकी है।
1: अच्छा आर्यन, आम तौर पे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है रक्तदान के लिए, अंगदान के लिए, है ना? जैसे अगर किसी से आप कहिए कि भाई मुझे रक्त की ज़रूरत है, मेरे मरीज को रक्त की ज़रूरत है, तो क्या आप ब्लड डोनेट करेंगे? तो लोग घबरा से जाते हैं।
0: जी
1: तो आप लोग कैसे लोगों को समझा पाते हैं?
0: सर, हम लोग उनको मतलब पहले काउंसलिंग करते हैं कि क्यों रक्तदान करना से क्या फायदा है, तो
1: जी
0: वो नेगेटिव थॉट्स को सबसे पहले हम दूर करते हैं। हम
1: हाँ
0: उनका पॉजिटिव बताते हैं कि रक्तदान करने से आपका फुल बॉडी टेस्ट हो जाएगा, आपको कोई बीमारी है तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी।
1: जी
0: जैसे कि हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उनको एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि हम अगर एक समुन्दर में से या तालाब में से एक लोटा पानी निकाल लें तो कुछ कमी नहीं होगी, वैसे ही रक्तदान के लिए भी वैसे ही है।
1: जी
0: कुछ ML खून अगर हम निकाल लें तो इतनी जिंदगी यहाँ हम बचा सकते हैं।
1: बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके कि आप बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अंबिकापुर की जो यूनिट है, जो
0: हाँ
1: जो रेड क्रॉस के सदस्य हैं अंबिकापुर के, उनके कार्यों की बड़ी सराहना हुई है।
0: जी
1: क्या कुछ हुआ है जरा बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: सर, मेरे साथ जो आजीवन सदस्य हैं आकांक्षा श्रीवास्तव, उन्हीं का सम्मान हुआ है, वो बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: जी जी बिल्कुल आकांक्षा जी, स्वागत है आपका हमारे श्रोताओं की तरफ से।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ शाखा एंड जिला शाखा सरगुजा को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा और ये सम्मान मुझे दिया, बल्कि उन सभी लोगों का जो मानव सेवा, अंगदान, नेत्रदान और देहदान जैसे अच्छे कार्य करने में समाज को जागरूकता फैला रहे हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उसी में हमने काम किया है। जैसे कि हमारा नारा था, आर्यन ने बताया कि रक्तदान महादान अंगदान जीवन दान, कि हमने इसी इसी चीज को आगे बढ़ाने में बहुत सारे लोगों को जागरूक किया, जैसे कि कुछ को पर्सनली बताया, किसी को हमने कुछ जाके बताया, कभी कुछ कैंप ऑर्गेनाइज किया, इस टाइप से हमने बहुत से लोगों को जागरूक किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
1: चले, बहुत गर्व की बात है सरगुजा वासी होने के तौर पे। तो वहाँ पे और भी क्षेत्रों के लोग, और भी जिलों से लोग, प्रतिनिधिगण आए होंगे?
0: जी, प्रदेश से मतलब हर जितने हमारे छत्तीसगढ़ के जिले हैं,
1: जी
0: हर जिले से वहां पे छोटे जो मतलब स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चों ने अपना रंगारंग कार्यक्रम किया, नाटक किया,
2: की
0: चित्रकला प्रतियोगिता राज्य शाखा द्वारा आयोजन किया गया था, उसमें भाग लिया।
2: बच्चों को भी बहुत अच्छे से सर्टिफिकेट वितरण किए गए, जिससे कि उनको आगे और मौका मिले और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी प्रयास कर सकें कि वो आगे स्कूल लेवल पे या कॉलेज में जाएं, तो इस चीज के लिए जागरूक करें लोगों को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने की।
1: प्रेरित कर सकें।
0: सर, इसमें जो हमारा ये जो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी दिवस पर राज्य स्तरीय जो आयोजन हुआ था, इसमें लगभग लगभग 2800 से ज्यादा की गैदरिंग थी। बहुत बड़ा आयोजन था, जो कि महामहिम राज्यपाल, जो कि हमारे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं,
1: जी,
0: उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित हुई थी।
1: और उसमें आप लोगों ने अंचल का नाम रोशन किया। आर्यन और आकांक्षा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रीष्मकालीन छुट्टियां चल रही हैं। इन छुट्टियों के दौरान नगर में अनेक तरह की कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में जहां एक ओर अनेक तरह के खेल प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है, वहीं स्कूलों में नाट्य कला, नृत्य कला, चित्रकारी, क्ले आर्ट, रजवा

आर्ट जैसी कलाओं के प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। भारतीय जननाट्य संघ ने भी नाट्य शिविर का आयोजन किया है, जहां बच्चे अनेक तरह की मंचीय गतिविधियां सीख रहे हैं।

0: एक जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिक राम जी का दान बोल सकते हो। और गुरु जी मैं जाके बहुत से भिक्षा ले आता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं। और कुछ चिंता मत कीजिए, बच्चा देखना हाँ, ज्यादा लोग मत करना क्योंकि
1: जी मेरा नाम अभिज्ञान है। मान जी की उस कहानी में भूमिका ये थी कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, ये काम गलत है, इसमें मत जाइए, लेकिन फिर भी गोवर्धन दास जैसे गलत रास्ते पर चल जाता है तो अंत में उसको वो समझाते हैं। जी मेरा नाम अमोघ वर्ष है। जी मैं गोवर्धन दास बना था। गोवर्धन गुरु जी का चेला था, जैसे अभिज्ञान ने बताया वो महंत बना था। गोवर्धन महंत के दो चेले थे, नारायण दास और गोवर्धन दास, तो मैं गोवर्धन दास बना।
2: बीते सप्ताह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर याद किया गया। गुरुदेव बहुमुखी प्रतिभा के धनी, नोबेल पुरस्कार विजेता, कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और संगीतकार थे। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगणमन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला लिखा। सन 1913 में उन्हें उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो उनके काव्य संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद था। गुरुदेव द्वारा रचित संगीत रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने 2000 से अधिक गीतों की रचना की। गुरुदेव ने ही पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कला और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। श्रोताओं, 10 मई को मातृ दिवस संपन्न हुआ। इस अवसर पर शहर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, काव्य गोष्ठियों का आयोजन किया गया। श्रोताओं, मां संसार का वह अनमोल उपहार है जिसका स्थान कोई और नहीं ले सकता। एक बच्चे के जीवन में माँ की भूमिका केवल जन्म देने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो उसकी पहली शिक्षिका, मार्गदर्शिका और सबसे अच्छे मित्र भी होती है। माँ का प्रेम निःस्वार्थ और अटूट होता है, जो हर परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। मातृदिवस हमें एक अवसर देता है कि हम रुकें और उस निःस्वार्थ प्रेम के लिए अपनी मां का आभार व्यक्त करें। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की परिक्रमा, जिसमें वाचन स्वर था अंजनी कुमार पांडेय का। और अब लीजिए पेश है ज्ञान और मनोरंजन के विविध रंगों से सजी आज की विविधा।

0: हर साल बच्चों की एक बड़ी संख्या स्कूली परीक्षा उत्तीर्ण करती है। बच्चे अपनी अपनी राह तलाशते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश में लग जाते हैं। इस प्रयास में उन्हें अपने अभिभावकों का और अपने गुरुजनों और अपने आसपास के लोगों से मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन यह मार्गदर्शन ऐसा होता है कि अनेक छात्र पूर्व निर्धारित रास्ते पर ही चल निकलते हैं। गणित पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, विज्ञान पढ़ के डॉक्टरी की तैयारी करो, कॉमर्स लेकर MBA और CA करो, कला संकाय से प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करो, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे हैं जो आपकी प्रतिभा और आपकी रुचि के अनुसार होते हुए भी आप उस पर कभी नहीं सोचते। आप समझ ही नहीं पाते कि करियर का निर्माण आपकी रुचि के अनुसार भी हो सकता है। जी हाँ, यदि आपकी रुचि नाटकों में है, निर्देशन में है, फिल्मों के लेखन में है, संपादन में है, छायांकन में है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा क्षेत्र हो सकता है। इन संपूर्ण विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया प्रबंधन और थिएटर के क्षेत्र में काम करने वाले युवा साथी श्री हेमंत पाणिग्रही। आइए इनसे बातें करते हैं और भविष्य को लेकर इन क्षेत्रों की संभावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया।
0: पहला सवाल मेरा यही है अपने श्रोताओं की तरफ से कि मैंने तो, मुझे जितना समझ में आया मैंने आपके बारे में अपने साथियों को बताया, आप चूंकि अपने विषय के विशेषज्ञ हैं तो थोड़ा हमारे साथियों को अपना संक्षेप में अपना परिचय दें।
1: जी, मैं करीब 2 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ और मैंने पत्रकारिता में बैचलर डिग्री लिया हुआ है, मैंने मास्टर्स किया हुआ है। इसके साथ ही देश के जो कुछ प्रमुख संस्थान हैं जहाँ पर पत्रकारिता, सिनेमा, थिएटर की पढ़ाई होती है, यहाँ से कुछ मैंने अल्पकालीन ऐसे कोर्सेज किए हुए जो मुझे या मेरे भीतर उन विषयों को लेकर मेरी विशेषज्ञता को बढ़ाता है। तो ऐसे मैंने FTI पुणे, जो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, जो देश की सबसे बड़ी संस्थान है, वहाँ पढ़ने का अवसर मिला। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मुझे एक अध्ययन का अवसर मिला। इसके साथ ही मैं भारतीय जनसंचार की जो संस्थान है दिल्ली में, वहाँ एक अध्ययन के लिए गया हुआ था। इसके साथ ही मैंने रक्षा पत्रकारिता की हुई है और ऐसे बहुत छोटे छोटे कोर्सेज जो जिससे मैं अपडेट रहता हूँ, ऐसे बहुत से कोर्सेज मैंने किए हुए हैं। और मुझे राज्य सरकार की ओर से राज्यालंकन दिया गया, चंद्रलाल चंद्रा का जो फेलोशिप है
0: जी।
1: और उसी वर्ष 2010 की ही बात है, मुझे एक रिपोर्टिंग, मेरे अपने खुद की रिपोर्टिंग के लिए मुझे लाडली मीडिया अवार्ड मिला था, जो देश का सर्वोच्च सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में माना जाता है
0: जी।
1: तो यह कार्य मैं करता रहा और आज भी मैं सक्रिय हूँ।
0: सक्रिय है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि करियर बनाने के लिए लोगों को विज्ञान पढ़ना जरूरी है और यूं कहें कि गणित पढ़ना ज़रूरी है, और बहुत दबाव होता है लोगों पे कि उनकी जो रुचियां हैं उन्हें दरकिनार करके वो इन रास्तों पर चलें। लेकिन आप जैसे लोगों से मिलने के बाद ये लगता है कि आपकी जो रुचियां हैं, आपके भीतर जो प्रतिभा है, अगर आप उसे लेकर आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी दूर तक जाएंगे। तो हमारे श्रोताओं को ज़रा बताएं कि ये क्षेत्र कैसा है, ख़ास तौर पर अगर हम पत्रकारिता से शुरुआत करें तो कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ से शुरुआत करना होगा?
1: मुझे लगता है कि आपके भीतर यदि पढ़ने लिखने की थोड़ी सी आदत है और आपके भीतर इस तरह कुछ रुझान है कि आप समाज में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको पत्रकारिता में आकर अपने करियर की संभावनाओं को तलाशना चाहिए और उसके लिए आपकी प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो प्रवीण होते हैं और जब आप प्रवीण होते हैं तो आपकी प्रखरता बढ़ती है। तो इसलिए आप जो है उस विषयों की जानकारी लें, उस पर अध्ययन करें और आपके भीतर वो चीज़ें जो होती है वो दिखने लगती है कि मैं इस क्षेत्र पर जाकर कर सकता हूँ, इस काम को बेहतर कर सकता हूँ। जहाँ आपका रुझान हो, बिना दबाव के उन काम को करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की मसलों पर हम बात करें तो यहाँ पर पत्रकारिता के अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छी संस्थानें हैं, जैसे रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, बिलासपुर में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ पर पत्रकारिता का अपना एक विभाग है। तो इस तरह से आप राज्य के भीतर तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपको लगता है कि देश में कुछ करना चाहिए तो IIMC में बहुत अच्छे कोर्सेज चलते हैं, आप वहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको लगता है कि फिल्मों को लेकर कुछ हमें बेहतर करना चाहिए, तो एफटीआई एक सबसे बड़ी संस्थान है, प्रमाणिक संस्थान है, देश की नहीं दुनिया की जानी मानी संस्थान है। हम उस पर उसके प्रवेश

0: इसके साथ में जो नाट्य विद्यालय है जहाँ पर हम खासकर थिएटर की जो एजुकेशन लेते हैं उन जगह पर हम जाकर अध्ययन कर सकते हैं। तो आपका आपके भीतर की रुझान और आप अपने आप को कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि ये जो काम है आपका मन का काम है और आप जब अपने मन के काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफल होते हैं।
1: जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि एक गाने वाला व्यक्ति अगर उसे गाने में करियर बनाना हो तो वो उसके लिए बहुत रुचिकर होगा, वो उससे ऊब नहीं सकता, उसके भीतर ऊबन नहीं होगी। एक ऐसा व्यक्ति है जो मूर्ति बनाता है और उसे मूर्तियों को बनाने का काम मिल जाए, एक व्यक्ति जो पेंटिंग करता है अगर उसे पेंटिंग करने का काम मिल जाए, तो मुझे लगता है कि ये काम कुछ ऐसे काम है जिसमें अगर आपकी रुचि है तो आप उससे कभी ऊब नहीं सकते और आप बेहतर कर सकते हैं।
0: नहीं, आपने सही कहा, क्योंकि आपकी रुचि से ही आपकी अभिरुचि बनती है।
1: जी,
0: और जहाँ जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में आपका मत हो तो वह मत लंबे समय के जाने के बाद आपका अभिमत बन जाता है, और अभिमत तभी बनता है जब आप उन चीज़ों को समझकर बहुत कुछ करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में या सिनेमा के क्षेत्र में या थिएटर के क्षेत्र में आप कुछ भी करना चाहें तो आपके मन में एक भाव चलना चाहिए कि व्यथा की कथा को कहने की कला आपको आनी चाहिए।
1: यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था हेमंत जी, कि कैसे कोई व्यक्ति ये जाने कि मेरे भीतर वो रॉ मटेरियल है कि नहीं है, मेरे भीतर वो बात है कि नहीं है कि मैं पत्रकारिता में चला जाऊँ या मैं सिनेमा में चला जाऊँ या मैं थिएटर की ओर चला जाऊँ। तो वो कौन सी ऐसी बातें होती हैं, वो कौन से ऐसे संकेतक होते हैं जिन्हें देखते ही हमें ये समझ लेना चाहिए कि हाँ मैं इस क्षेत्र में जा सकता हूँ।
0: मुझे लगता है कि समाज के भीतर की जो पीड़ा है
1: जी,
0: उस पीड़ा को यदि आप अनुभव करते हैं और उस पीड़ा को आप उन माध्यमों से समाज के बीच लाकर कुछ और बेहतर करके समाज में बदलाव की बात करना चाहते हैं तो इससे बेहतर मुझे लगता है कोई माध्यम नहीं हो सकता। और रही बात आपके भीतर नैसर्गिक होती हूँ कलाएँ या वो गुण, जैसे आप बेहतर लिखते हैं तो आप प्रिंट के बेहतर पत्रकार होते हैं हो सकते हैं, आप बेहतर बोलते हैं तो टीवी के बेहतर पत्रकार हो सकते हैं। आपने इस समय पे जिस तरह के हम जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं उसमें सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है, तो इस क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं, रोजगार की बेहतर संभावनाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से जो एक संकट हमारे सामने है विश्वसनीयता का, उस पर चिंता करने की जरूरत है। और अभी की जो विश्वसनीयता का जो संकट है उस पर हमें काम करने की जरूरत है, और अभी की जो पीढ़ी है इन चीज़ों को सीख कर समझ कर बेहतर करियर बना सकती है, क्योंकि आज संभावनाओं का बाजार इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप खुद कुछ कर सकते हैं।
1: सिनेमा की अगर हम बात करें, कोई युवा जो है वो स्कूली दिनों से ही स्कूल के नाटकों में अभिनय में रुचि रख रहा है, तो वो अगर सिनेमा में अपना करियर बनाना चाहता हो, सिनेमा में जाना चाहता हो, कैसे वो समझे कि मैं इसके लिए ठीक हूँ, ये रास्ता मेरे लिए ठीक है और मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए?
0: यदि वो सिनेमा में जाना चाहता है तो मुझे लगता है कि 12वीं के बाद ही उसकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए।
1: जी,
0: सिनेमा को ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कला के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर देश के स्तर पर आ रहे बदलावों को उसको समझना चाहिए। और मैं तो अपने श्रोताओं को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि किसी भी व्यक्ति को सिनेमा में यदि अपना करियर बनाना है तो सबसे पहले भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान में जाकर पढ़ाई करें। एक लॉन्ग टर्म कोर्सेज है, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स उनके नियमित चलते रहते हैं, उन कोर्सेज में हिस्सा लें और अपने आप को तैयार करें, क्योंकि सिनेमा में एक अभिनय का ही क्षेत्र नहीं है। आज आप देखते हैं एडिटिंग है, साउंड इंजीनियरिंग है, इसके साथ ही आप स्क्रिप्ट राइटर्स के जो स्क्रिप्ट राइटर्स भी बन सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पे आप किस गुण में अपने आप को बेहतर पाते हैं। तैयारी के बाद में जो प्रवेश परीक्षा की तैयारी है वो उसे करना चाहिए, उसके साथ यदि आप FTI के साथ एक टारगेट आपको NSD का भी रखना चाहिए कि आप थिएटर के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से भी सिनेमा में आप बेहतर काम कर सकते हैं। तो इन कोर्सेज की तैयारी के लिए एक तो कुछ कोर्सेज से पहले की कुछ तैयारियां होती हैं, तो मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से जिला प्रशासन को, कैसे बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं उन संस्थाओं से बात करके अंबिकापुर जैसे शहर में ऐसे कैंप लगाने चाहिए, फिल्मों पर बातें होनी चाहिए, फिल्म क्लब यदि हम बनाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो छोटे छोटे काम से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं, तो इसकी तैयारी के लिए सबको जुटना होगा।
1: एक अंतिम सवाल आपसे कि ज़्यादातर जो अभिभावक होते हैं वो इन तीनों ही चीज़ों को, मैंने आप ये समझिए कि वे ये समझते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए या इंजीनियर हो जाए या प्रशासनिक अधिकारी बन जाए, उन्हें लगता है करियर यही है। और कोई बच्चा स्कूली दिनों से अगर वाद विवाद में हिस्सा ले रहा है या मंच पर गाना गा रहा है या नाटकों में अभिनय कर रहा है तो उसे डांट भी पड़ती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जो अभी

0: अभिभावक सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं अभिभावकों से यही कहूँगा कि बच्चों को दबाव में ना रखें, वो जो बेहतर करना चाहते हैं उसके लिए पूरी खुली आज़ादी दें, क्योंकि व्यक्ति का जन्म किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। उन उद्देश्यों को पालकों को भी समझना होगा और बच्चों को भी समझना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि वो बच्चा मौलिक स्वरूप में आ गया तो वही कलाम बन जाएगा।
0: हेमंत जी, हमारे कार्यक्रम का ये उसूल है कि जो हमारे मेहमान आते हैं हम उनकी पसंद का एक बढ़िया गीत सुनते हैं, तो आप अपनी पसंद बताइए और हमारे श्रोताओं को वो गीत सुनवाइए। क्या सुनवाना
1: जी? मैं अक्सर एक गाना बहुत गुनगुनाता हूँ, एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है जो संतोष आनंद जी ने बहुत बेहतरीन उसकी
0: फिल्म शोर और मुकेश जी का और लता जी का गाना
1: जी हुआ। तो मैं चाहूंगा कि हमने हमारे श्रोताओं को गाना आप जरूर सुनाए।
0: पेश है ये गीत।

0: संतोष आनंदी ने बहुत बेहतरीन उसकी
1: फिल्म शोर और मुकेश जी का और लता जी का
0: जी जी जी, जी तो मैं चाहूंगा कि हमने हमारे श्रोताओं को गाना आप जरूर सुनाए।
1: पेश है ये गीत।

0: वाह, जैसा कि आपने कहा, मेरा भी बहुत ही पसंदीदा गीत ये है हेमंत जी। बहुत ही बढ़िया लगा ये गीत और उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा। समय अब इतना ही है कि हम अपने श्रोताओं से और आपसे विदा लें। आप अपने महत्वपूर्ण समय में से हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे कार्यक्रम के लिए समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिक्रमा विविधा। इस कार्यक्रम में वाचन स्वर अंजनी कुमार पांडेय का था।

अभी आप सुन रहे थे स्थानीय गतिविधियों के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा। प्रस्तुति सहयोग अंजनी कुमार पांडेय का था। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

आरजू है कि आप यहाँ आएं, आरजू है कि आप यहाँ आएं और फिर कहीं न जाएं। स्वागत है साथियों बातों और गीतों के सुरीले सफ़र में, अपने रेडियो हम सफ़र रहना के साथ कार्यक्रम गुंजन में। और हमारा इसरार आपसे यही है कि आप कार्यक्रम गुंजन के सफ़र में शामिल हो जाएं, क्योंकि आज कार्यक्रम में बातें करेंगे सेहत की, स्वाद की, संकल्प की, साथ ही मीठे मीठे सुरीले नगमे तो आपको सुनवाएंगे ही, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है बातों और गीतों का कार्यक्रम। और आज गुंजन कार्यक्रम में गूंजेगी बातें सेहत, स्वाद और संकल्प की। अब आप सोच रहे होंगे कि सेहत और स्वाद तो आपस में जुड़े हैं, पर संकल्प से जुड़ी क्या बातें होने वाली हैं, तो बताएंगे। सुनिए ये प्यारा सा गीत इस उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और बढ़िया होंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और कार्यक्रम में सबसे पहले बातें स्वाद और सेहत की। स्वाद के साथ सेहत भी देता है खरबूज। मीठा मीठा खरबूज गर्मियों में ठंडक देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद भी है। चलिए जानते हैं। विटामिन सी से भरपूर खरबूजा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेजन उत्पादन को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी त्वचा युवा और चमकदार बनी रहती है। इसमें मौजूद विटामिन ई दृष्टि में सुधार करता है और मोतियाबिंद और आयु से संबंधित

नेत्र रोगों के जोखिम को कम करता है। इसमें लगभग 90% पानी होने के कारण ये शरीर को हाइड्रेटेड रखता है, यानी पानी की कमी को रोकता है, डिहाइड्रेशन को रोकता है, और इसमें मौजूद फाइबर आंतों को स्वस्थ बनाए रखता है, कब्ज को दूर करता है, पाचन में सुधार करता है, पोटेशियम हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, रक्तचाप संतुलित करता है। और इसमें जो ल्यूटिन और जिएक्सिथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन से बचाते हैं। और खरबूजे में जो मौजूद होता है फोलेट, वो मस्तिष्क स्वास्थ्य, कोशिका पुनर्जनन और गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास में सहायक होता है। कम कैलोरी लेकिन प्राकृतिक शर्करा और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होने के कारण ये ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत है। इसमें ऐसे यौगिक होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और संपूर्ण हृदय को उसके स्वास्थ्य को सहारा देते हैं। तो बहुत ही फायदेमंद है खरबूज। और जानकारियां आपसे साझा करेंगे। फिलहाल सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत से पहले बातें कर रहे थे खरबूजों से होने वाले फायदे के बारे में, कि कैसे खरबूजे स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अब बातें करेंगे, क्या आपका भी गर्मियों में बर्फ खाने का मन करता है? अक्सर गर्मियों में बर्फ खाने की इच्छा होती है और ये इच्छा सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर आपको बार बार और बहुत अधिक बर्फ खाने का मन करता है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करें। इस तरह की आदत को पिका कहा जाता है, जो एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को ऐसे पदार्थ खाने का मन करता है जो सामान्य भोजन नहीं होते, जैसे मिट्टी, चौक या बर्फ। ये अक्सर शरीर में आयरन की कमी यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। जब शरीर में आयरन कम हो जाता है तो बर्फ चबाने में थोड़ी राहत या ताजगी महसूस होती है, इसलिए इसकी लत लग सकती है। ख़ास तौर पर महिलाओं और बच्चों में ये समस्या अधिक देखी जाती है। इसके अलावा लगातार बर्फ खाने से आपके दांतों को नुकसान पहुंच सकता है, दांतों की परत घिस सकती है और सेंसिटिविटी की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको हर थोड़ी देर में बर्फ खाने की तीव्र इच्छा हो रही हो तो आप इन उपायों को अपनाकर राहत पा सकते हैं। शरीर में आयरन की कमी का पता लगाने के लिए खून की जांच कराएं। यदि कमी पाई जाती है तो डॉक्टर की सलाह पर आयरन सप्लीमेंट या आयरन युक्त आहार लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, अनार, चुकंदर ये आयरन के अच्छे स्रोत हैं, और एक बार जब शरीर में पोषण की कमी पूरी हो जाती है तो ये आदत अपने आप धीरे धीरे कम हो सकती है। इसलिए आप इसे केवल गर्मी में राहत पाने का तरीका मानकर नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इसकी असली वजह जानने की कोशिश करें और डॉक्टर की सलाह लें। बातें करेंगे और फिलहाल सुनिए ये गीत

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

श्रोताओं, हम सब के साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो थोड़े अजीब लगते हैं, पर वे इतने आम होते हैं कि हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे किसी को उबासी लेते देखकर खुद को भी उबासी आ जाना, सोते सोते अचानक ऐसा लगना कि जैसे कि पैर फिसल गया, बैठे रहने पर पैर सुन्न हो जाना, या आँख या पलक फड़कना। आइए जानते हैं कि ऐसी आम पर अजीब स्थितियां कब सामान्य होती हैं और कब आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। क्या है शरीर के इस हरकत के पीछे का साइंस? एक दूसरे को देखकर उबासी या जभाई आना, इसे संक्रामक उबासी कहा जाता है। दिमाग की मिरर न्यूरॉन नाम की कोशिकाएं हमें दूसरों की क्रियाओं को नकल करने में मदद करती हैं। ये खास तौर पर करीबी लोगों के साथ होता है। बार बार ज़्यादा उबासी आना या साथ में कमजोरी, चक्कर या सांस लेने में तकलीफ होना गंभीर संकेत हो सकते हैं। सोते हुए झटका आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि गहरी नींद में सो रहे हैं और अचानक से झटका लगता है, ऐसा लगता है कि हम गिर पड़े। ये हिप्निक जर्क है। गहरी नींद में मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और कभी कभी दिमाग इसे गिरना समझ लेता है और सुरक्षा के लिए अचानक मांसपेशियां को झटका दे देता है। दिन में भी ऐसे झटके आएँ तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बातें और भी करेंगे, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुंजन में बातें कर रहे हैं शरीर में होने वाले अजीब संकेतों की, कब वो सामान्य है और कब चिंता का विषय है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से किसी नस पर दबाव पड़ जाता है और वहाँ ब्लड फ्लो कम हो जाता है। इससे झंझनाहट या सुन्नता महसूस होती है। बार बार पैर सुन्न या दर्द होना रोग का लक्षण हो सकता है। आंखें फड़कना, थकान, तनाव, नींद की कमी या ज़्यादा स्क्रीन देखने से आंखों की मांसपेशियां थक जाती हैं। इससे वे फड़कती हैं पर खुद ठीक हो जाती हैं। फड़कने के साथ चेहरे के दूसरे हिस्सों में खिंचाव लगे तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसी तरह डेजा वो होना, ये देखा हुआ है या ऐसा हो चुका है, ऐसा महसूस होना को कहते हैं डेजा वो है। कभी कभी दिमाग के याद रखने वाले हिस्से व नई जानकारियां समझने वाले हिस्से के बीच थोड़ी देर के लिए गड़बड़ हो जाती है और इसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले हो चुकी है, ऐसा महसूस होता है। और जानकारियां साझा करेंगे, लीजिए सुनिए ये गाना।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
4: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
3: अच्छा, वो कैसे?
4: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
3: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
4: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
3: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
4: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे

श्रोताओं, सोशल मीडिया के दौर में ध्यान केंद्रित करने में गिरावट आई है, यानी जो अटेंशन स्पैन है वो घटा है, तो दूसरों की बात सुनने का धैर्य भी कम हुआ है। शोध बताते हैं कि अच्छा श्रोता बनने के लिए ना सिर्फ हमारा जीवन बेहतर होता है बल्कि हमारे रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। अध्ययन बताते हैं कि ये भ्रम है कि अच्छा श्रोता ये तीन चीज़ें करता है कि दूसरों के बोलते समय नहीं टोकना, हाँ में हाँ मिलाना और उनकी बात याद रखना। ऐसा नहीं है, अच्छे श्रोता शांत न रहकर ज़रूरत पड़ने पर सार्थक प्रश्न भी करते हैं। ऐसे प्रश्न करते हैं जिनसे वक्ता का आत्मसम्मान बना रहे और ज़रूरत पड़ने पर सलाह भी देते हैं। चुप्पी का मतलब अच्छा श्रोता होना नहीं है। तो आप कैसे श्रोता हैं, हमारे कार्यक्रम सुनकर हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आइए सुनते हैं ये गीत।

0: राम राम हो विष्णु भैया।
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगत दे फटफट फटफट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही
1: कैसे कहिया विनु भैया। ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अभी तो शुरू है कि साहेब।
0: हाँ
1: हुँ?
0: तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: कार्यक्रम गुंजन में अब बातें संगीत के संदर्भ में। मधुर संगीत उस रिदम से भरा होता है जो इस सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है।

और जो हमारे भीतर भी अनवरत गुंजायमान है। संगीत को लेकर सबकी अपनी निजी पसंद होती है। अनेक युवाओं के लिए संगीत थिरकने का अवसर देने वाला होता है, लेकिन संगीत अपने श्रेष्ठतम रूप में तब होता है जब उसमें माधुर्य, सुकून और तल्लीनता के साथ लगाव हो।

श्रोताओं, गुंजन कार्यक्रम में आपने आज जिन फिल्मों के गीत सुने वो इस प्रकार हैं: चांदनी, सातवां आसमान, राजा, साया, जीना मरना तेरे संग, जीत जीना तेरी गली में। गए कलाकार थे लता मंगेशकर, बाबला मेहता, उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, विपिन सचदेवा, कुमार सानू और अलका याग्निक।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है।
1: ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। कुछ
1: ये रायपुर केंद्र है, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए आज से शुरू हो रही है नामांकन की प्रक्रिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर से शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों में आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। मंदिर में 9 मई से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही हैं। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व में आज का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री द्वारा मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक होगा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे देश में स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज बालोद जिले के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कपिलेश्वर शिव मंदिर में भी स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने बताया कि कपिलेश्वर शिव मंदिर में आयोजित होने वाले इस विशेष आयोजन में श्रद्धा, संस्कृति और भारतीय विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। वहीं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर बलरामपुर जिले के ऐतिहासिक स्थल डीपाडीह सामंत सरना में भी आज स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा और यह कार्यक्रम नई पीढ़ी में सांस्कृतिक जागरूकता और स्वाभिमान की भावना को सशक्त करेगा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों और आम उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत कल जशपुर और मुंगेली जिलों में कई विकास कार्यों की सौगात दी। जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के ग्राम कलीबा में उन्होंने 16 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक लागत के 12 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इनमें उच्च स्तरीय पुल, आधुनिक हाट बाजार, फल सब्जी मंडी, स्कूल भवन और महतारी सदन शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन, शिक्षा, कृषि, विपणन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मुंगेली जिले में मुख्यमंत्री ने 353 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक लागत के 414 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा गुरु घासीदास, महाराणा प्रताप और भक्त माता कर्मा की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। नवा रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल खेले गए आईपीएल टी20 क्रिकेट मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए। जवाब में 167 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत खराब रही, लेकिन कुणाल पांड्या की पारी ने टीम की जीत के करीब पहुंचाया और फिर आखिरी बॉल पर रसिक सलाम ने 2 रन लेकर टीम को जीत दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के

0: आज से शुरू हो रही है नामांकन की प्रक्रिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए जानते हैं तापमान सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सूचना समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत। इस कार्यक्रम में फोन पर आपसे बातचीत की है विजय कुमार ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं प्रमेंद्र कुमार।

0: Hello.
1: Hello.
2: माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, उसके आशीर्वाद से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता। माँ थक जाती है मगर कभी जताती नहीं, अपने बच्चों के लिए दर्द भी छुपाती रही। माँ के चेहरे की मुस्कान घर की रौनक होती है, उसकी दुआ हर मुश्किल में हिम्मत होती है। माँ के आंचल में सुकून का बसेरा मिलता है, उसके प्यार में ही हर दर्द का सवेरा मिलता है। माँ खुद भूखी रहकर भी बच्चों को खिलाती है, अपने हिस्से की खुशियाँ भी उन पर लुटाती है। माँ की बातों में दवा जैसा असर होता है, उसका साथ हर मौसम से बेहतर होता है। हजारों रिश्ते मिल जाएं इस दुनिया में, पर माँ जैसा प्यार कभी नहीं मिलता। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में। आज मैं हूँ आपके साथ विजय कुमार। तो आइए हमारे साथियों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारे कौन कौन साथी हमसे बातें करना चाह रहे हैं। हेलो।
3: हाँ सर जी, नमस्कार सर जी।
2: जी नमस्कार, बताइए कौन साथी बोल रहे हैं।
3: पवन कुमार सेन बोल रहा हूँ सर, गंडी पंडरिया से।
2: जी जी पवन जी, स्वागत है आपका आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
2: जी जी, तो बताइए कैसे हैं, क्या हाल चाल है इन दिनों, क्या कर रहे हैं
3: भाई? बस बहुत अच्छे सर जी। अब क्या है, गर्मी का मौसम चल रहा है, कभी बदली कभी धूप हो जाता है, तो इसलिए अभी हम लोग घर में ही आराम कर रहे हैं और साथ में अंबिकापुर आकाशवाणी के कार्यक्रम की ये आनंद ले रहे हैं सर जी।
2: जी जी जी, ये तो अच्छी बात है। वैसे हमारे सरगुजा संभाग में भी वही स्थिति है
3: अभी, प्राय सभी तरफ यही स्थिति सर जी, इसी तरह मौसम की सामना कर रहे हैं हम लोग सब।
2: हाँ,
3: अब क्या है, खान पान के वो ऊपर विशेष ध्यान रखेंगे तभी मार नहीं पड़ेंगे सर जी।
2: हाँ हाँ जी जी जी।
3: और सुनाओ सर, आप कुछ सुना दो।
2: हमारे तरफ तो ठीक है, हम तो सुनाते रहते हैं, बाकी ये कार्यक्रम होता है आप लोगों के लिए, आप लोग का हम जो भी बातें होती है उसे सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं।
3: हम तो बेसब्री से इंतजार करते रहते सर जी आप लोगों का प्रोग्राम सुनने के लिए।
2: जी जी जी।
3: और साथ ही साथ हम पत्र भी भेजते हैं, ईमेल भी भेज रहे हैं सर जी, और आप लोग बड़ा ही सुंदर ढंग से हमारे ईमेल पत्र को सम्मानित करते हैं और शामिल करते हैं सर जी।
2: हमें भी अच्छा लगता है आपके जब पत्र मिलते हैं हमें, और उन पत्रों को पढ़कर और आपकी फरमाइशें पूरी करके अच्छा लगता है हमें भी।
3: जी जी, और इसी तरह से इसी वजह से तो हम आप लोगों से जुड़ाव रखे हुए हैं और आप लोग हमसे जुड़ाव रखे हैं सर।
2: जी जी जी बिल्कुल। तो आज बता दीजिए कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे।
3: आज बिल्ला नंबर 786 फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, एक कव्वाली है उसमें, भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, ये वाला एक कव्वाली सर जी आपके केंद्र से इस कार्यक्रम को सुनते मतलब इस गीत को सुनना चाहूंगा सर जी। और एक

0: खास मेरे खान दोस्तों के लिए पैगाम की तरह आपके केंद्र से भेजना चाहूंगा मैं।
1: अच्छा जी जी,
0: इस गीत को बहुत दिल से अंबिकापुर आकाशवाणी से ही सुनने के लिए पसंद किया हूँ सर।
1: जी जी जी, ठीक है ना
0: जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, धन्यवाद।
1: पवन सेन जी, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, बताएं कौन साथी बोल रहे हैं।
0: जी विजय सर, मैं तुलेश्वर कुमार पैकरा बोल रहा हूँ, भड़गांव
1: अच्छा, जी तुलेश्वर कुमार पैकरा जी, बताइए कैसे हैं।
0: से। बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हो?
1: हम भी अच्छे हैं, आपके फोन आ जाते हैं तो और भी अच्छा लगता है,
0: जी
1: बातें सुनने के लिए हम उत्सुक
0: जी
1: रहते हैं।
0: जी बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। थोड़ा अंतराल भी लेना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे श्रोता ट्राई करते रहते हैं, तो कई बार लगाते हैं, हम सब बात करते रहे हैं हमेशा, तो फिर वो उनका कॉल लगाता है,
1: जी,
0: तो परेशानी होती है सबको।
1: हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो सभी
0: जी
1: को मौका मिलना चाहिए, है ना।
0: जी सर, सभी को मौका मिलना चाहिए। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं सर। अब तो एफएम में भी है, तो एफएम से सुनता हूँ। मुझे ज़्यादातर फोन इन प्रोग्राम्स बहुत अच्छे लगते हैं, और अभी तो नया प्रोग्राम भी आया हुआ है, इंस्टा फरमाइश, वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं इंस्टाग्राम यूज़ तो करता हूँ, लेकिन कभी मैंने मैसेज नहीं किया। धन्यवाद।
1: अच्छा,

0: की फरमाइश नहीं करी, लेकिन अच्छा अच्छे लगते हैं,
1: अच्छा।
0: सारे श्रोता फरमाइश भेजते रहते हैं। तो
1: जी
0: और पहले मोबाइल ऐप से सुनता था, और उससे पहले मीडियम वेव्स रेडियो थे तो रेडियो से सुनता था। पहले जब मैं स्कूल में था तो वहाँ पे सिग्नल अच्छे होते नहीं थे रेडियो के, तो हॉस्टल में क्योंकि मणिपुर और अंबिकापुर की दूरी थोड़ा ज़्यादा पड़ जाती है, तो इसलिए वहाँ पे सिग्नल अच्छे से मिलते नहीं थे रेडियो के। तो अब डिजिटल है साथ सब कुछ तो फिर अच्छा लगता है। FM में तो यहाँ पे अच्छा है, भटगांव में
1: अच्छा।
0: ज़्यादा 35-40 किलोमीटर दूर है, तो FM का सिग्नल स्ट्रांग ही रहता है।
1: हाँ, तो ठीक है, आप भी भाग लीजिएगा कभी इंस्टा फरमाइश में, और भी हमारे जो भी फरमाइशी कार्यक्रम हैं उनमें, है ना।
0: जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: ठीक।
0: और आपको तो मैं युवाणी में सुनता रहा हूँ
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: पहले से, तो
1: हाँ
0: बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और
1: जी
0: आज मदर्स डे भी है, तो माँ के ऊपर अच्छा सा प्यारा सा गाना सुनवा दीजिएगा, तेरी उंगली, उदित नारायण साहब की जो आवाज में है गाना, वो सुनवा दीजिए।
1: चलिए,
0: थैंक
1: ठीक है, बातचीत के लिए धन्यवाद, और हम आपको सुनाएंगे ये गीत।

0: स्वागत है आपका।
1: आपकी बात आपके विवरण सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जबलपुर से आपका श्रोता सुख सिंह बात कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आकाशवाणी के सदस्य
0: हम भी अच्छे हैं, सभी सदस्य अच्छे हैं अंबिकापुर के।
1: जी सर, गर्मी का मजा ले रहे हैं, गर्मी में अपना बचाव रखें।
0: जी जी,
1: खान पीन का सर, स्वास्थ्य का,
0: हाँ,
1: और पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें, उनको दाना पानी रखें।
0: जी जी,
1: यही हम सब कहते हैं।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं
1: सर। गर्मी है तो गाला सुना दीजिए। आज मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको।
0: जी जी, आपको भी
1: गाना है सर, पेट की दोपहरी में पांव जलता है।
0: अच्छा,
1: कोली नंबर।

0: मेहरबान जी सर, कुमार सानू चादरा सरगम की आवाज। और सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: जी हमें भी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके पसंद का गीत हम सुनाएंगे आपको।

0: हाँ सर जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते, बताइए कौन साथी बोल रहे हैं?
0: हाँ सर ध्रुवराम साहू बात कर रहा हूँ सर, कन्या बालाघाट मध्य प्रदेश से।
1: जी ध्रुवाराम जी, और बताइए कैसे
0: बहुत
1: हैं?
0: अच्छे हैं सर जी, आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं, सोचिए आज फोन लगाया जाए करके फोन लग गया सर।
1: बिल्कुल भाई, आपके लिए ही तो हम बैठे हैं यहाँ, आपसे बातें करने के लिए, है ना?
0: जी सर, जी सर, क्या है सर, ट्राई करते हैं और आप बेल भी जा रही है, नहीं भी उठाए तो भी हमको खुशी होती है।
1: और भाई लगाने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम
0: हाँ
1: सबसे एक ही बार तो बात नहीं कर सकते, हैं ना? इसलिए
0: नहीं जी, नहीं तो भी हमको दुख नहीं होता सर, बिल्कुल। क्या है, हमारी
1: हाँ
0: कम से कम बेल तो गई
1: जी
0: और
1: जी
0: कोशिश करते रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते।
1: हाँ हाँ
0: और
1: हाँ
0: अब देखो बात हो रही है ना आपसे,
1: जी जी
0: ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती कर रहे हैं।
1: अच्छा
0: जी सर, अभी क्या खेती में हूँ और खेत से ट्राई कर रहा था मेरे जामुन पेड़ के नीचे बैठकर।
1: वाह वाह जी जी हाँ,
0: हाँ
1: तो जामुन में तो फल लग गए हैं।
0: फूल लगे हैं सर, अभी फूल लग गए हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ अभी थोड़ा सा लेट होता है वो,
1: जी
0: बाकी आम भी फले हुए हैं, आम भी है, आम का ही बागीचा है।
1: अच्छा
0: का नाम है सर बीबी नंबर वन, और गीत के बोले सर मुझे माफ करना, ओम साई राम वाले की सुना है सर आज कार्यक्रम में। हमारे कुछ मित्र हैं सर,
1: बिल्कुल भाई, बताइए कौन
0: दो
1: कौन मित्र हैं आपके?
0: हाँ सर, डोगरिया मलाजखट से मुंदलाल पटले जी हैं, और इधर टिकरी पारा गंडई से जागेश्वर देवांगन जी है,
1: जी
0: और गंडई से ही पवन कुमार सेन जी है, और सुरेश रमेश साहू जी है दुर्ग जिला से, और लोहाईडी से अशोक कुमार साहू जी हैं सर।
1: अच्छा जी,
0: बिल्कुल आपके केंद्र में फोन लगाते रहते हैं,
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल,
0: और जब भी उनसे बातचीत होती है तो बिल्कुल आपके अंबिकापुर के बारे में चर्चा करते रहते हैं सर। संयोग से आपके अंबिकापुर भी हमें घूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है सर।
1: अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना?
0: हाँ बहुत ही मतलब आप दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है सर, देखने में अजूबा है एक प्रकार से। आपका जो जलजला क्षेत्र है और आपका जो एक ठिनठिनी करके एक गाँव है जिसमें हर पत्थर को बजाओ तो एक विशेष प्रकार कलसे के समान आवाज सुनाई देती है सर, संगीतमय है।
1: जी, ठिनठिनी पत्थर के नाम से वो फेमस
0: हाँ
1: है,
0: ठिठिनी
1: प्रसिद्ध है।
0: पत्थर के नाम से है,
1: जी,
0: वहाँ भी बजाकर देखे सर, बहुत ही अजूबा लगा।
1: हाँ,
0: और एक जलजला जो है वहाँ पर कूद कर भी देखे तो ऐसा लगता है कि धस जाएंगे, लेकिन धसते नहीं है। हाँ
1: ठीक,
0: उल्टा पानी वाला क्षेत्र है, टाइगर पॉइंट है, और जो सरगुजा स्टेट है वहाँ का जो पुरातात्विक स्थल वो भी देखे सर। सबसे अच्छी बात यह है कि आकाशवाणी कॉलोनी में ही रुके थे सर हम लोग 3 दिनों तक, वहाँ श्रोता सम्मेलन हुआ था तो वहीं रुके थे
1: जी,
0: आपके अंबिकापुर में। हाँ मतलब बहुत अच्छा रहा, वहाँ का स्थान आज भी यादगार है सर, ऐसा
1: जी,
0: लगता है कि हम वही हैं, याद
1: ठीक,
0: करते हैं तो।
1: जी
0: और
1: जी
0: रेडियो क्या है, ज्यादा को ताजा कर देती है सर।
1: हाँ बिल्कुल करती है, हाँ ताजा कर
0: हाँ
1: देती है।
0: बिल्कुल सर, ताजा कर देती है, और कोई भी पर्व हो, विशेष त्योहार हो, कोई अवसर हो तो पहले से ही तैयारी करके हमें वहाँ का जो ज्ञान पर जानकारी है वो पहले मिल जाती है सर।
1: जी,
0: मतलब एक प्रकार से हमारा संस्कृति का रक्षक कहना चाहिए आकाशवाणी को।
1: हाँ,
0: जी सर, और उसका उद्देश्य ही होता है भोजन हित है, भोजन सुखा, और सभी वर्गों के लिए विशेष ज्ञान पर कार्यक्रम होता है सर।
1: जी
0: जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।
1: चलिए, बहुत अच्छा हमें भी लगा, और आपने बहुत सारी बातें बताई हैं और हमारी भी यादें ताजी हो गई हैं, और इसी बातचीत के बाद अब हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: जी स्वागत है आपका आज के फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में। कौन साथी बोल रहे हैं?
1: हेलो, मैं रामधनु गोरता विकास लखनपुर से बात कर रहा हूँ।
0: जी जी रामधनु जी बताइए कैसे हैं?
1: जी सर नमस्कार सर जी।
0: हाँ हाँ नमस्कार, और बताइए क्या हाल चाल है भाई?
1: ठीक है सर, इन तो मौसम कभी बारिश तो कभी धूप, तो सेहत का भी ध्यान देना चाहिए।
0: हाँ हाँ तो बताइए किस तरह से ध्यान देना
1: चाहिए? तो पानी पीकर ही जाएं और साथी पकड़ के ही जाएं ताकि सेहत का कोई नुकसान ना हो। आप लोगों का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है सर, गुंजन कार्यक्रम और फोनिंग कार्यक्रम, आपकी बात आपकी गीत कार्यक्रम में सब अच्छा लगता है सर।
0: और आप सबकी प्रतिक्रिया हमें मिलती है तो हमें भी अच्छा लगता है और हम भी प्रयास करते हैं कि और बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप लोगों से ही सीखते हैं।
1: अब आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं तो अच्छा लगता है, मेरे माँ लगातार सुनते रहता है रेडियो, जिसे बैटरी खत्म हो गया ना तो मेरे को देता है लखनपुर की जा बैटरी लाना, तो मैं लखनपुर जाकर बैटरी लेके जाता हूँ फिर डलवाता हूँ। रेडियो में तो सुनते हैं कार्यक्रम, अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ हाँ
0: जी, तो आपके माता जी को कैसा लगता है कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा तो गुधोली कार्यक्रम सुनते हैं और रायपुर से छत्तीसगढ़ी समाचार होता है ना उसको लगातार सुनते हैं तो जानकारी मिलता है, चाहते हैं अच्छा आज ये चीज जानकारी सुनने में आ रहा है, ऐसे कोई भी जानकारी सुनकर तो रेडियो से ही सुनकर जानकारी मिलता है। माता का भी सेवा करना चाहिए है ना, जिन्होंने हमें जन्म लिया तो उसका भी उसका सही पालन करना चाहिए है ना।
0: जी जी
1: सुना दीजिएगा धड़कन का नाना करती चार की करी। हाँ। कर गई इसे करके और तारकेश्वरपुर से मधुसूदन है और पत्रापाली से खिलाड़ी यादव हैं और मेरे दोस्त गांव के हैं गुंदेलाल पीतम्बर सिंह, बहुत सारे दोस्त यार हैं, मुनेश्वर राजवाड़े हैं और मेरा बेटा अमन कुमार है, बेटी है रजनी कान।
0: हाँ चलिए ठीक है, इन सभी दोस्तों के साथ हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
1: धन्यवाद सर।

0: मैं गंडई टिकरी पार छत्तीसगढ़ से जागेश्वर देवान बोल रहा हूँ।
1: और बताइए कैसे हैं, क्या करते हैं जागेश्वर जी?
0: मेरा कृषि कार्य काम है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और गंडई में हूँ, अभी तो गर्मी दिन है मगर दो तीन दिन से यहाँ बारिश हो रहा है और दो तीन दिन से लगातार शाम को बारिश हो जाता है। अच्छा। मौसम में थोड़ा गड़बड़ी चल रहा है और हमारे मित्र लोग हैं, वो भी मेरे मित्र होता है।
1: कौन कौन है बताइए भाई?
0: ये कन्या बाला घाट से गुरुवार साहू जी है, मुन्ना लाल पटे है, से और पाहु भले से होकर के उत्तम सिंहेल है, सभी के पसंद पर मिस्टर नटवाल लाल के गीत सुना दे। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा।
1: बहुत अच्छी बातें हुई है आपसे और आपकी पसंद का गीत हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं, सुनिएगा।

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम,

0: जी, स्वागत है आपका आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में। कौन साथी बोल रहे हैं
1: जी? बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर जी, मैं चंद्रभान राजवाड़े बात कर रहा हूँ, गांव अनुजनगर, जिला फिरोजपुर, छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी चंद्रभान जी, और बताइए कैसे हैं? तो
1: सर जी मैं तो बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातें हो रही हैं।
0: जी जी हम भी अच्छे हैं, तो आपसे बातें करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
1: धन्यवाद सर, हमें भी आपसे बात करने के बहुत अच्छा लगता है सर, और हम भी इंतजार में रहते हैं कि कब आपसे बातें हो, और क्या है कि आजकल जो नियम बन गया है काफी फॉलो करना जरूरी है, इंतजार काफी लंबा हो जाता है, और
0: जी जी
1: कहा जाए तो किस्मत भी कभी कभी साथ नहीं देता है कि आपसे बातें करने, और
0: जी
1: आज बड़ी किस्मत की बात है कि आपसे बातें हो पा रही
0: है। हाँ हाँ,
1: खुश नसीब समझ रहे हैं आज अपने आप को।
0: जी जी हम भी खुश नसीब हैं, और आपके फोन कॉल्स आते हैं तभी ये कार्यक्रम भी सार्थक होता है।
1: जी जी बिल्कुल, हाँ सर, क्या है कि सर कार्यक्रम तो सभी श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम है, और
0: जी
1: क्या है कि सभी लोग बहुत इस कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और इंटरेस्ट रखते हुए अपने पसंद के गीत सुनने के आतुर रहते हैं सभी लोग।
0: जी जी
1: सर मैं ये भी कहना चाहूँगा सर कि आज बहुत ही खास दिन है, मातृत्व दिवस है, तो इसकी भी सही शुभकामनाएं सभी माताओं को हमारी ओर से। और क्या है कि सर आजकल मैं कहना चाहूँगा कि जो माँ की ममता और उनके प्यार का जो मोल कहा जाए वो बहुत ही अनमोल है, उनकी कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, और उनकी प्यार और ममता कहा जाए तो उसकी दुनिया में या कहीं कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसकी उसकी तुलना की जा सके, तो और सभी अपने माँ के प्रति इसमें प्यार बनाए रखें सर।
0: जी जी जी अतुलनीय है माँ का प्रेम, इसको तुलना नहीं किया जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, और क्या है कि माँ ही एक ऐसी है जो आ जाए तो दिन बताए हैं हमारी सभी कहा जाए तो जो भी आवश्यकताएं हो सबको समझ जाती हैं और उसको बिना कहे हैं पूरी कर देती हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: तो हमारा भी सर दायित्व बनता है कि अपनी माँ का साथ हमें अंतिम समय तक देना चाहिए, उनकी हमारा भी दायित्व है कि उनका जो ध्यान के लोग हम जिस वो हमें रखे हैं अपने ध्यान दिए हैं, हमें उनका कर्तव्य बनता है कि हम भी उनको साथ दें अंतिम समय तक।
0: अच्छे से उनका सेवा करें, है ना?
1: जी जी बिल्कुल, हाँ सर
0: जी। ठीक है, अब गीत बता दीजिए कौन सा सुनिएगा आज।
1: अब कोई भी एक गीत बजा दीजिएगा सर माँ के समर्पित, याद तो आ नहीं रहा है अभी अपने को, तो सर मैं कुछ दोस्तों को याद करना चाहूंगी, चाहूंगा आपका अनुमति हो तो।
0: बिल्कुल लीजिए अपने दोस्तों के नाम।
1: सर हमारे मित्र हैं मधुसूदन प्रजापति हैं, और

0: टेक चंद अग्रवाल जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, और कहा जाए तो सरगुजा रेडियो श्रोता संघ के सभी मित्र रहेंगे सर इस गाने में शामिल, और साथ में आप भी गाने में शामिल रहेंगे सर।
1: जी जी जी, तो चलिए आपसे ढेर सारी बातें हुई हैं और हम आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं।
0: ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा सर, हृदय से धन्यवाद आपका।
1: जी धन्यवाद।

0: जी, स्वागत है आपका आज के फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में। बताइए कौन साथी बोल रहे हैं।
1: जी विजय सर जी को हमारा नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: मैं सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगढ़ जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम सर जोड़े बोल रहा हूँ।
0: जी जी, और कैसे हैं? तो
1: जी बढ़िया है सर। क्या है कि कल तो थोड़ा आंधी तूफान आया था थोड़ा बहुत, और कहीं कहीं तेज वर्षा भी हुई है, लेकिन हमारे इधर तो खास वर्षा भी नहीं हुआ है।
0: अच्छा,
1: और गर्मी तेजी से है अभी, धूप भी तेजी से है ना। तो मैं यही कहूँगा कि अभी जैसे लोग कहीं कहीं बाहर आना जाना करते हैं, शादी ब्याह चल ही रहा है ना, या कुछ अन्य काम से, तो कोशिश करें कि धूप से बच के रहना चाहिए अभी।
0: जी,
1: और कहीं भी आना जाना करते हैं तो अपने साथ पानी बोतल और गमछा वगैरह सिर में बांध के ही चलना चाहिए।
0: हाँ,
1: ज़्यादा इमरजेंसी है तो, है ना
0: जी।
1: और बाइक वगैरह चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, और क्या है कि बाइक चलाते समय मोबाइल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग मैं देखता हूँ कि एक हाथ से बाइक चलाते हैं, एक हाथ से बात करते हैं, तो ये सरासर गलत बात है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है भाई।
1: क्या है कि इसे कई जगह घटित घटना भी हो जाता है, और इन दिनों खीरा तरबूज खाते रहना चाहिए,
0: हाँ
1: और जूस वगैरह का भी आनंद लेना चाहिए। जी, और आज मदर्स डे है, तो उन सभी माताओं को हमारा बहुत बहुत नमन है, है ना।
0: जी,
1: बहुत बहुत बधाई मदर्स डे पर।
0: तो गीत आज कौन सा सुनवा दिया जाए?
1: फिल्म एक रिश्ता और हम खुश हुए वाला गाना को बजा दीजिएगा। जी, कुछ श्रोताओं साथियों के नाम लेना चाहूंगा कार्यक्रम के माध्यम से।
0: जी
1: जी, कुलेश्वर राजवाड़े, मानिक राम प्रजापति, अरविंद कुमार यादव, राजकुमार नेवानी, खेलसाय सिंह मरकाम और तिजन सिंह मरावी, और आकाशवाणी अंबिकापुर से समस्त श्रोतागढ़ है।
0: जी जी जी, चलिए ठीक है, बातचीत के लिए
1: जी,
0: धन्यवाद।
1: बातचीत करके आपसे बहुत दिनों के बाद बातचीत हुआ, और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हमारा काल शामिल करने के लिए भी विजय सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी, आपको भी धन्यवाद फोन करने के लिए, और आपकी पसंद का गीत हम पहुंचा रहे हैं आपके
1: जी,
0: रेडियो
1: अब
0: तक।
1: हम कार्यक्रम के माध्यम से गाना का आनंद दे रहे हैं।
0: जी जी, लीजिए।

0: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका आज के फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में।
0: हाँ सर नमस्कार। सर मैं ग्राम तारकेश्वरपुर से मधुसूदन प्रजापति बोल रहा हूँ सर।
1: अच्छा जी जी
0: सर, मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा था, फिर मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि आज मेरा कहीं कॉल लग पाएगा
1: जी।
0: लेकिन आज बहुत ही अच्छा दिन है सर और मेरा फोन लग गया। तो
1: जी
0: आज मैं सबसे पहले मदर्स डे की आपके पूरे आकाशवाणी परिवार को और तमाम श्रोता साथियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा सर।
1: जी जी जी हमारी ओर से भी तमाम माताओं को मदर्स डे पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और बताइए क्या बातें हैं हमारे श्रोताओं तक
0: तो
1: बताने के लिए
0: सर।
1: जी
0: क्योंकि आज मदर्स डे है तो मैं मदर्स डे पर ही बात करना चाहूँगा सर।
1: जी जी
0: जो माँ होती है सर ने बच्चों के लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, मतलब अपना दुख सुख सब त्याग करके मतलब अपना जो पुत्र या पुत्री होती है उनके लिए सब कुछ मतलब न्यौछावर कर देती है। लेकिन कई बार क्या होता है सर कि जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता को नहीं समझ पाते हैं सर। तो मैं चाहूँगा कि हम मदर्स डे के ही दिन अपने माता पिता का सम्मान ना करें, अपने माता का हम पूरे दिन का मान सम्मान करें सर, ताकि भाई हमको इस धरती पे लाने का पूरा श्रेय माता पिता का है, तो हम उनका बहुत सम्मान और इज्जत करें, हमेशा उनका सम्मान करें सर।
1: बहुत अच्छी बातें बताई है आपने आज मदर्स डे पर
0: जी। एक बात और कहना चाहूँगा सर
1: जी,
0: क्योंकि अभी कुछ दिनों से आपके केंद्र से FM से भी रेडियो का प्रसारण सुनने को मिलता है और मेरे साथ कई ऐसे लोग मिलते हैं सर, मैं उन्हीं में से एक व्यक्ति का नाम याद करता हूँ, कृपेश दास जी हैं सर। वो हमेशा मेरे से मिलते हैं, रेडियो के बारे में पूछते रहते, खूब तारीफ करते हैं। तो उनको मैं बताया कि अभी आप अपने कार में आप FM 100.2 के भी माध्यम से अंबिकापुर आकाशवाणी को सुन सकते हैं और वे जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई सर।
1: अच्छा,
0: तो इस टाइप से जब बहुत पुराने लोग मिलते हैं जब रेडियो की बात करते हैं तो सर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैं ये बात आपकी आकाशवाणी तक भी मैं पहुंचाने का प्रयास

0: याद करता हूँ हमेशा।
1: जी, तो उन तक आप ये नहीं बताए कि आप भी फोन कर सकते हैं फोन इन कार्यक्रम
0: बिल्कुल
1: में? और
0: बिल्कुल बताया सर मैं।
1: अच्छा,
0: और उनको सबसे ज्यादा जो गांव का गीत होता है वो बहुत पसंद है।
1: तो चलिए ठीक है, और ये बातें भी आप उन्हें सुनने के लिए कहिएगा, है ना?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, बातचीत के लिए धन्यवाद, लेकिन बताइए गीत आज कौन सा सुनिएगा?
0: हाँ सर, चूंकि आज मदर्स डे है तो उसी पर आप कोई भी अच्छा सा गाना सुनवा दीजिएगा मदर्स डे पर आधारित।
1: तो चलिए मधुसूदन प्रजापति जी, बातचीत के लिए धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉल शामिल करने के लिए।
1: जी, सुनिएगा अपनी पसंद का
0: जी
1: गीत।
0: धन्यवाद।

0: दोस्तों, आज हमारे ढेर सारे साथियों से हमारी बातचीत हुई है, और यदि आप भी हमें फ़ोन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें हर रविवार को सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच इन फ़ोन नंबरों पर हमसे बात कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 231-917 और 231-918। अंबिकापुर से बाहर के श्रोता साथी इन फ़ोन नंबरों से पहले अंबिकापुर शहर का STD कोड नंबर 07774 अवश्य लगाएं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार, और हमें गीत संयोजन में सहयोग किया संगीता पटेल ने। तो इसी के साथ आज के फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत से मुझे यानी विजय कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत। कार्यक्रम में फोन पर आपसे बातचीत कर रहे थे विजय कुमार, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमेंद्र कुमार। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स, और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे।

0: नाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम को सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में स्वागत कक्ष, नागरिक सुविधाएं, भोजन कक्ष और ई पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनके बीच विभागों के बंटवारे की उम्मीद है। नए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की ये पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। नवनिर्वाचित तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलक वेत्री कड़गम के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार को 13 मई से पहले सदन में बहुमत साबित करना होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे, जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस दिन पोखरण परीक्षण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किए गए थे, जो देश की आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति की यात्रा में एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है, जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े शांति प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता न होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज 1.25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1089 अंक गिरकर 76,240 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के सोमनाथ में हैं। वे सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ

हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 11:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

स्वागत है साथियों, आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद में। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो साथी शक्ति। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म साजन से। आवाज़ है अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। इस गीत की फरमाइश हमें प्राप्त हुई है नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा की। इसी गीत को और भी पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक। बंगला मटिया बालौद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे। तिवर्ता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र सिंह मरकाम, गजेंद्र सिंह मरकाम, जयंती, ममता, मनीषा, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहेद्री बाई, मंजू मानसी, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना साजन फिल्म का गीत। कार्यक्रम की अगली पेशकश है फिल्म हम हैं राही प्यार से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, बोल हैं समीर के और संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले और आरती जौंधले, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू, औरंगाबाद से राजेश सावले पाटिल, शीतल, राजदीप, राशि राजेश, ग्राम कोंदला उदयपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से जयधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, कलेश्वर सिंह और सुमार साय पैकरा, दरियापुर बावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वडनेकर, अकोला से बलधीर दामोदर और अरुणा दामोदर, बिरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर,

चार मीनार चौक, गंडई पंडरिया से दरियाना मल, अनीता मोटवानी, राजेश, रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तेलदा से हरीश, कमल, सेतपाल, भूमिका और सुशीला दादी। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

लीजिए अब सुनिए फिल्म हमको दीवाना कर गए का गीत। लिखा है समीर ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने और आवाज़ दी है सोनू निगम और तुलसी कुमार की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेतराम और भूपेंद्र साहू, खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला और गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद, आदर्श नगर मालौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, धरसीमा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ, रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सीएल यादव, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, राही, सरिता गवहानकर, प्रिंस और एकांश गवहानकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहानकर और प्रणीता गवहानकर, बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहानकर, वैशाली गवहानकर, श्वेता, सुमित गवहानकर और ध्वनि गवहानकर। लीजिए सुनिए इन सभी का पसंद किया हुआ ये गीत।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउर ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ
1: आए
0: हाँ
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ
1: तहाँ
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अब ये तो शुरू होगी साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

अभी आप सुन रहे थे जब प्यार किसी से होता है का गीत। आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू और सोनू निगम की। गीतकार थे आनंद बख्शी। संगीत निर्देशन था जतिन ललित का। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नैनदास दीवान, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, जयप्रकाश, प्रीति, सिद्धांत, सौर्या और सानवी। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, भाई सुच्चा पाठक। मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर। भुरसुदा से चिराग, गजेंद्र, नेहा, चंद्रप्रकाश, संतोषी, भागवानी। बलौदा अकलतरा से दिलहरण।

गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दाग द फायर से। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ है, बोल है समीर के, संगीत राजेश रोशन का। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम की। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश निभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़ी, पूजा, सीता, सागर, आयुषी और हनी की। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन, सोनू और वंदना श्रीवास्तव की। बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन और धीरज सवसेरे की। बेलर गांव से हवा पर्वत अंचल से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन की। रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग और मीका की। आइए सुनते हैं समस्त श्रोताओं की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिर गीत फिल्म टक्कर से। आवाजें हैं अभिजीत और अलका की, गीतकार हैं माया गोविंद और संगीत निर्देशन है अनु मलिक का। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजिला, ज्योति और रियांश ठाकुर की। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा की। इंदौर से हमारे श्रोता मित्र हैं खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता, स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। इंदौर से ही हमारे श्रोता हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले।

अभिजीत और अलका के गए इस गीत के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 11:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगत, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विनु भैया, ए दे आगु तो ए दे बर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि यदि सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 MHz में भी एला है दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अभी तो शुरू है कि सा है।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

क्षमा कीजिएगा, तकनीकी कारणों से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण नहीं किया जा सका। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: करता है।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार, जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है
2: माई बाइसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को सड़क पर सावधानी से चलने की सलाह दी गई है, और जब वे सड़क पार करें तो पहले ध्यान से आसपास देखें।
3: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल?
4: वी आर फाइन सर।
3: आर योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल वेल?
4: यस सर।
3: वेरी गुड। ओके किड्स, नाउ टेल मी, हैव यू सीन a bicycle?
4: Yes sir, we have seen.
5: I have seen sir.
6: I like bicycle sir.
7: I love it.
3: That's very good. And children, bicycle can also be pronounced as bicycle. Okay, now tell me, how it looks like.
7: It has two wheels.
8: My cycle is big.

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता वो उसे पूरी लगन के साथ करते। जब उन्हें टैंक चलाने का काम मिला तो उन्होंने उसकी देखरेख, सफाई करने, मरम्मत करने जैसे सारे काम सीखे और किए।
5: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
6: साहब, आप क्यों परेशान होते हो? हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
5: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
6: वो तो ठीक है साहब,
5: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
6: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
5: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा

0: के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
1: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
0: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
2: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ कर दिखाने का।
4: बेटा एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
3: जी।
4: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
3: जानता हूं मां।
4: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
3: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
4: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड

0: लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
2: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
3: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
2: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
4: यस सर।
2: नाथ सिंह निशाना साधो।
3: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
2: फायर।
3: सर
2: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
4: जी।
2: फायर।
3: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
2: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
3: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्र

0: गहरीता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग।

अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। वक्त हो चला है शीर्षक फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चयन का।

आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का इस विशेष कार्यक्रम चयन में स्वागत है। आज हमारे चयन का विषय बेहद खास है और वो विषय है पिया। साहित्य हो या संगीत, पिया शब्द हमेशा एक गहरे आत्मीय संबंध का प्रतीक रहा है। यह शब्द केवल एक संबोधन नहीं बल्कि एक विश्वास और अटूट साथ की पहचान है। तो आइए सुरों के इस सफर का आगाज करते हैं इस पहले गीत के साथ।

श्रोताओं, कहा जाता है कि रिश्तों की नींव केवल शब्दों पर नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और मर्यादा पर टिकी होती है। पिया का साथ उस भरोसे की डोर है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में संबल प्रदान करती है। इसी गरिमा और सौम्यता को दर्शाता है हमारा अगला गीत।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आका

0: अश्वनी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

श्रोताओं, जीवन की आपाधापी में अक्सर कुछ पुराने पल और यादें मन के बंद झरोखों को थपथपाती हैं। कभी कोई मधुर धुन तो कभी मौसम का बदला मिजाज अपने पिया की गरिमामयी उपस्थिति की याद दिला ही देता है। इन्हीं यादों और बिताए हुए सुनहरे पलों को समेटे हुए पेश है हमारा अगला खूबसूरत सा नगमा।

तिगतिगता लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज में लत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

प्रिया के प्रति समर्पण ही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती, बस एक दूसरे की खुशी और उन्नति की कामना होती है। वही साथ सच्चा होता है। सादगी और निश्चल प्रेम से भरी इसी भावना को संगीत के धागे में पिरोया है हमारे इस अगले गीत ने। आइए साथ मिलकर इस गीत का आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, पिया शब्द की महिमा ही ऐसी होती है कि सभी इसके सुरों में खो जाते हैं। सुरों के इसी बहाव में मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आप जो गीत सुन रहे थे उनमें पहला गीत था गाइड फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ थी और संगीत निर्देशन था SD बर्मन का। अगला गीत परिणीता फिल्म से, आवाज़ें थी श्रेया घोषाल और सोनू निगम की, संगीत निर्देशक थे शांतनु मोइत्रा। आशा भोसले और अशोक कुमार के युगल स्वर में आपने सुना खूबसूरत फिल्म का गीत, संगीत था RD बर्मन का। और अभी आप सुन रहे थे अभिमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत निर्देशक थे SD बर्मन। साथियों, पिया शब्द के विविध रंगों को समेटे हुए हमारा आज का यह चयन अब विदा लेने के मोड़ पर है। संगीत और शब्दों का यह तालमेल उम्मीद है कि आपके दिल को छू गया होगा। हमें अपनी दुआओं और यादों में बनाए रखिएगा। अब मुझे यानी उद्घोषक शक्ति को कार्यक्रम के इस आखिर गीत के साथ ही दीजिए आज्ञा। सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में गूंज उठी शहनाई फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में। गीतकार हैं भारत व्यास, संगीत निर्देशक हैं वसंत देसाई।

गूंज उठी शहनाई फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चयन यहीं संपन्न हुआ। शक्ति को दीजिए अभाग्या। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे शीर्षक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 1000 वर्ष के लिए भारत की प्रेरणा का उत्सव है। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
1: सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं

0: उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से सात अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया।
0: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भटियात उपमंडल में पर्यटकों को ले जा रहे एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 885 अंक गिरकर 76,443 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बात के पुनः प्रसारण में फसलों के लिए पोषक तत्व विषय पर सामयिक सुझाव।
1: फसलों की पैदावार के लिए कुछ प्रमुख पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उनके कार्य और उनके कमी के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। जैसे नत्रजन के कार्य और कमी के लक्षण हैं, यह पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में योग करता है, यह पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, धान्य फसलों के दानों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। नत्रजन की कमी से पौधों का रंग हल्का हरा, बढ़वार सामान्य से कम और कल्लों की संख्या में कमी हो जाती है। पौधों की पत्तियों का रंग पीला या हल्का हरा हो जाता है। दाने वाली फसलें जैसे मकई, धान आदि में सबसे

0: पौधों की निचली पत्तियां सूखना आरंभ कर देती हैं और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां भी सूख जाती हैं। पत्तियों का रंग सफ़ेद और पत्तियां कभी कभी जल जाती हैं। हरी पत्तियों के बीच बीच में सफ़ेद धब्बे भी पड़ जाते हैं, वृक्ष पर फल पकने से पहले गिर जाते हैं। नत्रजन के संबंध में उपचार इस प्रकार हैं, पहला छिड़काव द्वारा और दूसरा मृदा में डालकर। नत्रजन की कमी का उपचार, खड़ी फसल के खेतों की निदाई गुड़ाई के बाद कतार में यूरिया के छिड़काव कर या यूरिया को 2 से 4% का घोल बनाकर फसल के पत्तों पर छिड़काव करने से लाभ होता है। स्फुर के कार्य और कमी के लक्षण और उपचार इस प्रकार हैं, जड़ प्रणाली का विकास स्फुर करता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, फसलों को समय पर पकने में मदद करता है, धान्य फसलों में कलों की संख्या को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप बालियों और दानों की संख्या बढ़ती है, ऊर्जा रूपांतर, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाने में योग देता है, दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में स्थित राइजोबियम बैक्टीरिया की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा बैंगनी हो जाता है और पत्तियों का अग्रभाग मर जाता है। पौधों का रंग प्राय गहरा ही रहता है पर निचली पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं। खड़ी फसल पर स्फुर की कमी का उपचार संभव नहीं है, इसके लिए मिट्टी जांच कराने के बाद अनुशंसित स्फुर की मात्रा को बुआई से पहले कंपोस्ट के साथ मिलाकर डालने से पौधों के लिए स्फुर की उपलब्धता बढ़ जाती है। इसी तरह से पोटाश के कार्य और कमी के लक्षण और उपचार इस प्रकार हैं, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में पोटेशियम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आलू, चुकंदर, गन्ना जैसी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी है। धान्य फसलों, विशेषकर धान और गेहूं में ये मजबूत और कड़े तने तैयार करता है जिसके कारण पौधे गिरते नहीं हैं, बीज और फल को चमकीला और मजबूत बनाता है, पौधों में रोग निरोधी शक्ति को बढ़ाता है, कोशिकाओं में स्थित जल की मात्रा को नियंत्रित करके पोटेशियम पाला और सूखे से होने वाली हानि को कम करता है और पौधों की रक्षा करता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में कार्बोहाइड्रेट की स्थानांतरण में मदद करता है। पोटाश की कमी से पत्तियों के किनारे कटे फटे और उनका अग्रभाग भूरा हो जाता है। पोटाश की कमी को बुआई से पहले मिट्टी की जांच से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पोटाश उर्वरक की अनुशंसा वाली मात्रा डालकर या खड़ी फसल में पोटेशियम सल्फेट का 2 से 4% घोल का छिड़काव कर उपचार किया जा सकता है। सल्फर यानी गंधक के कार्य और कमी के लक्षण, यह एमिनो एसिड और प्रोटीन संश्लेषण के लिए ज़रूरी है, क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, सरसों परिवार और प्याज परिवार के पौधों में और तीसी, सोयाबीन और मूंगफली में तेल की मात्रा को बढ़ाता है, गंधक दाल वाली फसलों में जड़ वृद्धि और बीज निर्माण और जड़ ग्रंथियों के विकास में योगदान देता है, दलहनी और तिलहनी फसलों वाली खेती की मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए SSP, फास्फो, जिप्सम और सल्फर मिश्रित उर्वरक का उपयोग लाभप्रद रहता है। इसी तरह बोरान कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में योगदान देता है। बुआई से पहले अच्छे ढंग से सड़ी कंपोस्ट खाद और 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बोरेक्स उर्वरक का उपयोग करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती के बाद के पुनः प्रसारण में सामयिक सुझाव। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। लीजिए पेश है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर को साइन।

संगी होर और स्वागत है हमार घर गोसाइन कार्यक्रम में। आय संगे रही रमा बहिन, जय जोहार, राम राम। स्वामी विवेकानंद कह रहिन कि जब मनसे मन ला अपन गंदा और मैला कपड़ा ले शरम आते तो हमार जो गंदा और मैला विचार आ है ओमें भी हमन ला शरम आना चाहिए। देखिए सही बात है कि अपन विचार अपन गोठ हमन ला हमेशा बढ़िया रखना चाहिए और ऐसा रखना चाहिए कि सामने हमार जो भी आ है, चाहे तो लड़का हो, चाहे युवा हो, चाहे कोनो भी उम्र के हो, बुजुर्ग हो, कि ओमन ला हमन कर गोठ बात ला सुन के बढ़िया लागे, अच्छा लागे और खुशी मिले। यही प्रयास हमन ला करना चाहिए कि हर चीज़ में हमन ऐसा गोठ करी, ऐसा

एन काम करी कि दूसर जन ला खुशी भेटाए। देखी हमर सरकार भी ऐसन काम करत रहते कि जम्मो जे जो अपन देश में रहे वाला हैं ओमन ला कोनो ना कोनो तरीका से सुख मिल सके और ओमन कर जो भी सुविधा है जो भी ओमन पाना चाहता है वो सब चीज़ पूरा हो सके। और हमर बहनी मन पर तो ढेरे कने से काम होत रहते कि जेकर माध्यम से हमर बहनी मन भाई सुखी होता है और काम भी भेटाता है ओमन ला, चाहे तो हमन कोनो रोजगार योजना के बात कर ली, चाहे तो हमर उज्ज्वला योजना के बात कर ली, चाहे तो हमर जननी सुरक्षा योजना कर बात कर ली। और आज हमन यही कर विषय में जानब कि हमर जो जननी सुरक्षा योजना है एहर का है। एहर हमर सरकार कर एक ठन खास योजना है और जो हमर गर्भवती बहनी मना है ओमन बरा है। देखी सरकारी अस्पताल में जो हमर बहनी मन जाते हैं तो ओमन ला और प्रोत्साहित करे बर और जे वहाँ जाए, आज हमन देखत ही कि जम्मो गति के अस्पताल में साफ सफाई सब जात कर व्यवस्था होता है। और यही में हमर बहनी मन जाए के अपन प्रसव कराएं ऐसन प्रोत्साहित करे बर ये योजना ला चलाल गईसा है। और इमें नगद पैसा देह कर व्यवस्था है। अब जो गरीब हमर बहनी मना है तो मन भाई जल्दी से कहूँ जाए के जहाँ पे ज़्यादा पैसा रुपया लगेल वहाँ पे अपन भाई प्रसव भी करा नहीं सकता है, तो ऐसन में सरकारी अस्पताल में ओमन जाए वहाँ पे अपन प्रसव कराएं एक व्यवस्था करल गई सा है। और एकर यो उद्देश्य है कि जो शिशु और महिला मन कर भी हमर बहनी मन कर भी मृत्यु हो जात रहीस तो वो जो दर है वो हर कम हो सके। तो जो भी हमार बर मुफ्त में ये सब योजना भेटाता है सेवा देहता है सरकार, ये सब चीज़ ला हमन ला सोचना है और एकर लाभ उठाना है। अब देखिए घामा कर बेरा भी आए तो घामा कर बेरा में भी हमन सोची कि भाई बहनी मन भी सोचें, अब जो लड़कोरिया हमार दाई मना है वह मन ला देखना है, जो हमार जो बुजुर्ग हैं वहू मन ला देखना है, और कोनो भी जैसे उम्र के हो जाए तो सब झीला सोचना है कि भर घामा कर बेरा है तो हमन ला अपन जो खान पाना है ओला बढ़ियान रखना है, अपन पानी के भरपूर उपयोग करना है, पसीना निकलता है तो हमें पानी हर भी निकल जाता है तो हमन ला पानी बढ़ियान पीना है, कपड़ा भी ऐसा पहनना है कि जेकर में ज़्यादा हमन ला गर्म नहीं लगे, जैसे गाढ़ा रंग के कपड़ा हर रहते तो ओला नहीं पहनी, हल्का रंग के कपड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा भाई सूती कपड़ा पहनी तो हर बढ़िया ना है। और खाली पेट तो हमन ला कहूँ भी बाहर नहीं निकलना है और बढ़िया ढाक टोप के निकलना है, ऐसा हमन तिहा करब तो हमन स्वस्थ रहो और ये गर्मी में भी बाचे रहब। देखिए आगू गोट बात और करब ये संदेश में ना है तो लगी सुनी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हो संगी हो देखी संदेश मन लाहा सुने ना भाई हमन गोट बात करत करत एहू तिहा करत रहती कि हमर संगी मन हमर घर गोसाइन कार्यक्रम ला सुनता है तो भाई थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। तो अजय छत्तीसगढ़ी गीत लाने हैं तो लिगी ला सुनी।

0: ममता चंद्राकर कर गाले बढ़िया हमन छत्तीसगढ़ी गीत सुनत रहे ना। देखिए हमन भेंटवार्ता भी लान थी और रिकिम रिकिम की गोट बात हमार संकर आते हैं हमार संगी मन, कभी कोनो डॉक्टर आते कभी कोनो वकील बहनी भी आते। तो देखिए आज जो बहन आए ना हैं बहुत खास विषय में उनकर संगोट बात हुए है। तो देखिए लगी सुनी ये भेंटवार्ता ला संगी हो। आज हमार भेंटवार्ता में हमार संगे आई ना हैं आराधना बहन और अपन विचार बताही। हमार आज कर विषय देखी बहुत बढ़िया विषय है बढ़ता प्रदूषण और ए में हमार पहल का हो सकता है। तो आराधना बहन सबसे पहले तो भैर और स्वागत है हमारे कार्यक्रम में हमार आकाशवाणी अंबिकापुर में। और सबले पहले का बोलना चाहत था?
1: मैं सबसे पहले आप मन के धन्यवाद करत हूँ कि मुके ये जग आए के मौका देहा। आप सब मनला हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहत हूँ।
0: हाँ तो देखिए भाई हमरे जितना भी संगी मना है सुनता है और आज सुनी कि ये विषय में बहुत देखी। आज हमरे जाना थी कि सब कति रिकिम रिकिम के प्रदूषण फैलता है तो सुनी जानी और हमार बहनी मन भी देखी सुनता है तो मन भी समझियो कुछ नवा चीज़ भी ऐसे बतैया कि जेकर ले हमन अपन आस पास में ये जो विषय है चाहे हमार कती ले अगर कुछ होता है प्रदूषण तो ओला हमन थोड़ा सा कमी कर सकत ही। तो सबले पहले विषय में क्या कहना चाहती?
1: सबसे पहले तो हमला ये जानना जरूरी है हमन ये जानबे नहीं करती कि प्रदूषण का है हमन।

0: अपन जीवन जियत जाती, हमन ला पते नहीं चलल के हमर दिन भर में जो कुछ करती उमे प्रदूषण का होल। तो प्रदूषण के बारे में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमर जो ये प्रकृति है ये एक संतुलन में रहते, हमन ला हर चीज एक व्यवस्थित मात्रा में दी से, हमन का करती ओ व्यवस्थित मात्रा ला छेड़ दे हती, तो वो व्यवस्थित मात्रा में जो दोष हो जाएल तेला प्रदूषण कहती। प्रदूषण के चक्कर में हमला ना शुद्ध पानी मिलेल, ना शुद्ध हवा मिलेल, ना शुद्ध खाना मिल पाते और ना ही शांत वातावरण मिलत है जेमे हमन सुकून से रह सकती।
1: वो हमरे करला है, देखिए
0: हमरे करला है, हमला सबसे ज्यादा परेशानी है प्रदूषण से, पर कारण भी हम ही मन ही। हमला ये कह सकती कि एगो शराब मिली से जेकर जन्मदाता हम ही मन ही, और मजबूरन हम सबला इला सहना भी है, काहे कि हमन सब जो है सुविधा के कह सकती कि आदि हो चुके ही। हम सबला पता है कि ये सुविधा के जब बनाए में जो प्रकृति के साथ जितना छेड़छाड़ होते दिनों दिन हमन जो है अपन अंत के तरफ बढ़त जाती। बाकी हम सब ये सुविधा से समझौता हम करे बर तैयार नहीं है। हमर सामने जो है कि हमला चाहिए कि हम सब सुविधा भी झेली और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ भी ना हुए, तो एकर कारण
1: भाई ऐसे नहीं हो सकता है कि भाई हमरे सब चीज़ के लाभ भी उठा थी और ओला ख़त्म भी करत जाथन, ओमे खराबी भी करत जाथन और हमला बढ़िया चीज़ भी भेटाए,
0: बढ़िया चीज़ भी
1: भेट सकता है नहीं। हाँ। तो देखिए आज सब कती हमन दिखत ही कि चाहे हमारे यहाँ हो गई चाहे पूरा दुनिया में हमन देख ली कि सब कती ये प्रदूषण के मारला हमन झेलत थी, एक बारे में क्या कहना चाहती?
0: दुनिया के अगर मैं पूरा दुनिया के एक साथ करके देखूं तो आज के समय में हमर सामने सबसे बड़ा समस्या तो हो गई से जलवायु के, जला हमन कथी कि मौसम के समस्या। आज हम सब देखत ही कि कोनो मौसम अपन टाइम पे नहीं आते, बेमौसम बारिश हुआ है, कभी कहीं सूखा पड़ जाता है, कभी सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं आते, गर्मी के तो हाले मत पूछा, जला के राख कर दी ही ऐसा लगता है। एकर अलावा हमर जग जो संसाधन कह सके थी कोयला लोहा दिन ब दिन हमन खोदत जाती खत्म हो जाते। बाकी हमन ला क्या का लगत है कि ये सब जो है असीमित मात्रा में है, एक खत्म ही नहीं हो सके। लेकिन हमला जानना बड़ा बहुत जरूरी है कि ये सब भी एक सीमा में है, एकर भी एक लिमिटेशन है कह सकत ही।
1: तो भाई उकर जितना है कि इतना हमला करना चाहिए और थोड़ा सा ओला बचाना भी चाहिए। एक तो जैसे सीमा रेखा हम निर्धारित करती कोनो भी चीज के नहीं। हाँ। तो बहुत सारा ऐसा चीज है हमारे आसपास में कि जो खत्म हो सकता है, ऐसे नहीं है कि बगरा हो रहा है, खूब सारा हमार जगह है हमन खत्म करी और वो आज जाइए, ऐसा नहीं हो। नहीं
0: आजकल आप मन देखा था कि पहले जमाना में जो जानवर मन मिलत रहे वो मन खत्म हो गई से। हाँ, पहले हाँ, जमाना हाँ। के हमन चिड़िया नहीं देखे के मिलत है। हाँ। कौवा नहीं देखे के मिलत है। हाँ। एमन खत्म हो जाते और एकर एकमात्र कारण जो कह सकत ही ये पर्यावरण है। पहले के खाना सब में कितना स्वाद लगत रहीस, खाद और दुनिया भर के जीवनाशक कीटनाशक डाल करके उकर स्वादों ला खत्म कर दे,
1: पर्यावरण में हमन प्रदूषण कर डाले ही रिकी मरी क्योंकि नहीं। तो देखिए का का प्रदूषण जो होता है कौन कौन कारण से ओला सोचे थे ला थोड़ कुन बताई।
0: सबसे पहला तो कह सकत ही कि हवा में ला हमन प्रदूषित कर दे ही। दिन भर गाड़ी घोड़ा में चलना है, दू कदम पैदल चले बर कह दी तो लगेल कि नहीं एकर साथ ही हमन जिम जा सकत ही। बाकी कह दे भी बाकी कहिया कि जा करके दू कदम चल के झोला भर के सब्जी ले आवा पैदल चल के, ना दू कदम में काबर चल हूँ, मुके गाड़ी से जाना है। दुनिया भर के चीज़ बनत है ते हर फैक्ट्री में चलत, ओकर चिमनी से निकले वाला धुआं केमिकल हवा में मिलत है, तेला पानी में मिला थी, एक तरफ से हमन हवाला दूषित कर दे गई, दूसर तरफ से हमन पानी ला मैला कर दहन और हमन ला शुद्ध पानी भी चाहिए। ओकर साथ एकर केमिकल ला हमन मिला दहन मिट्टी में तो माटी हर घलो दूषित हो गई। और हमन
1: माटी में देखी सब प्रकार के खेती बाड़ी सब जात होता है, हमरे जो पहले लगात रहन बढ़िया फूल पौधा तो और इसने हो जाए तो आजकल देखी कि वैसे नहीं हुए नहीं। और रिकिम रिकिम के खाद पानी के उपयोग होता है।
0: आजकल हमर सोच है कि हमन जल्दी कोनो चीज़ पाली तो जल्दी खेती ला पैदा करे बर ओमे तरह तरह के रसायन कीटनाशक दवाई मन ला छिड़कत ही ताकि जल्दी उपज हो। तेकर बर तो मिट्टी भी दूषित हो गई।

0: खाद्य पदार्थ भी दूषित हो गई से, तेलाहामन खाती अलग अलग बीमारी से ग्रसित होती,
1: रिकम रिकम के बीमारी होता है,
0: रिकम रिकम के बीमारी होता है, साफ सफाई के ध्यान नहीं, प्लास्टिक मन नाली में बहा थी, हमन नाली मन में बहा देती, ते नाली हर जा करके पानी में मिलत है, गाय बछिया मन प्लास्टिक ला खाते हैं, कूड़ा ला खाते हैं, बेचारा हमर चक्कर में वो हुमन बीमार पड़त है।
1: और कितना झन तो मरियो जाता है भाई,
0: नहीं
1: भाव तो। और देखिए एकर संगे संगे आवाज जो होल बहुत ज्यादा, जिला हमन ध्वनि प्रदूषण कथी तो ओकर परेशानी कैसे हमन झेलती हो, कैसे बाचे सकती।
0: देखो गाड़ी में चलती ते हर शोर करेल, आजकल के लड़का मल्ला देखता साइलेंसर से निकाल करके जबरदस्ती पे पे पे पे करके चलत है, लाउड स्पीकर हमला तेज म्यूजिक चाहिए, बिना डीजे के हमारे यहाँ शादी नहीं होल, आजकल कारखाना में निकले आवाज निकले, हवाई जहाज सीटी घर में बाजा टीवी ये सब चीज से क्या हो कि ध्वनि के प्रदूषण हो। तो हमन ला ये चाहिए कि एक ऐसा व्यवस्था बनाना चाहिए और हमन ला भी जागरूक होना चाहिए, खाली सरकार का कर ही कि बैंड कर दा डीजे ला, हमन ला भी चाहिए कि ओकर आवाज ला सीमित कर दी, वो एक लिमिट तय कर ली कि अगर से ऊपर हमन ला नहीं बजाना है, जहाँ जरूरी है तहाँ हॉल ना बजावा।
1: देखिए हमारे भाई अपन खुशी बर करी है, एक दूसर जे जग गोइठो नहीं कर सकती, नहीं इतना जोर जोर से बाजत रहे,
0: बाजत रहे। आजकल तो हर चीज में कोनो तीज तिहार निकल जाए तो लाउड स्पीकर बैंड बाजा जुलूस और बिना चिल्लाए कोनो कामे नहीं होइल, कान मनला एकदम फाड़ देखस लगेल, छोटा बच्चा मन तो डर के छुप जाते घर के अंदर। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है ध्वनि प्रदूषण रोके बर भी। ओकर बाद का होल कि ध्वनि प्रदूषण से का होल ना कि आजकल देखे के मिलत है कि बहुत ज्यादा शोर से का होल कि दिल के खतरा, दिल के रोग, हार्ट अटैक आजकल कितना सामान्य चीज सुने पर मिलत है। और एक बहुत बड़ा कारण है कि कान के क्षमता से ऊपर के आवाज जो आप मल्ला सुने के एगो क्षमता होल ओकर से ऊपर जई है ना तो आके दुनिया भर के बीमारी हुई, आके बीपी हो जाही, आपके हार्ट अटैक हो जाही, आप तुहर जो शरीर है वो एक जगह बैठ जाही, वो काम नहीं करी, हमला लगल कि हमला थकान होते हैं, हमन समझ ही नहीं पाती कि ये बाहर के प्रदूषण है जो हमारे शरीर ला शिथिल बना दही से।
1: तो देखिए जैसे बहुत सारा गोट बताया है कि भाई जैसे हमारे जल प्रदूषण भी होगी, पानी के प्रदूषण हमन करत थी और हवा के भी प्रदूषण होता है और फैक्ट्री के कूड़ा करकट सब हम पानी में डालत थी, वो तो धुआं हर तो करबे करत है, ओकर कचरा हर भी करत है, माटी ला भी हमन ला बचाना है, माटी हर भी प्रदूषित होता है। तो देखिए चलत चलत सब हमार सुनने वाला सुनिया जितना झन है सुनता है कि आज भाई हमार बहन का बताता है, तो चलत चलत का कहना चाहता।
0: चलत चलत तो मैं बस इतना कहना चाहत हूँ कि खाली सरकार के करे से या दूसर मन से उम्मीद करे से कि एहर ए गाड़ी तेज चलात है, मैं नहीं चलात हूँ, सरकार ला करना चाहिए, मैं काहे करूँ, तो एकर से जागरूकता नहीं आई। सबसे पहले हमन ला समझना पड़ी कि हमन जो करती वो प्रदूषण है, हमन बेमतलब के पानी बहाती तो हमन ला अपन घर के पानी के बर्बादी ला रोकना है, हमन ला धुआं कम करना है, हमन ला शोर कम करना है। जब एक एक आदमी अपन से ये जो पर्यावरण के प्रदूषण होते एकर प्रति अगर जागरूक हो जाही तो धीरे धीरे खत्म हो जाही। हमला चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा ली, चारों तरफ हरियाली हो ही, कूड़ा कचरा जो आजकल तो सरकार घरे घरे कूड़ा कचरा उठाए बर भेजबे करत है, टाइम से ओके दे दी, नदी नाला में कोनो चीज ना फेंकी, पूजा पाठ के चीज जाकर के नदी में बहाए से अच्छा है कि ओके गड्ढा में खोद करके दबा दी, प्लास्टिक ला नहीं डाली पानी में। ऐसे थी बाकी सारा प्रदूषण रोके के सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हर इंसान के अपन खुद के है, दूसर ला देखना बंद करे।
1: बंद करे। देखिए आज बहुत अच्छा ये विषय रही और बहुत अच्छा जानकारी दे ही, तो यहाँ आए बर इतना अच्छा जानकारी दे बर राव ढेरे धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: देखिए संगी हो ढेरे बढ़िया गोट बात करीन, हमार आराधना सिंह बहन रहीन जिनका जो गोट बात होत रही सो बहुत विस्तार से बताइन कि भाई का प्रदूषण आ है और प्रदूषण ले हमन कैसे बात सकत थी। आओ चलत चलत बहुत बढ़िया गोट बात करीन कि भाई दूसर ला नहीं देखना है कि ओहर का करत है, मैं

0: आकर रथों की बहुत तेजी में चलाता है गाड़ी। और आजकल तो ऐसने करबे करती कि हमन की भाई ओकर जगह ये चीज़ा है तो महू लाओ चीज लेना है। और इमे हमने सोचती कि हमार भाई अपन पैसा रुपया ला भी नहीं देखती, ओकर ले हमार का रहेल कि जो कभो कभो हमन जो बचत करे रहती तो वो हर ख़त्म हो जाए। तो अपन कथी ना कि एक ठो जो बजट रहेल एक ठो ओला हमन ला बनाए के चलना चाहिए। एक ठो अपन महीना भर में सोच समझ के जैसे हमार कमाई धमाइया है तो ओला देख के हमन ला चलना चाहिए। एक ठो सामान उमान का हमन लेना है, कैसे कैसे हमन ला महीना भर के खर्चा ला चलाना है, वो सब चीज़ ला देख के हमन ला काम करना चाहिए। और संगे संगे अपन आसपास में हमार पर्यावरण के सुरक्षा के भी और पानी के रक्षा के भी कोशिश हमन ला करना है। और एक चीज़ है कि ऊर्जा बचत के भी हमन ला ये घामा कर बेरा में बहुत जरूरी उपाय करना है कि भाई ज़्यादा ले ज़्यादा हमारे कर बचत कर सकिए, ऐसे करना है। अब हमन जैसे पंखा कूलर एसी सब जा चला थी, फ्रिज हर भी चलता है हमार, तो ऐसन में बेरा के बेरा में मल्ला बंद भी करना चाहिए। काबर की ज़्यादा देर तक चलें तो गर्माए जाही और ख़राबो हो सकता है, तो मैं हमारा और पैसा लग जाही। और बहुत ज़्यादा बिजली के भी भाई हमला बर्बादी नहीं करना चाहिए। और संगे संगे लाइट बत्तियाँ है तो ओकर भी उपयोग हमला जरूरत के अनुसार करना चाहिए। और एसी कूलर जो भी हमन चला थी तो बेरा के बेरा में ओकर साफ़ सफाई सब चीज़ जरूरी है। और कूलर में पाइप लगाए के पानी ला चल जाते हैं और देखती कि भाई पानी हर भर गैसा है तब बोले नगद गिरता है गदगदाए के, तो ऐसे नहीं करना है भाई। देखना है हमन ला कि जहाँ हमन पाइप ला लगाए ही और नल ला चालू करे ही तो पानी हर झन बर्बादी होए, काबर कि पिए वाला पानी हर हमार जग बहुत कम आए है। और ये पानी ला हमन ला बचाना है और आए वाला जो हमार भविष्य है तो ओला भी हमन ला सोचना है। देखिए थोड़ कौन बेरा बाची सा है और एक ठन हमार जो भोजपुरी गीता है तो लेगी सुनी।
1: रोज देखिला मन में आखिला रौवा

0: संगी हुए बढ़िहन हमरे भोजपुरी गीत सुनत रहन। और अब चलत चलते ही कहब कि देखी अपन जो सुरक्षा है वो अपने हाथ में रहल, और जैसे घामा कर बेरा कर हमन गोइट बात करे रहन, तो घामा में हमन ला खान पान के तो तीहा करना है, संगे संगे जैसे हमन कहूँ जात ही तो पानी भी हमन ला भरपूर मात्रा में रखना है, पानी ला पीना है, वो जगह जगह में जैसे डिब्बा बन जो पिए के चीज़ मिले तो वो चीज़ से हमन ला बचना चाहिए, काबर कि बहुत सारा चीज़ ऐसा रहते कि जेकर जो हमन बने के तिथि होला नहीं देखती वैसने पी देती तो में परेशानी की चीज़ हो जाए, हमार स्वास्थ्य में खराबी करे ला, और डिब्बा बंद खाए के चीज़ भी रहे, हर चीज़ में हमन ला जरूर देखना चाहिए कि ओकर बने के तिथि हर कब आ है और ओकर ख़त्म होए के तिथि हर कब आ है। तो थोड़ा थोड़ा जानकारी रख के हमन अपन जिंदगी ला अपन स्वस्थ रख सकत थी और बढ़िया जिए सकत थी। आज घर गोसाइन कार्यक्रम ले हैं चलत थी और फिर भेटबो, राम राम, जय जोहर।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर गोसाइन, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 1:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम ईमेल की गूंज में स्वागत करती हूँ मैं आपकी शक्ति। श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म अखियों के झरोखों से। आवाज है हेमलता की, गीतकार हैं रविंद्र जैन और संगीत भी है रविंद्र जैन का। इस गीत के लिए हमें ईमेल प्राप्त हुआ है। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर का। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद का। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा का। इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे और श्रोता हैं ग्राम बुड़गहल छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश।

कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदु भाई, पलेरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष के विश्वकर्मा, बेवरा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम वर्मा, पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद वर्मा, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमानाज अंसारी और बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी।

आइए अब सुनते हैं फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का गीत। कुमार सानू और लता मंगेशकर के युगल स्वर में, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है जतिन ललित का। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नागजुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नशीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर हक डावर, राजेंद्र कटारे सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा अडार नांदघाट से, माखन वर्मा चांदनी भूपेश और दीपेश वर्मा इंद्रा चौक दिल्ली से, अजीर वकार माहिरा अजीम और निशा अजीम तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, मधुसूदन प्रजापति सुखमनिया प्रजापति झिलमिल प्रजापति दक्ष प्रजापति कुंती मंगलराम रिद्धि और सिद्धि प्रजापति, धनोरा बस्तर से वी पूनम नायडू साजन के मास्टर शिवांशु रीशु दुर्गेश कुमार अक्षय कुमार अभिषेक नायडू, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार जंघेल रुक्मणी बघेल साहिल भारती, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम डॉक्टर सना और डॉक्टर आदिवा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतन माला सुरलकर, अनुज नगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े बबीता राजवाड़े धिया राजवाड़े काव्या और मंजू राजवाड़े, आकाश नगर बस्तर छत्तीसगढ़ से के पुष्पा वाती कृष्णा कुमार, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू योगेश साहू और राहुल साहू, देवरी भाटापारा से के आर साहू आकाश कमलेश गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर और कुशल शाह, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, राही सवरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, अर्जुन गवहानकर, टुकटुक लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, कर्मा चौक लोहारेडी जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से प्रेषक हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत साहू और निशांत साहू, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, जिक्रा डावर और आयशा खत्री, जिलाधार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल देवांगन, लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम और संध्या शिवम कोलाम, कुरुक्षेत्र से दीपक ढींगरा, अनुश्री ढींगरा, प्रमिला और देवश्री ढींगरा, सहारनपुर से सुरेश डोम और आशु डोम, कृष्णा पार्क

दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना बंका रोड, जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह गोबेराय, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले और वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर और आदेश कुमार काले, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, दतरेंगी से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा और बबीता बोट, डेर पाटन गुजरात से धीरज मरावी रबारी। आइए सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद पर कहूँ ना प्यार है फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

आइए अब सुनते हैं फिल्म दम लगा के हैसा का गीत मोनाली ठाकुर की आवाज में, बोल हैं वरुण ग्रोवर के संगीत अनु मलिक का। इस गीत को सुनना चाहा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरों निशा शबिस्ता, पलक लुबना और यश मंसूरी ने, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेलदास देवांगन, रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूर साय राजवाड़े, समीर सिंह मरावी, सोनू सिंह मरावी, जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मक्कार जहां, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, लसुड़िया तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल सोनू, सुरेश जराजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह, खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बिनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, शंकर लाल गंगराडे, साफिया अरहान होकर, मोहम्मद हसनैन पवार और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इन समस्त श्रोताओं की पसंद पर लीजिए सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिर गीत फिल्म यस बॉस से। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है जतिन और ललित ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा पाठक डोंगरगांव से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनुष्का और तन्मय गजभिये, नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत, पुष्पांजलि वर्मा, बलौदा छत्तीसगढ़ से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा और हर्ष आहूजा, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज फरदीन, सुहान अरजान और अवान अब्बासी छत्तीसगढ़, रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, योगेश जाटव और प्रभा रानी जयपुरिया, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार और विनीत वर्मा, सोनम वर्मा, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू और रितु सिंह, संबलपुर कांकेर से फागु राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा। आइए सुनते हैं इन समस्त श्रोताओं की पसंद पर ये खूबसूरत सी पेशकश।

0: अभी आप सुन रहे थे
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।

0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
0: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग BSF को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन MHA को ट्रांसफर करेगा, BSF फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका

0: फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहाँ विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था।

0: पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। SBI के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम गीत गंधा।

अदनान सामी और आशा भोसले के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे गीत। लिखा था साहिर ने और संगीत से सजाया था अदनान सामी ने। कार्यक्रम की अगली कड़ी में लीजिए पेश है आतिफ असलम की आवाज़ में ये गीत, बोल है सईद कादरी के और धुन मिथुन का।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आपने सुना अदनान सामी का गाया ये गीत बोल समीर के थे और धुन अदनान सामी का। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आइए सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। संगीत निर्देशन है जतिन और ललित का।

कार्यक्रम की अगली कड़ी में लीजिए सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत। लिखा है ललित सेन ने और संगीत से सजाया है महबूब ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत। लिखा है फैज अनवर ने और संगीत से सजाया है साजिद और वाजिद ने।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, मेंढारी, प्रेमनगर, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, पंडोपारा, सुखरी भंडार, कोरवापारा, बरपारा, कठबुड़ा, कंडराजा, बैरडाण, पतरापारा, दांतीढाब, घोरा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, फड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल की छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 123 है। ये आम गांव, पोटिया, क्रोंधा, प्रेमनगर, बेहरामार, औरानारा, कुड़े केला, सिंघी छाप, डोंगा भावना, हाटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हार पाली, पथरी पाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और तौरेंगा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझड़, डडईपानी, नगरार, खोलापारा, जिडार, छिंदौला, तौरेंगा, कावारामा, डूमरघाट, कोदोमाली, कोनारी, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धमतरी वन मंडल के दुगली में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये चार गांव जबर्रा, तुम्बहरा, डूंगरडूला, गज कन्हार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए

0: सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं अनुराधा पौड़वाल के स्वर में इस प्यारे से भजन से। संगीत निर्देशन है सरोज नंदा का, शब्द रचना है रमेश सोनी और डॉक्टर दीपक स्नेह के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या की अगली पेशकश अनुराधा पौंडवाल के स्वर में। संगीतकार हैं गुलशन कुमार, शब्द रचना है रवि चोपड़ा की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लीजिए फिर से कार्यक्रम का अगला भजन फिल्म मेला से। आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, जपिंदर और अरविंदर सिंह के। संगीत निर्देशन है अनु मलिक, राजेश रोशन और लेस्ले लेविस के। रचनाकार हैं देव कोहली और समीर।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भजन संध्या की अंतिम पेशकश अनुराधा पौंडवाल के स्वर में। संगीत निर्देशन है सरोज नंदा का।

इस प्यारे से भजन के साथ ही कार्यक्रम भजन संध्या यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अपे से युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम यूं वाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट सुमन ठाकुर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मुस्कुराते हुए, सपने सजाते हुए और ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए। दोस्तों, आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत की जिसने दुनिया को बदल दिया, जिसने दूरियों को नज़दीकियों में बदला, जिसने किताबों को मोबाइल में और सपनों को हकीकत में बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, आज है नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। दोस्तों, हर साल 11 मई को भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत सिर्फ संस्कृति और परंपरा में ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक में भी दुनिया के साथ कदम पे कदम मिलाकर चल रहा है। साल 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था जिसे पोखरण 2 कहा गया। उस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया कि हम विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर और मजबूत हैं, और तभी से आज के दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, अगर हम अपने आसपास देखें तो तकनीक हर जगह है। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल, ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ तक कि प्यार और दोस्ती भी अब इंटरनेट पर मिलने लगी है। लेकिन सोचिए, अगर तकनीक ना होती तो क्या हम इतनी आसानी से दुनिया से जुड़ पाते? दोस्तों, एक समय था जब चिट्ठियाँ हफ्तों में पहुँचती थीं और आज वीडियो कॉल पर हम सेकंडों में अपने अपनों से बात कर लेते हैं। पहले जानकारी ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था और आज पूरा ज्ञान हमारी उंगलियों पर है। तकनीक ने हमारी ज़िंदगी आसान बनाई है लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जहाँ तकनीक हमें आगे बढ़ाती है वहीं उसका गलत इस्तेमाल नुकसान भी पहुँचा सकता है। आज बच्चे घंटों मोबाइल में खोए रहते हैं। लोग सोशल मीडिया की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि असली रिश्तों को समय देना भूलते जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम तकनीक का इस्तेमाल समझदारी से करें, तकनीक हमारी ज़िंदगी पर राज ना करे बल्कि हम तकनीक का सही दिशा में उपयोग करें। और दोस्तों, आज का युवा तो तकनीक की असली ताकत है। आज के बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, रोबोटिक्स, स्पेस साइंस, डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों में भारत के युवा कमाल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, तकनीक ने कुछ मज़ेदार बदलाव भी किए हैं। पहले लोग खाना खाने से पहले भगवान को याद करते थे, अब लोग कहते हैं रुको रुको पहले फ़ोटो तो ले लेने दो। पहले लोग रास्ता पूछते थे, अब गूगल मैप्स पूछता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। और सच कहूँ तो आजकल अगर मोबाइल 10 मिनट ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी का वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया हो। लेकिन दोस्तों, तकनीक का असली मतलब सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट है। असली तकनीक वो है जो समाज को आगे बढ़ाए, जो किसानों की मदद करे, जो छात्रों को बेहतर शिक्षा दे, जो देश को आत्मनिर्भर बनाए। तो दोस्तों, इसी के साथ ही सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म टाइगर जिंदा है से, जिसमें आवाज़ है आतिफ असलम की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीतकार हैं विशाल शेखर।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के हमारे स्पेशल क्रम इंद्रधनुष की ओर.

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के क्रम इंद्रधनुष कड़ी क्रमांक 71 में। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार होंगे आज के हमारे प्रश्नों को लिखने के लिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्नों का सिलसिला। आज की कड़ी का हमारा पहला प्रश्न है, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित हैं? प्रश्न एक बार फिर से, अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? प्रश्न एक बार फिर से, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? हमारा चौथा प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? दोस्तों हमारा चौथा पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न के रूप में ये गीत सुनिए।

दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना है इसमें आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। दोस्तों, अब हम आपको पिछली कड़ी के प्रश्नों के सही जवाब और विजेताओं के नाम बता देते हैं। पिछली कड़ी का हमारा पहला प्रश्न था, गुजरात किस राज्य के बाद UCC पारित करने वाला दूसरा राज्य बना, जिसका सही उत्तर है उत्तराखंड। हमारा दूसरा प्रश्न था, शेखा झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हमारा तीसरा प्रश्न था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, जिसका सही उत्तर है 1192 ईस्वी में। हमारा चौथा प्रश्न था, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, जिसका सही उत्तर है टिहरी बांध। दोस्तों, पांचवें प्रश्न के रूप में हमने आपको एक गीत के कुछ अंश सुनवाए थे, जिसमें आपको बताना था कि यह गीत किस फिल्म से लिया गया था।

जिसका सही उत्तर है बधाई हो फिल्म से। दोस्तों अब हम आपको विजेताओं के नाम बता देते हैं। पांचों प्रश्नों के सही जवाब देने वाले हमारे साथी हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, आदेश कुमार काले, दत्तरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा, यश, प्रयाण, शिवम वर्मा, राजेंद्र, मनहरण वर्मा। बोड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विभूति साहू। भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज आयुषी गुप्ता। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देवता मोरिया, तुषार देवता मोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका, प्रभा देवी तामोरिया, बाबू अलकबीर। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजाना नेले, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत। गाँव परसाटोला जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, तुसारणी मसिया, खुमेंद्र मसिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। ग्राम धरदई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनित कुमार पटवा, कुमारी कृष्टि पटवा। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, सुमांशु पांडे। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन। अड़ार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश, दीपेश वर्मा। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू।

सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिका, बलवीर सिंह। लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम, संध्या कोलाम, शिवम कोलाम। बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, आशुतोष अंगारे। कर्मा चौक लोहारीडीह जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से प्रेषित अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत साहू, निशांत साहू। खमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। चिनबरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के क्रम इंद्रधनुष में हमने आपसे जो भी प्रश्न पूछा, इसका जवाब आप हमें हमारी ईमेल आईडी और पत्रों के माध्यम से भी दे सकते हैं। पत्र भेजने का हमारा पता है क्रम इंद्रधनुष यमवाड़ी अनुभाग द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड है 497001 और हमारी ईमेल आईडी है indradhanushair@gmail.com। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा आज का क्रम इंद्रधनुष बस यहीं तक।

दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म तू झूठी मैं मक्कार से, जिसमें आवाज़ है अरिजीत सिंह की, गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों अब सुनते हैं ड्रीम गर्ल फिल्म से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज़ है मीत ब्रोस की, गीतकार हैं सब्बीर अहमद और संगीतकार हैं मीत ब्रोस।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज का ये खूबसूरत सफ़र आपको पसंद आया होगा। इसी प्यार और अपनापन के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त सुमन ठाकुर। फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और नए एहसासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

युवा श्रोता अभी सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र

और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि यह आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ।

0: निफ्टी 360 अंक कम होकर 23,816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी हिंदी समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। कर्म विषय पर वाचन एवं संकलन है राजीव दुबे का।
2: कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। हमारे जीवन का आधार कर्म है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, जैसा कर्म वैसा फल। कर्म मनुष्य की प्रगति और पतन दोनों का ही कारण बन सकता है। भारतीय संस्कृति और धर्म में कर्म का विशेष महत्व है। इसे जीवन का मुख्य सिद्धांत माना गया है। मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। अच्छा कर्म उसे सम्मान, सफलता और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे दुख और अपमान की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। जो कार्य समाज और मनुष्य के कल्याण के लिए किए जाते हैं, वे सत्कर्म कहलाते हैं। जैसे कि गरीबों की सहायता, शिक्षा का प्रसार और सत्य का पालन। जो कार्य दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, वे दुष्कर्म कहे जाते हैं। जैसे कि चोरी, हिंसा और अन्याय। जब व्यक्ति आलस्य या भय के कारण अपने कर्तव्यों को नहीं निभाता, तो उसे अकर्म कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि भाग्य मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन वास्तव में भाग्य भी कर्मों का ही परिणाम है। कर्म के बिना भाग्य की कल्पना करना व्यर्थ है। मेहनत और परिश्रम से व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं निर्मित कर सकता है। कर्म जीवन का आधार है। मनुष्य को सदैव सत्कर्मों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। अच्छे कर्म न केवल वर्तमान जीवन को सुखमय बनाते हैं, बल्कि भविष्य में भी शुभ फल प्रदान करते हैं। अतः हमें सदैव कर्मशील और निष्ठावान रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर्म का महत्व और भी गहरा है। ये जीवन मरण के चक्र को प्रभावित करता है। धर्म और दर्शन ये सिखाते हैं कि अच्छे कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म बंधन और दुख का कारण बनते हैं। हमें अपने सभी कार्य समय पर और समर्पण के साथ करने चाहिए। कर्म का एक उद्देश्य मानवता की सेवा भी है। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कर्म सबसे बड़ा धर्म है। कर्म करते समय हमें संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए, ताकि हमारा जीवन न केवल भौतिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो। अंततः कर्म वो बीज है जो हमारी मेहनत, निष्ठा और सकारात्मक दृष्टिकोण से फलता फूलता है। अगर हम अपने कर्मों को सच्चाई और नैतिकता के साथ करते हैं, तो हमारा जीवन और समाज दोनों खुशहाल हो सकते हैं। कर्म को समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। भगवद गीता में कर्म का महत्व अत्यंत गहराई से बताया गया है। ये ग्रंथ न केवल आध्यात्मिकता बल्कि जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन भी करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हुए कर्म के महत्व, उसके प्रकार और उससे जुड़े फल के सिद्धांत समझाया। भगवद गीता के अनुसार कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करना। कर्म को सच्चाई, निष्ठा और निष्काम भावना के साथ करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जो कर्म फल की इच्छा से किए जाते हैं, वे सकाम कर्म कहे जाते हैं। ये स्वार्थपूर्ण और बंधनकारी हो सकते हैं। निष्काम कर्म वे कर्म कहे जाते हैं जो कर्म बिना किसी फल की अपेक्षा के किए जाते हैं। ये कर्म सच्चे और आत्मा को शुद्ध करने वाले होते हैं। जब व्यक्ति आलस्य, भय या मोह के कारण कर्म नहीं करता, उसे अकर्म कहा गया है। ये त्याज्य है। विकर्म वे कर्म हैं जो कार्य, धर्म, नीति और सत्य के विपरीत किए जाते हैं। ये विनाशकारी और दुखदायी होते हैं। कर्म योग कर्म का मार्ग, भक्ति योग भक्ति का मार्ग और ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग, तीनों एक ही लक्ष्य तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जब कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है, तो वह भक्ति का रूप ले लेता है और व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करता है। भगवद गीता कर्म को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानती है। ये सिखाती है कि कर्म को त्यागना नहीं, बल्कि उसे समर्पण, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। गीता का यह सिद्धांत हर व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वो अपने जीवन को कर्मशील बनाकर न केवल व्यक्तिगत विकास करे, बल्कि

0: समाज और मानवता के कल्याण में भी योगदान दे। सच्चा कर्म वही है जो आत्मा की शुद्धि, समाज की सेवा और ईश्वर की प्राप्ति में सहायक हो। जैसा कर्म वैसा फल की अवधारणा हमें ये समझाती है कि अच्छे कर्म न केवल व्यक्तिगत सुख बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान देते हैं, वहीं बुरे कर्म दुख और अशांति का कारण बनते हैं। अतः जीवन में सही।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु, मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही क्षण में प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव के चलत प्रधानमंत्री हा सोमनाथ मंदिर मा करिन विशेष महापूजा, किहिन ए मंदिर हा अटूट आस्था और दिव्यता के हरय प्रतीक। प्रदेश के कतकोन जिला मा आज होई सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन। रायपुर मा होए कार्यक्रम मा शामिल होइन मुख्यमंत्री साय, 75 बछर पहली होए पुनर्निर्माण ला करिन सुरता। औ प्रदेश मा होवैया नगरी निकाय औ त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम औ उपचुनई बर नामांकन पत्र भरे के प्रक्रिया आज ले होई शुरू। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि सोमनाथ मंदिर हा अटूट आस्था, दिव्यता और देश के शाश्वत आत्मा के प्रतीक हरय। ओमन हकीन कि सोमनाथ अमृत परब हा सिर्फ अतीत के उत्सव नो हरय बल्कि एहा अवैया हजार बछर तक देश के प्रेरणा बनही। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव ला संबोधित करत हुए प्रधानमंत्री हा कहिन है कि सोमनाथ हा लोगन मनला ए सुरता दिलाते कि कोनो भी राष्ट्र हा तभे लंबा बेरा तक मजबूती ले खड़े रही सकत है जब तक ओहा अपन जड़ ले जुड़े रहे। प्रधानमंत्री हा कहिन कि 11 मई 1998 के 3 परमाणु परीक्षण करे गे रहिस, जेकर माध्यम ले देश के वैज्ञानिक मन हा भारत के क्षमता के प्रदर्शन ला पूरा दुनिया के आगू करे रहिन। एकर ले पहले प्रधानमंत्री हा सोमनाथ मंदिर मा विशेष महापूजा करिन। ओमन हा मंदिर के शिखर मा कुंभाभिषेक घलो करिन। मंदिर के इतिहास मा पहली घाव शिखर मा 11 ठीक तीरथ वाले जगह ले लाए गए पवित्र जल ले अभिषेक करे गए है। श्री मोदी हा ध्वजारोहण कार्यक्रम मा घलो शामिल होइन और इही बीच वायुसेना हा एयर शो करिन जेमा सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम हा सोमनाथ के ऊपर सुघर करतब दिखाइन। हेलीकॉप्टर ले फूल के बरसा करेगीस, जेकर बाद श्री मोदी हा विशेष प्रदर्शन ला घलो देखिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मा शामिल हुईन। ए बेरा मा उमन हा जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मन के संग गुजरात के सोमनाथ मंदिर ले वर्चुअली जुड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ला घलो सुनिन। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहिन कि 75 बछर पहली आजे के दिन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण हो रहीस और इही ऐतिहासिक अवसर ला देश भर मा स्वाभिमान परब के रूप मा मनाए जाते। ओमना कहिन के सोमनाथ मंदिर मा घेरी बेरी हमला होइस फिर मंदिर के आस्था और परंपरा ला खत्म नहीं करे जा सकेस। श्री साय कहिन कि पहली घाव आक्रमण के बेरा मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु मन हा मंदिर ला नहीं छोड़िन और अपन प्राण दे देन। उखर त्याग हा आज घलो इतिहास मा स्वर्ण अक्षर मा अंकित हरय। मुख्यमंत्री हा बताइन के प्रदेश मा देवी माता के मंदिर ला शक्तिपीठ योजना के माध्यम ले विकसित करे जाते। ऐसन है कबीरधाम जिला के भोरमदेव महादेव मंदिर ला स्वदेश दर्शन योजना के चलत 148 करोड़ रुपया के स्वीकृति मिले है। एबेरामा वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम हा मौजूद रहे। प्रदेश भर के कतकोन जिला मा घलो आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन हुईस। उन्हें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो भोरमदेव मंदिर परिसर में हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुईन। ए बेरा मा उमन हा श्रद्धालु मनला संबोधित करत हुए कहिन है कि ये कार्यक्रम हा भारत के पुरातन संस्कृति और सभ्यता ला सुरता करे के मौका हरय। ऐसने जांजगीर चांपा जिला के धार्मिक नगरी खरौद मा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था के 1000 वर्ष विषय मा श्री लक्ष्मणेश्वर मंदिर मा विशेष कार्यक्रम होइस। ए मंदिर परिसर मा गुजरात के सोमनाथ और वाराणसी मा हुए कार्यक्रम के सीधा प्रसारण दिखाया गिस। कार्यक्रम मा सांसद कमलेश जांगड़े, कलेक्टर जन्मेजय महुबे समेत बड़का संख्या मा श्रद्धालु मनाए रहिन। प्रदेश के कतकोन जिला मा घलो आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन करेगी। केंद्र सरकार हा विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आज

0: जीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन पर अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम हा 1 जुलाई ले देश भर में लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा पश्चिम एशिया संकट के चलत लोगन मन ले 1 तक सोना झन खरीदे, ईंधन की खपत कम करे और विदेशी मुद्रा ला बचाए के आग्रह करीन है। हैदराबाद में काली एक ठिन कार्यक्रम में श्री मोदी हा वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था ला एक घाव फेर शुरू करे के अपील करीन है। प्रधानमंत्री की अपील हा ऐसन बेरा में आई से जब पश्चिम एशिया में बाढ़त तनाव और होरमुज जल डमरू मध्य के तीर तखार के परेशानी के सेती वैश्विक कच्चा तेल के कीमत हा सरलग $70 प्रति बैरल ले बाढ़ के लगभग $126 प्रति बैरल हो गए है। इही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा कहिन है कि पश्चिम एशिया में जौन युद्ध के स्थिति बने हुए है ओखर असर दुनिया भर में पड़त है और ओखर ले हमर देश हा घलो अछूता नहीं रही। एकरे सेती प्रधानमंत्री हा देश के लोगन मन ला बड़ जरूरी और सही सलाह दीन है। प्रदेश महोवैया नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम और उपचुनई पर नामांकन पत्र भले के प्रक्रिया हा आज ले शुरू हो गए है जौन 18 मई तक चलही। नामांकन पत्र के जांच 19 मई के करी जाही और उम्मीदवार मन हा 21 मई तक अपन नावला वापिस ले सके। मतदान हा एक चरण में 1 जून के हो ही जबकि परिणाम हा 4 जून के आना है। जानबा के अनुसार नगरी निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 समेत कुल 82 पद पर चुनाई होना है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 समेत कुल 1228 रिक्त पद पर चुनाई कराए जाए। नारायणपुर पुलिस हा आज सामुदायिक पुलिसिंग ला मजबूत करे के उद्देश्य ले माण मैत्री अभियान की शुरुआत करीन। नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान में हुए कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया हा बताइन के अभियान के उद्देश्य नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्र के जवान लयिका और यहां के रहैया मनला शिक्षा खेल स्वास्थ्य रोजगार और सामाजिक गतिविधि ले जोड़ना है। कार्यक्रम में हमर फिट नारायणपुर के चलत सामूहिक जुम्बा सत्र घलो हुई। एबेरा में डायल 112 वाहन सेवा माण मैत्री रथ और बाइक पेट्रोलिंग टीम लघलो हरा झंडी दिखा के भेजे गई से। बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल मन हा माओवादी मन कोती ले छिपा के रखे गए सामान ला जब्त कर ले है। पुलिस ला सूचना मिले रही के डोडी तुमनार गांव के पहाड़ी क्षेत्र में माओवादी मन हा सामान ला छिपा के रखे है। एकरे आधार में पुलिस सहायता केंद्र पीडिया और गंगालूर थाना के संयुक्त टीम हा सर्च अभियान चलाई। एबेरा मां भुइया के भीतरी छिपाए गए एक ठिक बंकर घलो मिले है। सुरक्षा जांच के बाद वहां ले बड़का मात्रा में विस्फोटक सामग्री हथियार बैटरी सोलर प्लेट जनरेटर वेल्डिंग मशीन और BGL सेल ला बरामद करे गए है। धमतरी जिला में 1 महीना तक चलैया समर कैंप के शुरुआत 9 मई ले हो गए है। जिला प्रशासन हा और खेल विभाग के समन्वय ले चलत एक कार्यक्रम और ये समर कैंप हा 8 दिन तक चलही जेमा खेल तकनीक के संगे संग व्यक्तित्व विकास में विशेष जोर दे जात है। रायपुर के खमारडी थाना क्षेत्र के लक्ष्य ज्वेलर्स में शनिचर और इतवार के रतिहा करीब 1 करोड़ रुपया के सोन चांदी के गहना के चोरी हो गए है। इतवार के दुकान बंद होए के सेती एक जानकारी कारोबारी ला तुरते नहीं हो पाईस। फिर सोमवार के बिहनिया जब वह दुकान खोलिस तब ए चोरी के घटना के पता ओला लगिस। पुलिस आ दुकान और तीर तखार में लगे CCTV कैमरा ले मामला के जांच करत है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक ठिन निम्न दाब के क्षेत्र हा दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी ले लेके श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर बने हुए हैं। एकर संग ऊपरी हवा के चक्री चक्रवाती घेरा विस्तारित है। एकर ले अवैया 48 घंटा में अउ प्रबल होए के संभावना है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव के चलत प्रधानमंत्री ह सोमनाथ मंदिर

0: करीन विशेष महापूजा किहीन ए मंदिर हा अटूट आस्था औ दिव्यता के हरय प्रतीक। प्रदेश के कतकोन जिला मा आज होइस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन। रायपुर मा होए कार्यक्रम मा शामिल होइन मुख्यमंत्री साय, 75 बछर पहली होए पुनर्निर्माण लकरिन सुरता औ प्रदेश मा होवैया नगरीय निकाय औ त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम औ उपचुनई बर नामांकन पत्र भरे के प्रक्रिया आज ले होइस शुरू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम गोधूली। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं प्रभुनाथ वैष्णव और साथियों के स्वर में ए निर्गुण भजन।

कार्यक्रम गोधूली में लीजिए प्रस्तुत है शव का भजन, स्वर है निर्मल दास और साथी के।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शौका भजन के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली यही समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए पे से फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं फिल्म वारिस के इस प्यारे से गीत से, जिसमें वर्मा मलिक की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है जगदीश खन्ना और उत्तम सिंह ने, आवाज़ दी है लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने।

लीजिए फिर से कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म खतरों के खिलाड़ी से। आवाज है मोहम्मद अजीज की, संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

श्रोताओं, लीजिए फिर से कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से आवाज है मोहम्मद रफी की, धुन दिया है शंकर जयकिशन ने और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम माधुरी यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: खो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: दीदी नौकरी लग गई।
7: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
6: हाँ दी, नया मोबाइल।
7: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
6: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
7: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
6: पर दीप,
7: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
6: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
7: अच्छा।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: तीनों कॉलेज में
9: डोंट वरी,
8: फीस तो देखो।
10: क्या हाल है, क्या हुआ?
9: फीस की टेंशन।
10: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
11: आरबीआई कहता है
12: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
13: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
14: अरे भाई साहब आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
15: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
14: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
15: आकाशवाणी से।
16: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
14: भाई साहब आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
15: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
14: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
16: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
17: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। रायपुर के महादेव घाट में मुख्यमंत्री ने की पूजा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। और विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा।
18: मैं यहां देख रहा हूं।

0: विनाश में सृजन के संकल्प को जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था और इसी ऐतिहासिक अवसर को देशभर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर कई बाहरी आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए लेकिन मंदिर की आस्था और परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सका। श्री साय ने कहा कि पहली बार आक्रमण के दौरान मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर नहीं छोड़ा तथा अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
2: आज पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरोद्धार हुआ था और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की है।
1: इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेता मौजूद थे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी भोरमदेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये आयोजन भारत की पुरातन संस्कृति और सभ्यता के गौरवपूर्ण स्मरण का अवसर है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी खरौद में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था के 1000 वर्ष विषय पर श्री लक्ष्मणेश्वर मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में गुजरात के सोमनाथ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े, कलेक्टर जन्मेजय महोबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। उधर बालोद के कपिलेश्वर शिव मंदिर में राष्ट्रव्यापी स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही जिले के अन्य प्राचीन शिवालयों पलारी तथा बालोद विकासखंड के जगन्नाथपुर स्थित शिव मंदिर में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किए जाने की खबर मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को बहुत महत्वपूर्ण और उचित सलाह दी है।
2: पश्चिम एशिया में जो वार की स्थिति बनी हुई है इसका असर संपूर्ण विश्व को हो रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सलाह पूरे देशवासियों को दिया है। हम सब लोग विदेश हमारे देश का पैसा कम से कम जाए, इसके लिए डीजल पेट्रोल उसका भी खपत हम लोग सोच समझ कर करें और सोना वगैरह खरीदेंगे तो यहाँ का पैसा विदेश जाएगा तो हम लोग को सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार

0: 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा, जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छुपाकर रखा गया डंप बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम डोडी तुमनार के पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों ने सामग्री छिपा रखी है। इसके आधार पर पुलिस सहायता केंद्र पीडिया और गंगालूर थाने की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान जमीन के अंदर छिपाया गया एक बंकर मिला। सुरक्षा जांच के बाद वहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार, बैटरी, सोलर प्लेट, जनरेटर, वेल्डिंग मशीन और बीजीएल सेल बरामद किए गए। नारायणपुर पुलिस ने आज सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से माड़ मैत्री अभियान की शुरुआत की। नारायणपुर के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों के युवाओं और ग्रामीणों को शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना है। कार्यक्रम में हमर फिट नारायणपुर के तहत सामूहिक जुम्बा सत्र भी आयोजित किया गया। इस दौरान डायल 112 वाहन सेवा, माड़ मैत्री रथ और बाइक पेट्रोलिंग टीम को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर के खमारडीह थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1 करोड़ के सोने चांदी के जेवरों की चोरी हो गई। रविवार को दुकान बंद होने के कारण इसकी जानकारी कारोबारी को नहीं हुई। सोमवार सुबह जब उसने दुकान खोली तब चोरी का पता चला। पुलिस दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर तक बना हुआ है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा विस्तारित है। इसके अगले 48 घंटों में और प्रबल होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के मौसम में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। धमतरी जिले में 30 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत 9 मई से हो गई है। जिला प्रशासन और खेल विभाग के समन्वय से आयोजित ये समर कैंप 8 जून तक चलेगा, जिसमें खेल तकनीक के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और सक्ती जिले के चंद्रपुर के बस स्टैंड के पास आज एक वाहन में हवा भरते वक्त एयर स्टोरेज टैंक फट गया। इस हादसे में वाहन मैकेनिक की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। रायपुर के महादेव घाट में मुख्यमंत्री ने की पूजा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। और विकसित भारत रामजी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना,
2: पहले बचत,
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
7: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
8: दिमाग चार्ज कर अपना।
9: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
8: देखा
7: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
9: अब क्या करोगे?
7: फ्री वाईफाई है ना,
4: सुन।

0: बुद्धो सुधर जा।
1: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
1: आरबीआई कहता है
3: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
4: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा
6: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
5: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
5: चलो
4: कहाँ
5: एडमिशन कराने,
2: खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है
9: ब्रो? ये फटा है।
10: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
11: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
9: वाओ नया नोट मिलेगा?
10: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
11: आरबीआई कहता है
8: स्मार्ट बनो कूल रहो।

0: ब्रो ये फटा है।
1: सुन कते फटे हैं पुराने नोट को?
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
0: वाओ नया नोट मिलेगा?
1: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
3: कूल रहो।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार जिसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के ठीक 7 बजे हैं। श्रोताओं ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको आज के शेष आकर्षण और कल के प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षणों से अवगत कराते हैं।

अब से कुछ देर में आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल आज सजेगा तय समय शाम 7:20 पर। साथ ही सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि के ठीक 8:00। कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर। और श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि 9:30 पर। और कार्यक्रम मनभावन आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर। आज रात्रि 10:00 आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी, जिसमें आज आप सुनेंगे शिव कुमार शर्मा के संतूर वादन में राग किरवानी, तबला होगा शफात अहमद खां का। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के सांझकालीन सभा के कुछ शेष आकर्षण। आइए आपको कल के प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षणों से अवगत कराते हैं।

कल प्रातः 6:05 पर आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना और कार्यक्रम विचार बिंदु सुन सकेंगे कल प्रातः 6:30 पर। श्री रामचरितमानस के गायन का प्रसारण समय होगा प्रातः 6:35 पर और कार्यक्रम खेती की बात आप सुन सकेंगे प्रातः 6:45 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में कल आप सुनेंगे कुछ सरगुजिया लोकगीत, सादरी और छत्तीसगढ़ी लोकगीत प्रातः के ठीक 7:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे प्रातः 7:15 पर। साथ ही जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे कल प्रातः 7:30 पर। मोर भुइया छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा कल सुबह 8:30 पर और प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आप सुन सकेंगे कल सुबह के ठीक 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। साथ ही बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन का आनंद आप ले सकेंगे कल सुबह के ठीक 9:00 और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने आप सुन सकेंगे सुबह के ठीक 10:30 पर। श्रोताओं, ये थे हमारे कल के प्रातःकालीन सभा के कुछ मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अभी से सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं चंदनदास के स्वर में ये गजल। शब्द रचना है गानी अली की,

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर

0: अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की, अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
0: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
0: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
0: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: लीजिए फिर से कार्यक्रम का अगला गजल चंदन दास जयदेव कुमार के स्वर और संगीत निर्देशन में। सब दृश्य है नसीम रिफात की।

इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए पे से ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनैया हमर जम्मू किसान भाई उनकर घर कर लोग उनकर संगता गोटा गांव घर कर बहुत बहुत स्वागत और धर्मो भैया कर राम राम। हाँ देखी अगर धर्मो भैया आइन है तो रौर मन भर गीत संगीत तो होबेच कर ही संगे संग मंडी भाव मौसम कर बात और आज कर सवाल पूछल जाही और सवाल जिनकर सही जवाब आइस है जो बीती ना सुमार रोज वो सवाल पूछे रहन उनकर नावला भी मैं अपन कार्यक्रम में ले हूँ और विशेषज्ञ से मुलाकात करबो डॉक्टर पीएस राठिया जी जो कि आलू अनुसंधान केंद्र मैनपाट में पदस्थ हैं। सुगर अकन जानकारी देते हैं कि श्री अनकर खेती कैसे कैसे करके लाभ ले सकते हैं। हमन तो जानते भाई कि श्री अनकर का महत्व है अभी दो तीन बच्चर ले और ज़्यादा हमन जान गए ही तो एक बारे में जानकारी ले। देखिए शुरुआत में कोनो ना कोनो विषय पे हमन चर्चा कर थी आज चर्चा हुई कि प्रधान

प्रधानमंत्री जन धन योजना। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा बहुते कम लोग बाचिन हुई जिनकर जो है खाता नहीं खुली सोई बैंक में खाता, और अगर कोनो नहीं खुलवा पाई तो जरूर जरूर खुलवा लेना चाहिए। देखिए कि ये तो ऐसा योजना हवे ना, कहब कि एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम हवे कि जेकर उद्देश्य जो है ना हर घर में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए, और जेकर से कहब ना वित्तीय साक्षरता और ऋण जिला लोन कथी बीमा और पेंशन तक पहुंच के साथ बैंकिंग सुविधा ला भी पहुंचाना हवे। वित्तीय साक्षरता में वृद्धि होल, एकर में कहा है कि जनता कर बीच में आम लोगों कर बीच में बचत बीमा और ऋण कर महत्व के बारे में जागरूकता होल, देखब बीमा तक पहुंच होल। बीमा तक पहुंच कह कर मतलब कि का है कि ये कर द्वारा जो है देखब ना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी हवे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी हवे, तो ऐसा जो है सामाजिक सुरक्षा योजना तक पहुंच भी प्रदान होल, और कम प्रीमियम में व्यक्ति मनकर अधिकतम जो है बीमा कवर होल। देखिए सबसे बड़ा विशेषता तो ये हवे कि ये में पैसा ढेबुआ कहीं नहीं लगे, मतलब शुरुआत में कहब कि जीरो जिला कथी ना हम शून्य बैलेंस पे भी जो है ना जनधन खाता खुलवा सकता है। और ओकर बात कहब कि ओवरड्राफ्ट कर भी सुविधा मिलेल, खाता कर जो है संतोषजनक जो संचालन करते ना तो 6 महीना कर बाद में 10,000 तक ओवरड्राफ्ट जिला हम कह सकते कर्जा कर भी सुविधा हवे, और निःशुल्क कहब कि बिना पैसा कर जो है 2,00,000 रुपया तक कर दुर्घटना बीमा कवर भी होल। ब्याज देखब जमा जितना भी रकम रहल राशि रहल ओकर में बैंक द्वारा जो है ब्याज भी मिलेल, और सरकारी योजना जो भी हवे ओकर सीधा लाभ मिलेल, सब्सिडी और सरकारी सहायता जो है सीधा खाता में आयल। एक बात और हवे देखब कि पहले जब जनधन खाता में नहीं खुले रहिन ओकर पहले बैंक कर धरी धर जाए में भी जो है ना आम जो मन से है बहुत तो मन डराएं कि बैंक जाप तो कैसे कैसे करब, और कहब ना कि गावन गनिया जब खाता है खुलिस ना तो एकदम कहब कि कम लोग जो बहुत कम पढ़े लिखल है ओमन भी जो है ना बैंकर जो है अब संचालन ला जान गिन कि कैसे कैसे खाता खुलल, कैसे कैसे पैसा हेरना हवे, कैसे कैसे आयल, और जो भी हमार जो श्रमिक हमें या गांव घर में काम करता है पंचायत कर माध्यम से भी काम करते तो सीधे खाता में पैसा आयल। बीच में कहे कि बिचौलिया या दलाल मनकर कोई में भूमिका नहीं हवे, सीधे सीधे अपन खाता कर संचालन जो है खुद करता है। तो जन धन योजना कर माध्यम से हमर जो है पूरा गोटा देश में जो खाता मन खुली नहीं कर बहुत ही बहुत ज़्यादा जो है लाभ मिली से और मिलते छवे। देखिए कि जिनकर अगर खाता नहीं खुली सोही तो मैं बताऊं कि काकर रोरे मल्ला लगी दस्तावेज जिला मन कथी डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहला चीज़ है आधार कार्ड भाई चिन्हार होना चाहिए ना, ओकर अलावा का पैन कार्ड या वोटर आईडी जे में वोट डालते हैं वो कार्ड ला वोटर आईडी, फिर आवेदन फार्म कोई भी बैंक शाखा में जाब रोरे मन फार्म भरब, वैसे तो का है कि बैंक मित्र कर माध्यम से भी जो है भर सकता है फार्म। एकर वेबसाइट भी हवे ई डॉक्यूमेंट सेक्शन से फार्म हिंदी या अंग्रेजी में रोरमन भर सकत ही, और एकर में का है बैंक का नाव शाखा गांव का नाव शहर का नाव वार्ड सब ला भरना रहल, एकर अलावा अपन व्यक्तिगत जानकारी देना रहल, अपन नाव ला लिखना पड़ी पिताजी का नाव ला लिखना है या फिर महिला है तो पिता या पति का नाव, अपन जन्मतिथि पता मोबाइल नंबर आधार कार्ड सब ला भरना हवे, ओकर अलावा अपन बताना पड़ी कि का चीज़ कर था व्यवसाय कर थी कि का कर थी, मतलब आय कर साधन का है कमाई कर साधन का हवे, अपन पेशा ला बताना पड़ी व्यवसाय ला, और वार्षिक आय जो लगभग बताना रहे, वैसे तो कहे नौकरी चाकरीदार जो रथे ओमन कर तो कहब कि वो कर पे स्लिप में ही रहल, बाकी का है कि जो लोग ऐसे प्राइवेट काम करत रहते हैं तो ओमन कर आय हर घटत बढ़त रहल, तो ओमन वार्षिक आय जो है आय प्रमाण पत्र बनेल ओकर माध्यम से बता सकते हैं। नॉमिनी जैसे नॉमिनी का नाम की और आयु ओकर उम्र संबंध, ओकर अलावा किसान क्रेडिट कार्ड है एटीएम कार्ड है तो हाँ उल्टा टिक करना रहे हाँ है नहीं है, और फिर ओकर बाद हस्ताक्षर दस्तखत या फिर अंगूठा फार्म के

आखिरी में ओला देना पड़ेल। तो देखिए कोई बहुत बात नहीं हवे, बड़ा बात नहीं हवे, पंचायत कर माध्यम से भी रवरेमन जो है अपन जो है बात ला रख सकत ही। और बिल्कुल खाता खुलवाना चाहिए, बैंक बहुत बढ़िया हवे, काहे कि हम कोई भी काम करत ही, सरकारी काम हवे ये हवे पंचायत कर भी काम हवे ना, तो सीधे सीधे जो है खाता में पैसा हर आ जाए। फिर कहब कि बैंक कौन सा हवे, तो हमारे देखा भारतीय स्टेट बैंक हवे, बैंक ऑफ बड़ौदा हवे, पंजाब नेशनल बैंक हवे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हवे, बैंक ऑफ इंडिया हवे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हवे, ये सब में जो है खाता खुलवा सकता है। और अलावा निजी बैंक भी हवे, ICICI बैंक थी, एक्सिस बैंक हवे, HDFC बैंक हवे, कोटक महिंद्रा हवे, और इंडसइंड बैंक हवे, एमन में भी खाता खुलवा सकता है। सबसे पहला देखिए आधार कार्ड रवरेमन जग जरूर से जरूर होना चाहिए। तो खाता खुलवाई और रवरेमन जो है निश्चित रूप से एकर लाभ ली। और कोनो कोनो तो कहे कि जैसे उम्र नहीं हो रहे ना वो घनी, तो अब जिनका जैसे अभी नवा उम्र हो गई से, तो उमन भी अपन खाता खुलवाएं, एकर लाभ लें। और देखिए गोट बात तो पूरा कार्यक्रम में होते ज रही, अभी मैं बता रहे हैं कि हमारा विशेषज्ञ महोदय से भी मुलाकात करना है और आने आने विषय पे गोट बात भी हुई। बाकी मैं कहता हूँ कि सुगर कन गीत हो जाए, गाता हैं गुलाब सिंह पैकरा उनकर संगता हरे।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हाँ भाई, देखिए संदेश ला सुनें और एक कर पहले बड़ा सुगर रकन गीत सुनें। गात रहे गुलाब सिंह पैकराव, उनकर संगत हरे। देखिए कि पर्यावरण कर जो दशा है, दिनों दिन जो है ना बिगड़ी है, ओला अब हमन धीरे धीरे सुधारे में लगे ही, संरक्षित करे में लगे ही। बाकी का है कि इतना दशा बिगड़ चुकी से कि अभी समय लगी और ये समय जो है जन भागीदारी से ही संभव है। सब मिलके प्रयास करें तब जो है पर्यावरण संरक्षण जो है बहुत हद तक सुधार हो सकी। काहे कि पर्यावरण की रक्षा में आम जनता जला हमन कथी भाई, आम पब्लिक जला कथी राउर मन, ओकर सक्रिय सहभागिता जरूरी हवी। और इले काहे ना कि जन आंदोलन नियर बनाना है कि कहीं भी चीज़ ला जैसे आदमी पाए बर कैसे प्रयास करेल, तो वैसे ही का है कि पहले कर समय जो रहिस ना प्रकृति में एक संतुलन रहिस, जो देख 50-60 बच्चर एकर पर्यावरण के प्रति कोई ऐसा बात नहीं रहिस। काबर की नदी नाला जो कह पशु पक्षी ढोड़का टिकरा कह पहाड़ सब में एक संतुलन रहिस। अभी तो देखिए कि पहले देखब ना कि जैसे चराई मन भी अच्छे तो गौरैया मन देखे में नहीं आता है, तितली मन नहीं देखे में आता है, आपे अब तिवरिया मन उगे जब बरखा घनी। तो संतुलन ऐसे हो इसके जनावर मन कभी कभी रौरे मन सुनती ना, हमारे यहाँ तो कार्यक्रम भी आयल हमार हाथी हमार गोठ, हाथी बदक के शहर कति आ जाता है। एकर कारण का हुए का है कि मन से अपन जो है कहब कि अपन विकास बर का है कि ओमन कर जगह ला छेके लगे, जनावर मन कर जगह ला छेके लगिन। और ओमन का है कि वो तो उतना बुद्धि तो है नहीं ओमन ला, वो तो बिचरे वाला जीव हवे कि सब ओमन बिचरते हैं जहाँ मन करे वहाँ। तो ओमन कर बिचरे कर जगह में जब देखते हैं कि अरे रास्ता में तो कहाँ खेतवाही आ गईस कहाँ घर आ गईस, तो ओमन फिर अपन भाई रास्ता ला थोड़ी बदली। ओमन यही में कहते हैं कि हाथी हर घर ला टोर दहीस कि ये कर दहीस। तो का है कि पर्यावरण जो है वो बिल्कुल जो है आस पास कर वातावरण मन बिगड़ गई से, संतुलन बिगड़ गई से हमन ला जो है एकर लिए प्रयास करना पड़ी और बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ी। वृक्षारोपण जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छा वृक्षारोपण कर बात है, इस देखी कि अभी खरीफ में अजय बरखा गिरी ना भाई, आप कहब कि

एकाध महीना ही बाची से 10 जून ले तो हमनिया बरखा आए जाए। तो बरखा जब गिरल ना तो ओघनी अपने आप जो है प्रकृति हर अपने आप लाखों करोड़ों पेड़ पौधा मन जन्माएल जंगल मन एकदम कहब ना जहाँ जहाँ पेड़ मन रहते हैं वहाँ वहाँ के जब फल हर गिरे रहल ओमन ओमन अपने उपजेल। बाकी का है कि हमन ओला भी तिहा नहीं करे सकी और सुनब ना कि इतना पेड़ लगाइन उतना पेड़ लगाइन ओकर जो है पूरा तिहा नहीं हो पाए। अगर ओकर तिहाला भी हमन ढंग से कर ली तो निश्चित रूप से पर्यावरण कर संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान हो ही। ध्यान करी और ये समय जो गर्म कर समय ना कभी कभी का है कि आगी भी लग जाए ओकर से हमन ला बहुत बचाना है। जंगल जब तक हमन जग संरक्षित रही सुरक्षित रही तब तक पर्यावरण के प्रति हमन सचेत रहब। अभी भी हमन ला लाखों करोड़ों पेड़ कर जरूरत हवे और एक पेड़ भी एक जो है ना मन से लगात है तो भाई हमारे तो जनसंख्या ही कहब कि 1 अरब 40 करोड़ से ऊपर है तो वो तक पेड़ हमन लगा सकत ही। हमन ला जरूर से जरूर योगदान करना है। नहीं तो कहा है कि आए वाला समय जो हम ही मन के जो लड़का छुआ मन हैं एमन हमन ला कभी माफ नहीं करेंगे। जब ऐसा कंप्यूटर युग में वैज्ञानिक युग में जब जियत रहें तो वो समय काबर सचेत नहीं हुई तो सब ला सचेत होकर जरूरत हवे और ये जन भागीदारी कर ही माध्यम से संभव है। एक ले दुई दुई ले चार और चार ले हजार हजार से लाखों व्यक्ति जब सोच हर एक हो जाही सब मिलके काम करही तो निश्चित रूप से कोई भी काम हर सफल हो। देखिए मेरा है विशेषज्ञ से मुलाकात करे कर डॉक्टर पीएस राठिया जी से मुलाकात करल जाए कि कैसे कैसे श्रीयन कर खेती करके लाभ ले सकते हैं।

0: आज मोर मुलाकात हुई से डॉक्टर पी एस राठिया ठन जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हमें आलू अनुसंधान केंद्र मैन पार्ट में पदस्थ हैं। डॉक्टर साहब रौरे कर बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, नमस्कार।
0: मैं रौरे भेटाए ही तो एक बात जानना चाहूँ ढेरे। हाँ, तो देखिए कि अभी 2-3 बच्चर ले श्री अन्न कर बारे में हमन ढेरे सुनी थी। तो हमर यहाँ एकर खेती कर बारे में कैसे करके लाभ ले सकते हैं एकर बारे में बताई तो
1: बहुत अच्छा है। जो अभी भारत सरकार और राज्य सरकार इसके ऊपर बहुत ध्यान दे रही है श्री अन्न के ऊपर, और इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चालू की हैं और किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ में इसका दर निर्धारित होने के कारण किसानों का रुझान भी इस पे बहुत अच्छा आ रहा है और किसान बढ़ चढ़कर इसमें की खेती कर रहे हैं। तो इसका 3-4 चीज मैं बताना चाहूँगा जो मुख्य जो बातें हैं श्री अन्न के ऊपर। हमारा जो सरगुजा संभाग या इधर कहें हमारे सरगुजा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे जो सरगुजा क्षेत्र में श्री अन्न में ज़्यादातर कुटकी होता है, कोदो कुटकी और रागी।
0: अच्छा, वैसे तो हाँ, बताते हैं पूरा श्री अन्न में कौन कौन लगाते हैं।
1: हाँ, श्री अन्न में दो प्रकार के होते हैं। एक तो मुख्य रूप मुख्य आता है ज्वार और बाजरा।
0: ज्वार बाजरा।
1: हाँ, ज्वार बाजरा। हाँ, दूसरा छोटे वाले दाने में, ये बड़े दाने में होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है।
0: हाँ,
1: और इसकी खेती ज्यादातर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इस तरफ किया जाता है।
0: अच्छा,
1: और दूसरा होता है छोटे दाने वाले
0: लघु धान।
1: लघु धान, लघु धान फसने जो बोलते हैं, जिसमें कोदो कुटकी रागी सामा ये सब आते हैं।
0: अच्छा,
1: तो हमारे इधर ज्वार और बाजरा तो कम करते हैं। ज्वार की खेती लगभग कुछ एरिया में की जाती है और बाजरा तो कम ही होता है हमारे यहाँ, नहीं के बराबर। लेकिन हमारे यहाँ रागी और कुटकी कोदो ये तो बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पर लगभग 6,000 हेक्टेयर तो हमारे सरगुजा में ही है।
0: अच्छा।
1: हाँ, कुटकी का खासतौर से पहाड़ी क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा हो रहा है, या तो मैन पार्ट, सामरी पार्ट, सन्ना पार्ट, आपका पंडरा पार्ट, ये सब में कुटकी बड़े पैमाने पे की जा रही है।
0: अच्छा।
1: इसका जो मुख्य कारण है, इसमें जो देखा जाए तो बीज की मात्रा बहुत कम लगती है।
0: अच्छा।
1: और इसमें जो खर्च आता है किसानों को, लागत आता है और नहीं के बराबर आता है। लगभग एकड़ और हेक्टेयर की बात करें तो एकड़ की बात करें 25,000 से 30,000 के अंदर इसकी खेती हो जाती है। एक एकड़ में 25,000 तक, लगभग 25,000 के अंदर ही लगता है, कम ही लगता है।
0: अच्छा।
1: उससे भी कम किसान भाई उससे भी कम करते हैं, 12,000 से 15,000 में भी कर लेते हैं, क्योंकि वो खुद अपना बीज रखते हैं और खुद के पास खेती बाड़ी के लिए आपके ट्रैक्टर है, जोतने के लिए सब चीज़ व्यवस्था है। लेकिन देखा जाए तो एक तरह से बहुत

0: कम खर्चे में अच्छा उत्पादन लेकर के इसका लाभ कमाया जा सकता है। इसका मुख्य कारण है कि इसका जो सरकार ने अभी समर्थन मूल्य निर्धारित किया है
1: अच्छा
0: सभी फसलों का
1: अच्छा
0: ये
1: अच्छा,
0: जो
1: अच्छा।
0: श्री अन्न में
1: हुँ।
0: और साथ ही साथ इसका जो अभी कुछ सालों से विगत एक दो वर्षों से देखा जाए तो इसका जो मांग है शहरों में बड़े पैमाने में किया जा रहा है।
1: हाँ।
0: इसमें लोगों का रुझान बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण है कि इसकी जो पोषक तत्व इसमें उपलब्ध पोषक तत्व की मात्रा पोषक तत्व इसमें उपलब्ध मुख्य रूप से तो मुख्य रूप से ये जितने भी शहर में जो होते हैं आजकल बीपी शुगर पेशेंट
1: हाँ।
0: इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये श्रीअन्न का ले रहे हैं और इसका कारण भी है और इसमें जो पोषक तत्व होते हैं इनके लिए बहुत बढ़िया है जो बीपी शुगर पेशेंट है और इसको खा करके जो शुगर तो कम नहीं फिर भी इनको एक तरह से संतुलित मात्रा में खाएं तो बिल्कुल ही आपका एक स्थिर रहेगा बढ़ेगा नहीं और इसको खा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा जैसे बताते हैं पाठ क्षेत्र में ही ज़्यादा है
0: हाँ
1: होता है तो पाठ क्षेत्र में ही काबर ज़्यादा लगाते हैं ला?
0: इसका ये कारण है कि ये पाठ क्षेत्र में ज़्यादातर एरिया ये बड़े पैमाने में इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ जगह बड़ा है किसान बड़े बड़े खेत हैं बड़े जिनके पास किसान बड़े हैं और इसका जो रुझान है और उपज वहाँ ज़्यादातर क्योंकि ढाल होता है और नीचे गोड़ा में देखेंगे नीचे तराई में देखेंगे जहाँ पर गोड़ा है चावर है गोड़ा में ही करते हैं या फिर ढाल वाले जो है ढाण वाले में लेकिन वहाँ जहाँ पानी रुकता है वहाँ भी रुकाव होता है वहाँ पर इसका बढ़वार उतना अच्छा नहीं हो पाता है।
1: अच्छा।
0: इसमें भी कम पानी में खेती की जा सकती है। एक बात ध्यान रखें किसान भाई जैसे अन्य फसल हैं जैसे मक्का हो गया धान हो गया और अन्य जो फसल हैं खरीफ में उसमें ज़्यादा पानी चाहिए लेकिन हमारे श्री अन्न वाली हैं जो रागी हो गया कोदो कुटकी हो गया इसमें कम पानी में भी अच्छा उपज दे सकते हैं कम पानी में भी ये अच्छा उत्पादन देने वाली फसल है। साथ ही साथ इसमें एक ये भी आता है कि इसमें बीज की मात्रा कम लगती है
1: अच्छा।
0: जिससे लागत कम होता है साथ ही साथ इसमें जो देखा जाए इसका जैसे हम निंदानाशी देख रहे थे निंदानाशी
1: हाँ।
0: घास इसमें घना होने की वजह से और ज़्यादा संख्या में निकलने कली निकलने की वजह से ये बहुत फैल के बढ़ता है और इसमें घास की मात्रा घास की संख्याएँ को घास को दबा देता है एक तरह से देखा जाए तो
1: अच्छा।
0: तो घास की समस्याएं भी नहीं
1: बहुत
0: रहती
1: कम है ना नहीं
0: बहुत
1: के
0: कम
1: बराबर
0: नहीं के बराबर इसमें अलग से दवाई वाई डालने और साथ ही कीड़ा बीमारी अन्य फसल में कीड़ा बीमारी बहुत ज़्यादा आता है लेकिन इसमें जो आप कोदो कुटकी रागी में देखा जाए तो इसमें एकदम नहीं के बराबर कीड़ा और बीमारी लगता है
1: अच्छा।
0: तो किसान भाई को ये सरल और आसान लगता है और साथ ही साथ इसमें उत्पादन अच्छा मिलने से उनको आमदनी भी अच्छा हो रहा है तो इसलिए इसका खेती करना बहुत अच्छा है लाभदायक है और इस पे किसान भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इसकी खेती करें तो निश्चित रूप से अपनी आय में और अच्छा सुधार कर सकते हैं।
1: अच्छा तो ये बताते हैं कि जैसे कुछ किसान तो रखे रहते हैं
0: हाँ,
1: अपन बीजा ला
0: हाँ,
1: लेकिन जिनके पास बीजा नहीं है
0: हाँ,
1: ओमन कहाँ से पाएं?
0: किसान भाई देखिए लोकल बाजार होता है लोकल बाजार जैसे हम पार्ट एरिया की बात करें तो बड़े बड़े जो दुकानदार हैं वो लोग रखते हैं हालांकि गवर्नमेंट सरकारी संस्था में भी ये बीज निगम है इनके माध्यम से भी कोदो कुटकी रागी ये मिल जाता है
1: अच्छा।
0: और अगर नहीं मिल पा रहा है किसान भाई को अच्छी उसमें सरकारी संस्था से नहीं मिल पा रहा है तो लोकल स्तर पे अपना जो दुकान है वहाँ भी मिल जाता है आजकल तो जिस हिसाब से इसका रेट 35 जैसे हम कुटकी की बात करें तो 35 से 40 रुपया बिक रहा है तो कहीं
1: अच्छा।
0: भी ये मिल जाता है आप पार्ट एरिया में जाएंगे वहाँ खेती होता है वहाँ पर आसानी से तरीके से मिल जाता है और इसका बीज एक तरह से देखा जाए तो खराब भी नहीं होता है जैसे अन्य फसल में देखा जाए एक साल बाद अंकुरित होने की समस्याएं
1: हाँ,
0: आती
1: हाँ,
0: है कम होता है
1: हाँ,
0: एक साल बाद अगर एक सीजन दूसरा सीजन में नहीं कर पाए जैसे एक साल रख दिए दूसरा सीजन में आप खेती कर
1: हाँ, तो बिहान
0: अंकुरित होने में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन इसमें अच्छे अगर रखेंगे तो दूसरा तीसरा सीजन में भी इसकी ये अंकुरित इसमें दिक्कत नहीं होता है इसमें खेती की जा सकती है बीज को लेकर के तीसरे साल भी
1: ज़्यादातर जो है एक हमन खरीफ में ही लगा सकती
0: हाँ जैसे आप जितने भी हैं ज्वार बाजरा कोदो कुटकी रागी ये ज़्यादातर खरीफ में लेते हैं लेकिन कुछ कुछ फसलें हैं जैसे ज्वार हो गया या आपका रागी हो गया ये आपका आजकल जहाँ पर सिंचाई सुविधा है गर्मी में भी ले रहे हैं ठंड के मौसम के बाद गर्मी में भी ले रहे हैं इस
1: अच्छा।
0: फसल को भी लेकिन जहाँ मौसम अनुकूल है और सिंचाई व्यवस्था है वहाँ पर ये कर सकते हैं।
1: मैं सुने हूँ कि कुछ मिलेट कैफे भी खुली से कहूँ कहूँ
0: हाँ हाँ ये सरकार इसमें ध्यान दे रही है इसको जितने भी इनके प्रोडक्ट जो बनते हैं जो आहार के लिए जो बनते हैं इसमें चाहे नूडल्स हो आपके आटा हो या आपके पास्ता हो ये जो अन्य बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट बन रही हैं उनको बढ़ाने के लिए ये जगह जगह पर कैफ़े या मिलेट्स कैफे सरकार इसमें लोगों को बढ़ाने के लिए इनको ताकि लोग ये शहर के लोग इसको रुचि लें इस प्रोडक्ट को खाने में जिससे कि हमारा जो बीमारी

0: जो आते हैं बीमारी का निदान, ताकि बीमार होने से इसको खा करके
1: हाँ
0: बचा जा सके।
1: पौष्टिक है ना।
0: पौष्टिक है, पौष्टिक है।
1: हाँ बहुत सारा चीज़ें में है ना,
0: हाँ,
1: विटामिन सब है।
0: हाँ
1: ये कितना दिन में पके वाला फसल है?
0: हाँ जितने भी मिलेट्स वाली फसल हैं, लघु चाहे बड़ी वाली अनाज, बड़ी जो ज्वार बाजरा है, ये लगभग 120 दिन के अंदर हो जाती है। 120 दिन, 130 दिन में, लगभग 4 महीना 5 महीना में हो जाती है, 4 महीना के अंदर है ना। तो किसान भाई इसको लेकर के अच्छा ले सकते हैं, उपज ले सकते हैं, और इस पर निश्चित रूप से इसकी खेती को बढ़ावा किसान भाई लोग दे रहे हैं। आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा और इतने भी प्रोडक्ट बनेंगे और लाभकारी होंगे और पोषक तत्व बहुत अच्छे रहते हैं, इसको किसान भाई लें, इसकी खेती को करें।
1: डॉक्टर PS राठिया साहब रोरे से सुगर गोड बात हुई। रोरे कर सलाह से किसान भाई जरूर से जरूर खेती करके लाभ लें और श्री अन्न का बढ़ावा दें। रोरे के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भाई देखिए ये संदेश ला सुने कर पहले जो है हम बढ़िया सुगर अकन जो है जानकारी देते रहें डॉक्टर पीएस राठिया साहब की कैसे कैसे हम श्री अन्न लगाए के लाभ ले सकते हैं। देखिए श्री अन्न कर एक फायदा तो जो है हमन अगर ध्यान करब ना तो हमर जो पुरखा मन जब ये समय हरित क्रांति नहीं रही सोते के जो है धान कर विकास नहीं हो रही तब यही लघु धान्य मन ला ही खात रहिन वो समय कोदो कुटकी सावा मन ला और बढ़िया जो है जिंदगी जिए एकदम 90-100 बरस वो समय चिकित्सा कर भी उतना विकास नहीं हो रही तो कहे बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक चीज हवे। बेरा हो चली से देखी गन्ना फसल कर प्रबंधन कर बारे में गोठिया कर देखब कि गन्ना कर बढ़िया फसल बनना उचित जल प्रबंधन बहुत जरूरी हवे। 10 से 15 दिन कर आंतर में सिंचाई करना, संतुलित खाद देना और समय पर निराई गुड़ाई करना बिल्कुल ज़्यादा महत्वपूर्ण हवे। गर्मी कर समय हवे हर 10-15 दिन कर आंतर में ना हमला देना रहल पानी और सर्दी घनी तो कहब कि 25-30 दिन में भी सिंचाई देती तो बन जाए बाकी ये समय जरूरी रहल। महत्वपूर्ण बात हवे कि जब कल्ला निकलते समय या गांठ बनते समय और जो है गन्ना कर मोटाई के समय जो है ना नमी बनाए रखना बहुत जरूरी रहल और का है कि वर्षा काल कर जब बात हवे तो जल निकासी कर उचित व्यवस्था हमला करना चाहिए। जैसे अभी खरीफ में पानी ढेरे गिरी ना तो प्रबंध हमला करना चाहिए काबर कि जल भराव से जो है जड़ सड़ सकेल। और जैसे हमारे यहाँ भी तो आधुनिक जो विधि चलत है जैसे ड्रिप सिंचाई हवे ना ओकर से तो का है कि 20 से 60% तक पानी कर जो है बचत हो जाए और कहब कि कम से कम 25% तक जो है ना हमला उपज ज़्यादा भेटायल। हमला का करना है बुआई कर समय नाइट्रोजन कर आधा मात्रा, फास्फोरस और पोटास कर पूरा मात्रा कर उपयोग देना हवे और जो जमाव के बाद जो है ना जो नाइट्रोजन बाचे रही ना ओला सिंचाई के 2-3 दिन बाद में हमला देना है उसने। और जो है जैसे माटी चढ़ाए कर बात हवे तो मानसून से पहले गन्ना के जड़ में जो है ना माटी हमला चढ़ाना चाहिए ताकि वो गिरे झीन। वैसे खरपतवार नियंत्रण हवे पहला सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई जरूर करना चाहिए।

चाहिए, पेड़ी प्रबंधन हमन ला करना चाहिए। पहला फसल कटाई के बाद पत्ती ले हटाए के तुरंत सिंचाई करें और गैप भरें। और देखा कि कल जब ए में कल्ला कर जब अवस्था रहना, ये चरण में 10 से 15 दिन में सिंचाई कर बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहल, ताकि जो है ना ये समय कल्ला निकले में बहुत महत्वपूर्ण रहल। तो ध्यान करें और जो है गन्ना उगाएं। देखा हमारे यहाँ तो एतेक मात्रा में गन्ना कर खपत हो, शक्कर कर कारखाना खुली से ओतेक ला हमन पूरा नहीं पाती। तो ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना उगाएं, ताकि हमन के शक्कर जो फैक्ट्री खुली से ओकर में भी जो है संचालन जो है महत्वपूर्ण होवे। तो किसान भाई जो हैं करें। एक बात आऊँ मैं बताऊँ, मिशन लाइफ के बारे में रोरे मन सुने हो अभी। मिशन लाइफ जो है ना हमार पर्यावरण आधारित जिंदगी कह जीवन शैली लही मिशन लाइफ कत हैं। तो एकर का है महत्वपूर्ण बात हवे, एकर में कहब ना कि हमन ला ऐसन आदत अपनाना है जेकर से जो है पर्यावरण कर संरक्षण है और पर्यावरण का संरक्षण में हमन योगदान कर सकी। जैसे देखी लिखरी लिखरी बात हवे, जैसे अनावश्यक हमन ला लाइट नहीं जलाना चाहिए, पंखा ला बंद करना चाहिए। और कहब कि कभी जैसे हमन ब्रश करत ही सोचे कर घर घरे जैसे नल हवे तो नल ला खुला छोड़ देना। गली में भी देखूँ मैं थो कि कभी कभी जैसे सामान्य नल लगल है, गवर्नमेंट मन कर शासकीय नल है, अन भनिया कर पानी हर भर गई से ओकर बाद भी चालू रखी है, एकर से पानी कर जो है अपव्यय हवे, एकर हमन ला बचना चाहिए। प्लास्टिक कर कम उपयोग करना चाहिए। और देखब ना हम नान रहें तो ठोंगा रहे जैसे कागज का ठोंगा जब हम सामान लेके आई तो वो का है पर्यावरण के प्रति बहुत बढ़िया चीज़ है, वो आगे चल के और नष्ट हो जाए। जो प्लास्टिक है यार कहों जे बारी में या कहों भी रौरे मन कर खेत में अगर गड़ गिस तो वो जग कहीं नहीं उपजे वाला है। तो ध्यान करें अधिक कम से कम हम प्लास्टिक का उपयोग करना है। और ओला का है कि वैसे तो का है कि रिसाइकल में देते हैं, बाकी का है मन से मन ऐसा कोढ़िया हो जाता है ना कि कचरा कूटा में बिक दे रहते हैं जेकर से पर्यावरण कर नुकसान हवे। तो ये सब बात कर हमला ध्यान करना है। और निश्चित रूप से जो है ना हमन छोटे छोटे बात ला ध्यान करब और मिशन लाइफ ला अपना आप तो आगे आने वाला समय जो है बढ़िया रही, पर्यावरण हर संरक्षित और सुरक्षित हो ही। मंडी भाव कर बेरा हवे, आज हमारा अंबिकापुर मंडी में गेहूँ रहीस 2650 रुपये प्रति क्विंटल, चना रहीस 5210 रुपये प्रति क्विंटल, मूँगफली रहीस 5300 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज रहीस 1700 रुपये प्रति क्विंटल, आलू रहीस 1800 रुपये प्रति क्विंटल और मक्का रहीस 2400 रुपये प्रति क्विंटल। मौसम कर बात करी तो देखत ही कि कटिक जो है कालो जो है घरा घाटा चलीस और बकी आज जो है वो खसनी हवे। आज मौसम कटिक साफ रहीस, तापमान जो है कमे रहीस, कहब कि 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहीस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कायल कर बारे में अनुमान है कटिक जो है अब दिनों दिन जो है ना गर्मी है फिर अपन रंग दिखाना शुरू कर ही। कायल 37 डिग्री सेल्सियस रही अधिकतम और न्यूनतम रही 24 डिग्री सेल्सियस। और सवाल पूछे कर बेरा हवे तो आज कर जो सवाल पूछो कर ले पहले पाछू बीतीस वो हमन पूछे रहन सुमार रोज की ड्रोन तकनीक से का फायदा हवे। तो देखिए ड्रोन तकनीक से तो फायदा हवे, काहे कि जो खेत कर जो है हमला बहुत कम समय में पूरा निगरानी कर सकती और संगे संग कीटनाशक या कहीं भी दवाई कर जो है हमन छिड़काव कर सकती। तो देखिए चिट्ठी भेजी नहीं मोर हाथे हवे, चिट्ठी नवापारा से श्याम लाल और सोटन प्रभु रामचरण सुरेंद्र मंगली और उनकर संगता है, ये सही जवाब भेजी ने चिट्ठी लिखे पर इनके बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कर सवाल हवे कि गन्ना कर फसल में पोटास कर कमी कर प्रमुख लक्षण का हवे। रोरे मनकर चिट्ठी एक हफ्ता के पहले हमला मिल जाना चाहिए आगू आए वाला सोमवार रोज से पहले। जिनकर सही नाव रही ओला मैं जरूर कार्यक्रम में शामिल करूँ। और जाए ले पहले हो जाए एक ठन सुघर अकन गीत गाता है लक्ष्मण मस्तूरिया और उनकर संगता है।

वाह बड़ा सुघर अकन गीते लगल कि सुनते च रहो बकी का है कि बेरा हो चली से राउर मन से विदा लेकर तो आने दिन फिर भेटाब धर्म भैया कर राम राम।

ग्रामीण श्रोता अभी सुन रहे थे चौपाल कार्यक्रम। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब से सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। श्रोताओं आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म आओ प्यार करें के इस प्यारे से गीत से। आवाज है कुमार सानू की, संगीत निर्देशन है आदेश श्रीवास्तव का, शब्द रचना है श्यामराज की। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है बोड़सरा नहला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली।

की। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है बोड़सरा नहला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। जय जिनेन्द्रा श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम MP से जगदीश झा धाकड़, नायमा श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ ने। विष्णु मस्किन, रितिका मस्किन, वाणी अवारव, चंद्रकाला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही प्रियांशी सोनी पता दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। उत्तम कुमार बघेल, रुकमणी बघेल, साहिल भारती बघेल पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। सावित्री जोशी, बाबू जोशी, प्रिंस कृष्णा, आनंद, रेणुका, हिमेश, श्वेता, तपस्या माही जामनगर गुजरात से। पता बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह। मामतीन क्लब पचरा पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा से इसी गीत को सुनना चाहा है। ओम प्रकाश यादव, संतोष, तारा, सरोज, संध्या, साक्षी, गया प्रसाद यादव। ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोधन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी। ग्राम सिधमा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह। प्रेषक सुपर स्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेहर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा। ग्राम अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या राजवाड़े और मंजू राजवाड़े। भागवत उत्तर प्रदेश से इसी गीत को सुनना चाहा है। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया। फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश से ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईश्वर फरमाइश और इसे लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त विक्की गुप्ता। साथियों, आइए चलते हैं हमारे अगले फरमाइश की ओर। फरमाइश करता है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से, विनोद खड़ से, अनारकरी बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोदपुरी, अंधान नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी वर्मा, भूपेश दीपेश वर्मा, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, नंद कुमार ठाकुर, परमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक खुशबू, ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदा बार नवापारा अभियान जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। संगीता हरसिद्धि, बाबू हरसिद्धि, लक्ष्मी हरसिद्धि, जयश्री हबीब शंकर, मंजू काशीनाथ, कृष्णा कॉलोनी गदक कर्नाटक से, चांदनी चौक गंडई पंडेरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की बिक्की नानू रविंद्र, रौनक सेन, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से

अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा भूमिका अरोड़ा। अमगासी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़ से। मुनेश राम सालिनी रुचिका अनिका मनीष सुचिता चांदनी दीपांशु। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने भवानी संगीता आकाश आयुषी सागर यसी हनी पूजा। छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ से नरेश कुमार लखनलाल यादव प्रहलाद धुर्वे संजीव केवर संतोष कुमार टोंडे रामलाल साहू घनश्याम देवांगन देवेंद्र विश्वकर्मा नेम सिंह साहू संजय कुमार जांगड़े माला पांडे ममता ठाकुर और दुर्गेश्वरी। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाहा है। हीरामणि वर्मा पारसमणि वर्मा पुष्पेनमणि वर्मा नोखेलाल वर्मा। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना उमा राज और दिव्या भारती। बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अक्रम गुड़िया खातून। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान शेख अताउर रहमान शेख हबीबुर रहमान। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभयताड़ सिल्लोड़ जिला छत्रपति संभाजीनगर से। औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के वैशाली अनिल प्राजक्ता घोड़के वैश्रमी गायत्री और यज्ञेश घोड़के। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी असवानाज अंसारी। जेल रोड बक्सर से राज अंसारी और फातिमा राज। गीता दिनेश नामदेव चांपा छत्तीसगढ़ से। अन्नपूर्णा बड़ी सावित्री लक्ष्मी चंद्रकला काशीनाथ बड़ी श्वेता तपस्या माही रेणुका पल्लवी क्षेत्र आदर्श तिपन्ना राजू भाई बाबू भाई वीरनारायण मंदिर के पास गदगवेट केरी कर्नाटक से। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा घुरनी पैकरा करिश्मा पैकरा सुमार साइकिलेश्वर सिंह सुखराम पैकरा हीरामणि पैकरा ऐश्वर्या पैकरा सरोज चौक अमरावती से कमरूला ठेकेदार नसीम बेगम आयसा खान हदिया खान आफिया मुस्तफा खान पैराडाइज कॉलोनी से साहिद भाई आसिफ परवीन अल्फिया सदाब और सुफियान फातिमा। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए फिर से फिल्म जान तेरे नाम से इफ्यारा संगीत। गीत के गीतकार हैं सैयद राही संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का आवाज़ है कुमार सानू और आशा भोसले की।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक सूचना। श्रोताओं, सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश में अपनी पसंदीदा फरमाइश भेजने के लिए आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर विजिट करें। वहां प्रतिदिन एक विशेष पोस्ट डाली जाती है। अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अपना पसंदीदा गीत, अपना नाम, पता तथा अन्य आवश्यक जानकारी लिखकर कमेंट करना है।

आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों को हम इच्छा फरमाइश कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ध्यान रखें, यह पोस्ट प्रतिदिन सुबह 10 बजे हमारे सोशल मीडिया पेज पर डाली जाती है और शाम 5 बजे तक प्राप्त होने वाली फरमाइशों को ही कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। तो देर किस बात की, समय का ध्यान रखते हुए अपनी फरमाइश फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें अवश्य भेजें। आपकी पसंद को हम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश में जरूर स्थान देंगे। सूचना समाप्त। श्रोताओं, आइए जानते हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश की अगली पेशकश फिल्म मोहरा से। आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक के, संगीत निर्देशन है विजू शाह का, शब्द रचना है आनंद बख्शी की। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलसाद हुसैन फातमा सोगरा, पता मिट्ठू मोड़ दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास कौशल श्रीवास कृष्ण कुमार और गेंदू भाई, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति श्रीमती सविता प्रजापति घनश्याम राम हरिशंकर रत्नेश कुमार प्रशांत प्रजापति ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता पांडे राम, सादुल सह राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी शाह प्रखर शाह कुशल शाह नीति शाह सुरभी शाह अश्विनी शाह मंगलाबेन शाह राजेंद्र जी शाह। तमसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़ आविष्कार गायकवाड़ अनामिका गायकवाड़ और प्रणीता गायकवाड़, बेवड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर सुनीता करमरकर, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव, अभिजीत गोहाड़कर राही सरिता गोहाड़कर प्रणीता सिद्धांत गोहाड़कर अर्जुन गोहाड़कर टुकटुक मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से, भाटापारा छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनना चाह है सोहन जोशी हरविंदर सिंह चावला शिव कुमार शर्मा लोकेश जोशी बेबी वैदेही जोशी बेबी हंसिका जोशी कुमारी अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती केवट, खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान इरफान खान, ग्राम नवागांव मुंडही पर जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सोहनलाल साहू रुकमणी साहू तेजस्वर साहू कुशाल साहू, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी जहीरा बेगम अंसारी मोहम्मद आयान अंसारी मोहम्मद उस्मान अंसारी मोहम्मद यासीन हाशमी शमसुल कमर राही, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान रितेश कुमार राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबीय राधिका गजबीय निस्का और तन्मय। आप सभी की फरमाइश पर पेश है ये प्यारा सा गीत।

एक बार फिर से तहदिल से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इश्ता फरमाइस कार्यक्रम में। श्रोताओं, ये सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। आवाज़ है अलका याग्निक और उदित नारायण की, संगीतकार हैं नदीम श्रवण और गीतकार हैं समीर। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, विट्टू कुमार, अर्चना, अल्पना, मुन्नी चांदनी और नंदनी कुमारी। कृष्णा पार्क दिल्ली से इसी गीत को सुनना चाहा है सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय। झज्जर हरियाणा से विट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसू तासो, अर्णो आनंद, सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से।

कस्बा बराड़ा, जिला अम्बारा, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका गुरकिरत, मनस सिमरस, गुरशब्द राहुल, विजेंद्र जयजान। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीतिप वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकत मु पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आसी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अन्नू गोस्वामी, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, बिफरा नवाज, बेबी शाह सादिया, सिरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी, मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रसीद वारसी, यसब अब्बासी, मध्य प्रदेश हिंदवाड़ा बिरडी नानाजी से लामसे मीना, लामसे तेजस, जय लामसे और हर्षिता लामसे, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज सीरे फाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, गुजरान पाटन से धीरज वीरबाड़ी, नकपुड़ी सहारनपुर से जोन डिकेशो, रोडी डिकेशो, पल डिकेशो और विलेश डिकेशो, ताज मंदिर लकड़ा बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमाज बानो पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश चौरी, सेक्टर 18 जगाधारी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, वन मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईसानी, गांव नईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेड मिड्ढा, अलका मिड्ढा, गांव लाहौड़ा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती बीटिया, अंजलि नितिन, जगमोहन सुधीर नूतन, भुवनेश्वरी देवी, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। आप सभी के फरमाइश पे से ये प्यारा सा गीत।

गांव फ्रांसिस जिला हिसार से राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, पुष्पेंद्र कुमार डोडी। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। जिलका पंजाब खेड़ा, परिवार भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, सालनी खेड़ा, तिवानसी खेड़ा, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह, बुकसमस्त खेड़ा। रघुनाथपुरा जिला का श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना हर्षित, खुशी गोस्वामी। भोपालगंज राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशांत छिपा। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, तामसा रोड, हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आविष्कार गायकवाड़, अनामिका गायकवाड़, प्रणीता गायकवाड़, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी मामिका वाड़ी थांदी। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालाना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुतू, अनुष्का सागुतू। ग्राम दसूड़िया पता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, राजकुमार पाटले, गोमी गोमती पाटले। हिंगोली महाराष्ट्र से साजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के, अम्बेडकर चौक वकौडी से उत्तम जमजाडे, स्वराज जमडाड़े। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रका, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम शिखा से फाली। नरगोड़ा राज छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशामस गोस्वामी। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूराल सिंगरौल।

0: इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम इच्छा फरमाइश यही समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या और इवनिंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से

0: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी

0: आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: For the season of Kharif 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
3: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का

0: बात बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
1: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
2: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG.

लीजिए पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत की अगली पेशकश फिल्म जिगर से। आवाज है अभिजीत और साधना सरगम के, संगीत निर्देशन है आनंद मिलिंद का, गीतकार हैं समीर।

इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत यही समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब ऐसे श्रोताओं की ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म सैनिक से ये प्यारा सा गीत। आवाज है कुमार सानू और साधना सरगाम के, संगीत निर्देशन है नदीम सैफ, श्रवण राठौर का, सदृशियां है समीर की। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है फनेस कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हेयांश कुमार चंदन, ग्राम सोंगा मगरलोड से, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डीके साहू रसेड़ा से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, महराज जहाँ, आजाद नगर, लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, जसपुर उत्तराखंड से रिया है, यासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, नंद कुमार ठाकुर, पनबिल्ला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक हुजवी, ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदा बार नवापारा अभियान, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, जिला किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, बिहार स्टेट डुमराओं से आसमान अंसारी, आमना परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी, वलीउल्ला अंसारी और गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडी छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम और अधिका

भूजल डोमेन। प्रेम मानी नाग, पूनम रानी, सरकार सीमा ठाकुर, लालबाग जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से, धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र, श्री कृष्ण बाल्ठे संदीप बाल्ठे मजूका टिल्ला से इसी गीत को सुनना चाहा है। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, रीवा से सुयस रॉय, अलका रॉय, गजानन नेले, नवदीप पेले, विश्वदीप पेले, दरियापुर बावली से महाराष्ट्र से, साउथपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, प्यारा मुन्ना, हिमाक्ष, उदयपुर से रमेश नचानी, भारती नचानी, विनीत नचानी और बाबू भाई। आप सभी की ईमेल पर भेज से ये प्यारा सा गीत।

देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने भानी संगीता का सयोसी सागर यसी हनी पूजा। हरजिंदर शिंदा जसवीर जसी सीता गीता गावंदा थाना पंजाब से। संतोष भाकरे नया सुकन्या और सविता भाकरे साहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबक्स बेगम राबिया शेख रहीमुन्ना दानी सासिफ शेख कमलकंद मरावी परमिला मरावी नेहा मरावी पुष्पराज मरावी रिसम मरावी लोरमी ग्राम चचेड़ी से। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी साहदुरा दिल्ली से तुलसी मस्किन वीना मस्किन आशीष राजा चैतन्य मस्किन चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित खुराना केसु खुराना। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टेढ़ी मल्होत्रा रितिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा नील शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर रमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज। पुष्पांजलि नायडू प्रीतम सिविक चैतन्य कुमार अमृता संतोष जगदतपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर विनीता नायडू डॉक्टर कृष्ण राय राव नायडू डॉक्टर ईश्वर राव नायडू डॉक्टर रोजा पुष्पा लक्ष्मी नायडू अघानपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से। दतरंगी के भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती और विनीता वर्मा रुद्र वर्मा। आप सभी की मेल पर लीजिए पेशे फिल्म बाजीगर से यह गीत। गीत के गीतकार हैं रानी मलिक। संगीत निर्देशन है अनु मलिक का। आवाज है पंकज उदास की।

श्रोताओं लीजिए अब ऐसे कार्यक्रम ईमेल की गूंज की अगली पेशकश, फिल्म फूल और अंगारे से आवाज है कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी के, संगीत निर्देशन है अनु मलिक का, सब दृश्या है अनवर सागर की। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया है वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, मानसी गौरव, कविता, अनिल अरोड़ा, परिवार मिनिस्ट्री रोड, न्यू दिल्ली

शक्तिनगर एरिया जोन से। सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे। डोंडी लोहारा बालोस से हरिशंकर डोम अनिता डोमिन औजेल। रोड बक्सर से असलम अंसारी शमसुल हक राज अंसारी फातमा राज अजनबी। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर। पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरलाल सिंह अविराज सिंह गुरनूर सिंह और सुखदीप सिंह। रेखा पांडे प्रताप पांडे कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से। सैद मसरूर साइना हसन इब्राहिम गांव कुमार हेडा सहारनपुर से। उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किसू तासो अर्णव आनंद सत्यम आनंद भोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से। मुन्ना भगत कुटी भगत बटिंडा रोड मंडी डबवाली से। राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग तानिया नारंग। दरबार कॉलोनी सनावत से किशोर कुमार सावले रेखा सावले हिमांशु अनुराग सुलोचना चारुवी और प्रणव सावले। आप सभी की मिलकर भी इसे प्यारा सा गीत।

उत्तमनगर दिल्ली से बोधराज खलवार, कमला रानी, गीतिका घोरवाल, भानु प्रकाश, पीएस नोहारकर, निर्मला नोहारकर, विशाल नोहारकर, नरेश्वर नगर, नरवेल महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरकर, मलकापुर से, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिसानी और निमिता आहूजा, बंगाली फंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, सहना शर्मा, मेहंदी शर्मा, इधरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेशो, रोजी डिकेशो, पॉल डिकेशो, विलिश डिकेशो, इंद्र विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी। आप सभी की फरमाइश हो लीजिए फिर से कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म चांद के पार चलो से। आवाज है अलका याग्निक और उदित नारायण के, संगीत निर्देशन है विष्णु नारायण का, सदृश्य है ऋषि आजाद की।

इस गीत के साथ ही श्रोताओं की मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी, जिसमें आज आप सुनेंगे शिव कुमार शर्मा के संतूर वादन में राग किरवानी। तबला होगा शफात अहमद खां का।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी, जिसमें आज आपने सुना शिव कुमार शर्मा के संतूर वादन में राग किरवानी। तबला था सफात अहमद खां का। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए फिर से श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं फिल्म हम आपके हैं कौन से प्यारा का संगीत, आवाज लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम के, संगीत निर्देशन है राम लक्ष्मण का, सब दृश्य है देव कोहली की। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश बत्ता, ग्राम बंगला माटियावालों से शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्र्यंबिका, लीना अंशु, आशुतोष अंगारे, ग्राम धुरा भांदा बाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड साहू, रुस्तम साहू, नेत्राम साहू, भूपेंद्र साहू। आप सभी के फरमाइश पर फिर से कार्यक्रम का पहला गीत

छत्रपती संभाजी नगरचे राजेश साबले पाटील, राजदीप राजेश, राशी राजेश श्रीमती शीतल राजेश, गाव फ्रान्सिस राजकुमार डोटी, सरजीत सिंग डोटी, प्रमोद कुमार डोटी, हासी सहरसे राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बबू डब्बू, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरव शर्मा, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए फिर से कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म धड़कन से। आवाज़ है अलका याग्निक और कुमार सानू के, संगीतकार हैं नदीम सैफ, फी और श्रवण राठौर, सदृश हैं समीर की।

लीजिए, फिर से कार्यक्रम मन भावन की अगली पेशकश माँ तुझे सलाम से। स्वर है अलका याग्निक के, संगीत निर्देशन है साजिद वाजिद का, गीतकार है समीर। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की बिक्की नानू रविंद्र सेन। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, भाई सुच्चा पाठक।

0: पर हम ना नहीं कहेंगे श्रोताओं, क्योंकि आपकी चाहतें, आपकी ख्वाहिशें हम अपने सर आंखों पर रखते हैं। तभी तो आप जो करते हैं फरमाइशें, उन्हें हम पूरा करते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद और मनभावन में, क्योंकि
1: हाँ।

सुनाते हैं आपकी फरमाइश पर वो तराने जो चाहते हैं आप सुनना हर रोज आपकी पसंद और मनभावन में। हमारा है वादा, हम रखेंगे हमेशा ख्याल आपका, और एक वादा आपसे भी कि आपको भी भेजनी होंगी अपनी फरमाइशें और सुनना होगा कार्यक्रम आपकी पसंद और मनभावन को, और भेजने होंगे पत्र इस पते पर, कार्यक्रम आपकी पसंद या कार्यक्रम मनभावन, आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन 49700।

Charmin Arsho, Kandai Pandaria, Se, Darianaval Motwani, Anita Motwani, Rajesh Resamanil Raj Motwani, Gandhi Bag, Nagpur Se, Sukumar Savlani, Julelal Chok Tilda Se, Harish Kamal Setwal, Bhumika Susila Dati, Taj Muhammad Ansari, Gulam Sabir Rahim, Raj Shah, Ajan Nagar Laksar Haridwar Se. आप सभी के पसंद पर आइए पेश है कार्यक्रम मन भावन की अंतिम पेशकश फिल्म बेवफा सनम से। आवाज है सोनू निगम की, संगीत निर्देशन है निखिल विनय का, गीतकार हैं रानी मलिक।

0: इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम मन भावनी यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की

प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय

करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।